मोह सोग सब परम मिटाए, एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसें बो देवा।

गुर की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनो लाए ले सो सेवक, जिस वड पाग मथाएना, गुर की महिमा बेद न जाने, तुच्छ मात सुन सुन वखाने, पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर, जिस सिमरत मन सीत लायना, जां की सोए सुनी मन जीवे, हृदय वसे ता ठंडा थीवे, गुरमुखों अलाए ता सोबा पाए, तिस जम के पंथ न पायना, संतन की शरणाई पड़िया, जियो प्राण तन आगे तरिया, सेवा सुरत न जाना काई, तुम करो दया किरमाएना, निर्गुण को संग लिहोर लाए, कर कृपा मोह टहले लाए, पखा फेरो पीसो संत आ गए, चरण तोए सुख पाएना, बहुत दुआरे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरणाया, सदा सदा संतें संग राखो, इहो नाम दान देवाएना, पए कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया।

सब सिमरें अगनत ना जाई जस गना सिमरें पस पंखी सब पूता सिमरें बन पर्वत अवधूता लता बली साख सब सिमरें रव रहा स्वामी सब मना सिमरें थूल सूखम सब जनता सिमरें सिद्ध साधिक हरमंता गुप्त परगट सिमरें प्रभ मेरे सगल पवन का प्रभ तना सिमरें नर नारी आसरमा सिमरें जात जोत सब वरना सिमरें गुणी चतुर सब बेते सिमरें रैणी अर्दिना सिमरें कड़ी मूरत पल निमखा सिमरें काल अकाल

परम रुणा। गुरु का शब्द वसै मन जाके, दुख दर्द प्रमता का भागे। सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहज तुना। सो तनवंता जिन प्रवत्याया, सो पतवंता जिन

धन्यवा प्रभ समरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेहरवाना हर दाता जी जंत पे खारी जन बांचे जा चंगना मांगो जन तूर परम गत पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिटे हर औखद हर निर्मल रापे मंगना श्रवणी सुनो बिमल जस स्वामी एका ओर तजो बिख कामी निव निव

ना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल थल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट भंडार नाही रतना।

आद मद अंत प्रवरवया त्रिष्ण बुझी परमंगना गुर परमेश्वर गुर गोविंद गुर कर्ता गुर सद बक्षंद गुर जप जाप जपत फल पाया।

एको दान सर्व सुख गुण निद आन मंगन नेह किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुर प्रसाद तू साहेब हों सेवक कीता जियो पिंड सब तेरा दीता करन करावन सब तू है ना ही किछ असाड़ा तुम्हें पठाए ता जग में आए जो तुद पाणा

अट तुम पारा, एक खड़े रसातल कर मन मुग्गा वारा, एक ना पार लंगावे आपे सतगुरु जिन का सच बेड़ा, कौतक काल एहो हुकम पठाया, जी जंत उपाय समाया, वेखे विकसे सब रंग माने, रचन की ना एक आखाड़ा, वड्डा साहिब वड्डी नाई, वड्डा तार वड्डी जिस जाई, अगम अगोचर बेअंत अतोला, है ना ही किछ आहारा, कीमत कोई न जाने दूजा, आपे आप निरंजन पूजा, आप सुज्ञानी आप त्यानी, आप सतवंता अतगारा, केतड़िया दिन गुप्त कहाया।

आपे सूरा अमर चलाया, आपे शिव वरतायन अंतर, आपे शीतल ठार गड़ा, जिसे निवाजे गुरुमुख साजे, नाम वसे तिस अनहद वाजे, तिस ही सुख तिस ही ठकुराई, तिसे न आवे जम नेड़ा, कीमत कागज कही न जाई, कहो नानक बेअंत गुसाई, आद मद अंत प्रभ सोई, हाथ तिसे कहने बेड़ा, तिसे शरीक नाही रे कोई, किसी बुते

तुद लेप नहीं एक तिल रंगार। एक जी गुण कमन बखाने, सहस फनी शेख अंत न जाने। नवतन नाम जपे दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कह संगा। ओट गही जगत पित सरनाया।

दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पैखा का, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा, सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे होई हाजी, सो मौला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफतरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले मह मौला, तस्बी याद करो दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल में जानो सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फाना।

तिनकी तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा, तिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अंकार त जाए, तिस जन को उपदेश

नमस्कार सतगुरु प्रसाद। चरण कमल हृदय नित तारी, गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी। तन मन अर्प तरी सब आ गए, जग में नाम सुहावना। सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे। सास दरास समाले करता, कीता अपना पावना। जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही। साध संग पज अचुत स्वामी, दरगे शोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद। सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा। सासत सिमरत वेद बखान।

तिल नहीं बदे कटे ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर।

प्यार, सत्संग सो मिलदो रहे सच्चे तरे प्यार, विचो मल कटे अपनी कुला का करे उधार, गुणा की रास संग रहे अवगुण कढे विडार, नानक मिलिया सो जानिए गुरु ना छोड़े अपना, दूजे ना तरे प्यार। मैला चौथा, सागर देखो डर मरो पै तेरे डर ना है, गुर कै शब्द संतोखिया नानक बिकसा नाए। मैला चौथा, चढ़ बोए थे चाल सो सागर लहरी दे, थाक न सच्चे बोए थे जे गुर तीरक दे, तित दर जाए उतारिया गुर दिसे सावधान, नानक नदरी पाई है दरगे चले मान। पौड़ी, नेकंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई, सच्चे तख्त बैठा न्याओ कर सत्संगत मेल मिलाई, सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यो बने आई, एथे सुखदाता मन वसे अंत होए सिखाई, हर स्यो प्रीत उपजी गुरसो जी पाई। श्लोक महला पहला, पूली पूली मैं फिरी पादर कह ना कोए, पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए, सतगुर साचा मन वसे साजन उत ही ठाए, नानक मन तृप्तासी है।

कार कमाए, नानक चानन गुरु मिले, दुख बिख जाली नाए पौड़ी। माया वेख ना पुल तू मन मुख मूर्खा, चल दिया नाल ना चले सब झूठ दर्ब लखा। अज्ञानी अंध ना बूझे सिर ऊपर जम खड़ग कलखा, गुर प्रसादी उबरे जिन हर रस

नानक सचो सच पौड़ी। गुरमुख आपे बख्शियोन हर नाम समाने, आपे भगती लायोन गुर शब्द निशाने। सनमुख सदा सोहने सच्चे दर जाने, एथे ओथे मुक्त है जिन राम पछाने। तन तन से जन जिन हर सेविया, तिन्हो कुर्बाने। श्लोक महला पहला। महल कुचजी मरवड़ी काली मनोक सुध, जे गुण होवन ता पिर रवे, नानक अवगुण मुंद। महला पहला। साच सील सच संजमी सा पूरी परवार, नानक एहन सदा पली पिर कहे प्यार। पौड़ी। अपना आप पछाणिया नाम निधान पाया, कृपा करके अपनी गुर शब्द मिलाया। गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया, हर रस जिन्नी चाखिया अन रस थाक रहाया। हर रस पी सदा तृप्त पहे, फिर तृष्णा भुख गवाया। श्लोक महला तीजा। फिर खुशिये तन रावीए तन उर नाम सिगार, नानक तन आगे खड़ी शोभावंती नार। महला पहला। ससुरे पेये कंत की कंत अगम अथाओ, नानक तन सुहागणी जो पावे वे परवाह। पौड़ी। तख्त राजा सोभ है जे तख्त लायक होई, जिन्नी सच पछाणिया सच राजे से। ए पूपत राजे ना आखिए दूजे पाए दुख होई, कीता क्या साला ये जिस जांदे बिलम ना होई। नेचल सच्चा एक है गुरमुख बूजे सो नेचल होई। श्लोक महला तीजा। सबना का पिर एक है, पिर बिन खाली ना है। नानक से सोहागणी जे सत गुरमाही समाए। महला तीजा। मन के अधिक तरंग क्यों दर्शाए विचुटी है, जे राचे सच रंग गूड़े रंग अपार के। नानक गुर प्रसादी छुटी है, जे चित लगे सच पौड़ी। हर का नाम अमोल है क्यों कीमत की जाए, आपे सृष्ट सब साजियन आपे वर्ती जाए।

पूरे परदाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप पछाना ज्ञानिया का यो महत है मन माए समाना हर जियो का महल पाया सच लाए ते आना जिन गुरु प्रसादी मन जीतिया जग तिन्हें जिताना। श्लोक महला तीजा जोगी होवा जग पवा कर कर पी ख्या लेओ दरगे लेखा मंगी है किस किस उत्तर देओ पिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल देखी हाथ ना लदिया सब बदी जमकाल नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम समाल मैला तीजा जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवियो ना कोय ऐसा सतगुरु लोड लहो जिस जेवड अवर ना कोय तिस शरण आई छूटी है लेखा मंगे न कोए सच दृढ़ आए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए नानक सच्चे हुक्म मने सच्ची वड्याई दे सच्चे माहि समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी सूरे ए ना आखिए अंकार मरे दुख पावे अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे अत क्रोध स्यों लूज दे अग्गे पिछे दुख पावे हर जियो अंकार ना पावे।

नानक जे इव मारिये गुरसब दी विचार इव मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुरु पेटे सोए पौड़ी दोवे तरफा उपायुन विच सकत शिव वासा शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा गुर सेवे सांत पाये जब सांस गिरासा सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार नवखंड मध्य पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा आप उपाय करे आप आपे नजर करे आपे दे वडिआइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजे सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजे मन विचार हर जप करे हर दरगह सीजे। श्लोक महला पहला।

इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास। महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए, हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी। मनमुख काल वे आपदा मोय माया लागे, खिन में मार पछाड़ सी पाए दूजे ठागे। फिर वेला हथ ना आवई जमका डंड लागे, तिन जम डंड ना लगे जो हर लिव जागे। सब तेरी तुद छड़ावनी सब तुदे लागे। श्लोक महला पहला सर्वे जोय अगच्छमी दुख कनेरो आथ कालर लाद।

ठाकुरमान माथे उबे जम मारसी नानक मेलन नाम पौड़ी आपे पिंड सवार्यों विच नवनिध नाम इक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला पोल तन पै मन वसै है कै पादर हीड अत दाहपन दुख कणो तीने था परीड मैला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम समाल तू बीजो अवर न कोए महला पहला सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे परवाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाएंदे हर नाम ते आवे जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे तरम राय तिन का मित है जम मग ना पावे हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे श्लोक महला पहला सुनिए एक वखाणी है सुरग मृत पयाल हुक्म न जाई मेटे।

बारो पंडित सदाए दे मनो मूरख गवार। हर स्यो चेतना लायनी वादी तरन प्यार, वादा किया करन कहानियां पूर बोल करें आहार। जग में राम नाम हर निर्मला,

हुक्म मन्ने दुख जाए, आपे दाता सुखैदा आपे दे सजाए, नानक एवै जानिए सब किछ तिसैर जाए पौड़ी। हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नामे तृप्त नाही, दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही। बिन कर्मा किछु न पाये जे बहुत लो चाही, आवे जाए जम मैं मरे गुर सब छुटाही। आप करे किस आखिए दूजा को नाही, श्लोक में ला तीजा। इस जग में संति तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए। सतगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए, इत तन पाए पुख लथी सुख वस्या मन आए। जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए, मन मुख जगत निरतन है माया नो बिलाए। अंदिन फिर दा सदा रहे पुख ना कदे जाए, सांत ना कदे आवई ने सुख वसे मन आए। सदा चिंत चित वदार है सहसा कदे न जाए, नानक विण सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए। सदा सदा सुख में रहे सच्चे माई समाए, मैला तीजा। जिन उपाय मेदनी सोई सार करे, एको सिमरो पाए रहो तिस बिन अवर ना कोए। खाना शब्द चंगियाईया जित खादे सदा तृप्त होए, पैनन सिफत सनाए है सदा सदा ओह उजला, मैला कदे ना होए। सहजे सच तन खटिया थोड़ा कदे न होए, देही नो शब्द सिगार है जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझिए जिसनो आप विखा ले सोए पौड़ी। अंतर जब तब संजमो गुर शब्दी जापे, हर हर नाम ते आई है हो मैं अज्ञान गवापे। अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापे, जिन चाखिया से निरपो पे से हर रस त्रापे। हर कृपा तार पियाया फिर काल न व्यापे, श्लोक मैला तीजा। लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण।

महलाती जा। गुण अवगुण समान है जे आप की ते करतार, नानक हुकम मने है सुख पाई है गुर सबदी विचार पौड़ी। अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ, गुर सबदी दर जानिए अंदर महल सराओ। खरे पर खजाने पायन खोटिया नाही थाओ, सब सच्चो सच वर्तदा सदा सच न्याओ। अमृत का रस आया मन वस्या नाओ, श्लोक महला पहला। हो मैं करी ता तू नाही, तू हो मैं हो नाही। बूझो ज्ञानी बूझना ये अकथ कथा मन माहे, बिन गुर तत न पाये अलख वसे सब माहे। सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसे मन माहे, आप गया परम पो गया जन्म मरण दुख जाहे। गुरमत अलख लखाइए उत्तम मत तराहे, नानक सोहंग हंसा जप जापो त्रिभुवन किसे समाहे। महला तीजा, मन मानक जिन परखिया गुर शब्दी विचार, से जन विरले जानिए कल युग विच संसार। आप पैनो आप मिल रहा हो मैं दुबदा मार, नानक नाम रते दुत्तर तरे पौजल विकम संसार पौड़ी। मन मुख अंदर न पालनी मुठे अहमते, चारे कुंडा पव थके अंदर तिख तत्ते। सिमरत सासत न सोदनी मन मुख विगुते, बिन गुर किने न पायो हर नाम हर सत्ते। तत ज्ञान विचारे

मत है सब कोए। पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर, मन तन होए निहाल पापा दह हर। आवन जाना चुके जन्म न जाए मर, सच नाम आधार सोग ना मोए जर। नानक नाम निदान मन में संजतार।

गुर के चरण ते आए तू तू टै माया बंद पौड़ी पाणे हुक्म मनाय उन पाणे सुख पाया पाणे सतगुर मेले उन पाणे सच त्याया पाणे जेवड होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागति जिन जगत उपाया श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पैकी नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूँ सुखसार सो ब्राह्मण पला आखी है जे बूझे ब्रह्म विचार हर साल

काजल हार तमूल रस बिन पसे हबरस छार पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया गुरमुख की तो था।

दुर्जन तू जल पहाड़ी वे छोड़े मर जाए, कंता तू सौ से जुड़ी मैंडा हबो दुख लाए। महला पंजवा। दुर्जन दूजा भाव है वे छोड़ा हो मैं रोग, सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चह भोग। पौड़ी। तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन, तुद सिरजा सब संसार तू नायक सगल पौन। तेरी कुदरत कोई न जाने मेरे ठाकुर सगल रौन, तुद अपड़ कोई न सके तू अब नासी जग उधरण।

न लगै तृण। जिस होमै आप दयाल तिस लावै सतगुरु चरण। तू होर तू पाए न लबई अब नासे श्रेष्ठ करण। दखणे महला पंजवा जे तू वतै अंगणे हब धरत सुहावी होए। हिकस कंतै बाहरी मैंडी वात न पुछै कोई।

के सतवंता, जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। तिस बौड़ गर्भ ना पावई जिस देव गुरमंता, जो आप चलावे त्यों चल दे किस वस ना जनता। दखने महला पंजवा, कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा, सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आतसड़ी मंज नैनू बिया ढल पबण ज्यों जुमे।

जिस मेले सतगुर आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखने महला पंजवा गैड डरा त्रिन छाया।

इन माया मोहनी मोइया नित फिरे भरमाइया हाठा दो मैं कीतियों शिव सकत वरताइया शिव अगे शक्ति हारिया एव हर पाइया एक विचों ही तुझ रखिया जो सतसंग मिलाइया जल विचों बिंब उठा लियो जल माए समाइया दखने

तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझया सो चौकुंडी जापै, जो नर उसकी सरणी पर तिस कंबै पापै, जन्म जन्म की मल उतरै गुर धूड़ी नापै, जिन हर बाणा मन्या तिस सोग ना संतापै, हर जियो तू सब ना कामित है सब जान आपै, ऐसी शोभा जने की जेवड़ हर परतापै, सब अंतर जनवरता।

जित भुख ले जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन आपना। जित ढाडी तृप्तावे अरदास सुनी दातार, प्रभ ढाडी को महल बुलावे। प्रभ देख दया दुख भुख गई ढाडी।

मन तन अति गुलाल नानक बिन नावै आलू दिया जित्ती होर ख्याल पवड़ी हर जीओ जा तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा गुरु भोजन पार लंघाया जित्ता पावाड़ा गुरमती सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रियां वस कर दित्ती ओ सतवंता साड़ा जित लाइयन तित्तै लगदियां नै खिंजो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुर अंदर वाड़ा।

पौड़ी बिन कर्मा हर जियो न पाईए बिन सतगुर मनवा न लगे धर्म धीरा कर अंदरे यो पापी मूल न तगे अह कर करे सो अह कर पाए एक घड़ी मोहत न

जान गंदरबा नगरी सुख घटाऊ दोए इस पंधानु घर घने पौड़ी अकल कला न पाई है प्रभ अलख अलेखं खड़ दर्शन ब्रह्म ते सिर न मिली है भेखं वर्त करे चंद्रायणा से कुछ न लेखं वेद पढ़े संपूर्णा तत्सार न देखं तिलक कढ़ाए स्नान कर अंतर का लेखं देखी प्रभु न लबई विन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस धुर मस्तक लेखं तिन जन्म संवार आया अपना।

जान वसंदो मंज पछाणु को हेकड़ो तैतन पड़दा नाहे नानक जय गुरु भेटिया महला पंजवा मतड़ी कांड कुआ पाव धोवंदो पीवसा मूतन प्रेम अथा पसन को सच्चा धनी पौड़ी निर्भव नाम विसारिया नाल माया रचा आवे जाए भवाई है बो जो नी नचा बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा अंदरों थोथा कूड़ियार कूड़ी सब खच्चा वैर करे निर्वैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चे पातशाह वेग धुर कर मचा जमदूती है हेरिया दुख ही मैं पचा हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा दखने महला पंजवा परबाते प्रभु नाम जप गुर के चरण ध्याए जन्म मरण मल उतरे सच्चे के गुण गाए महला पंजवा।

नानक से अखड़िया बयान जिन्हें दिसंदो मापिरी पौड़ी जिन जन गुरमुख सेव्या तिन सब सुख पाई ओ आप तरिया कुटुंब स्यों सब जगत तराई उन हर नामा धन संचया सब तिखा बुझाई उन छड़े लालच दुनी के अंतर निवलाई ओस सदा सदा घर आनंद है हर सखा सहाई उन वैरी मित्र सम कीतिया सब नाल सुभाई होआ ओही अल जग में गुरु ज्ञान जपाई पूरब लिखिया पाया हर स्यों बनियाई दखनी महला पंजवा सच सुहावा काढ़िया कूड़ा कूड़ी सोए नानक विरले जानिया जिन सच पल्ले होए महला पंजवा सज्जन मुख अनूप अठे पैर निहाल सा सुतड़ी सो सौ डिठ तै सुपने हो खनिया महला पंजवा सज्जन सच परख मुख अलावन थोतरा

गरीब मस्त सब लोग सिदासी, काजी शेख मसाय का सब दे उठ जासी। पीर पैगंबर औलिए को थिर न रहा से, रोजा बाग निवाज कते विभिन्न बुझे सब जासी। लख चौरासी मेजनी सब आवे जासी, मेचल सच खुदाए एक खुदाए बंदा।

सुख समुआ भोग पूम सबाई को धनी नानक हबो रोग मृतक नाम विहुनिया। महला पंजवा सुखत को तू आए पछाणु भी हिक कर नानक आसड़ी।

दया धर्म तप ने चलो जिस कर्म लिखादा नेचल मस्तक लेख लिखया सो टल ना टलादा नेचल संगत साध जन वचन नेचल गुर सादा जिनको पूरब लिखया तिन सदा सदा आरादा श्लोक डखने महला पंजवा जो डुबंदो आप सो तराए किन खे तारे निरो भी तार नानक फिर स्यो रत्या महला पंजवा जिथे कोई कथन नाओ सुनंदो मापिरे मुँह जुलाऊ तथ नानक फिरी पसंदो हरे उठियो महला।

राग मारू बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सदगुर प्रसाद। पंडिया कवन कुमत तुम लादे बूढ़ोगे परवार सकल स्यों।

नाम न जपो अभागे राव। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। जी बधो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो भाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिर था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कह कबीर राम रम छूटो, नाहे तबूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है, जो लो मनो न तजे विकार, जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा, रंग रवो आत्मा राम रहो, जटा भसम लेपन किया कहा गुफा में बास। मन जीते जग जीतया, जाते बिछया ते होए उदास। अंजन दे सब कोई सुख चान माहे बिडान, ज्ञान अंजन जे पाया ते लोयन परवान। कह कबीर अब जानया।

राम उदग दे जन पिया तुम बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझिया आसा ते भया निराश। सब सच नजरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस

बिन बै अनुभव होए वना हम बै सौ दूर देखे ता पौ पवे बैरागी अड़े हुक्म बूझे ता निर्भो होए वना हम बै।

शंख चक्र माला तिलक विराजत देख प्रताप जम डरयो निर्भउ भए राम बल गरजत जन्म मरण संताप हरयो अम्बरीक को दियो अभय पद राज बबीकन अदित करयो नौ निज ठाकुर दई सुदा मैं धुरु अटल अज हूँ न टरयो भगत हेत मारयो हर नाखस नरसिंह रूप होए देत हरयो नामा कै भगत बस के सब।

पेट भरो पसवा जो सोयो, मनुख जन्म है हारे राव। साध संगत कब हो नहीं कीनी, रचियो धंधा झूठ। स्वान सूकर बायस जिमे, भटकत चाल्यो ऊठ।

निंदा करते जन्म सिरानो कभू न सिमरो राम। कह कबीर से तह नहीं मूर्ख मुगत गवार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय देव जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया नाद सत पूरिया, सूर सत थोड़ साधक किया। अबल बल तोड़िया अचल चल थपया, अघड़ घड़िया तहां अप्यो पिया। मन आद गुण आद वखाणिया, तेरी दुबदा दृष्ट सम्मानिया। रहाओ अर्ज को अर्जया, सर्द को सर्दया, सलल को सल सम्मान आया। बदत जय देव को रम्या, ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया। कबीर मारू राम सिमर पछताएगा मन, पापी जियरा लोभ करत।

चार पदार्थ अष्टमा सिद्ध नव निध कर तब ताके हर हर हर न जपस रसना खबर सब छाड़ बचन रचना रहाओ नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अक्षर माहे व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरना है। सहज समाज उपाध रहत हो बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन।

कोई न बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी सब मन कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बानिया साधन सब रस चोले अंक समानिया। हर अंक समानी जा प्रभु बानी सा सोहा गण नारे। नवघर थाप मैल घर उच

नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वर घर धन पाए। वै साग बला साखा वेश करे धन देख हर द्वार आवो दया करे। घर आओ प्यारे दुतर तारे सुध बिन अड न मोलो। कीमत कौन करे तुझ पावा देख दिखावे टोलो। दूर न जाना अंतर माना हरता मैल पछाना। नानक वै साखी प्रभु पावे सुरत शब्द मन माना। माओ जेठ भला प्रीतम क्यों विसरे। खलता पैसर भार साधन बिनो करे।

नानक देख जाने तिस जैसे कर्म मिले गुण गहली। आषाढ़ भला सूरज गगन तपे, धरती दुख सह सोखे अगन पखे। अगन रस सोखे मरिए चोखे, भीषो किरत नहारे। रस फिरे छाया धन ताके, टीन लवे मंज पारे। अवगुण बाद चले दुख आ गए, सुख तिस साथ संभाले। नानक जिसनो यो मन दिया, मरण जीवन प्रभ नाले।

सरस मना घन वर्ष ऋतु आए, मैं मन तन सौ पावे फिर परदेश सिधाए, फिर घर नहीं आवे मरिए हावे, दामन चमक डराए, सेज इकेली खरी दुहेली मरण पया दुखमाए, हर दिन नींद भूख को कैसी कापड़ तन न सुखावे, नानक सा सोहागन चंती फिर कै अंक समावे, बादों परम भूली पर जो बन पछतानी, जल थल नीर भरे बरस रुते रंग मानी, बरसे निज काली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते, प्रिय प्रिय चवै बबीहा बोले भुयंगम फिर डसंते, मच्छर डंग सायर पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है, नानक पूछ चलो गुरु अपने जय प्रभ तै ही जाई है, असुन आओ फिरा साधन झूर मुई, सामिली है प्रभु मिले दूजे पाए हुई, झूठ विभूति तापिर मोती को कह कहां से फुले, आगे काम पिछे ऋतु जाडा देश चलत मन डोले, दै दिस साख हरी हरियावल सहज पचे सो मीठा, नानक असुन मिलो प्यारे सतगुर पए बसीठा, कतर किरत पया जो प्रभु पाया, दीपक सहज बले तत जलाया, दीपक रस्ते लो धन फिर मेलो, धन ओ मा है सरसी, अवगुण मारी मरै न सीजै गुण मारी तामरसी, नाम भगत दे निज घर बैठे अजो तिनाड़ी आसा, नानक मिलो कबड़ दर खोलो एक घड़ी खतमासा, मंगल माओ भला हर गुण अंक समावे, गुणवंती गुण रवे मैं फिर नेचल पावे, नेचल चतुर सुजान विदाता चंचल जगत सबाया, ज्ञान ज्ञान गुण अंक समाने सब पाने ता पाया, गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागे, नानक साधन ना प्यारी अब भक्ति तिर आगे, ओख तुखार पड़े वर्ण तृण रसोख है, आवत की नाही मंतन वसे मुखे, मंतन रव रहा जग जीवन गुर सब धी रंग मानी, अंडल जीरज से तज उद्भुज गट गट जोत समानी, दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो, नानक रंग रवै रस रसिया हर्षो प्रीत स्नेहो, माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया, साजन सहज मिले गुण गय अंक समानिया, प्रीतम गुण अंके सुन प्रभु बंके सुर पावा सरनावा, गंग जमुन तै बेनी संगम सात समुन्द समावा, पुण्य दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता, नानक माघ महारस हर जप असर तीरथ नाता, फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया, अनदिन रस बया आप गवाया, मन मोह चुकाया जा तिस पाया, कर कृपा घर आओ बहुते वेत करे फिर बाजो, मैली दान खाओ हार डोर रस पाठ पटंबर तिर लोड़ी सिंगारी, नानक मेर लही गुरु अपने घर वर पाया नारी, बेदस मारुति छिट्टी वार भले घड़ी मुरत पर सा

माया सुध दारा जगत प्यारा चोग चुगा नित फासै नाम जी आवै ता सुख पावै गुरमत काल न ग्रासै जमन मरण।

पुरपूछ जागे नाम लागे तिना रहन सुहे लिया गुर शब्द कमावे जन्म नया मैं तिना हर प्रभु दे लिया कर कंप चरण शरीर कम

सच संभालिया ऐनक देख बिचारिया दावत पंच रहे कर जानिया काम क्रोध बिख मारिया अंतर जोत भई गुरु साखी चीने राम करमा नानक हो मैं मार पति ने तारा चढ़े आलमा गुरमुख जाग रहे चूकी अवमानी राम अनगिन पोर पया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुरजिया हर चरणी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मैं जाता मनमुख परम भुलानी नानक पोर पया मन मान्या जागत रहन विहानी अवगुण विसरिया गुणी घर किया राम एको रव रया अवर न दिया राम रव रया सोई अवर न कोई मन ही ते मन मान्या जिन जल त्रिभुवन घट घट थापया सो प्रभु गुरुमुख जानिया करण कारण समरथ अपारा त्रिपद मेट समाई नानक अवगुण गुण समाने ऐसी गुरमत पाई आवन जान रहे चूका भोला राम हो मैं मार मिले साचा चोला राम हो मैं गुर खोई प्रगट होई चूके सोग संतापे ज्योति अंदर ज्योत समानी आप पछाता आप घर सबद पति नी सावरड़ा तेर पानी नानक सतगुर मेल मिलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला भोलावड़ा भुली भुल भुल पछो तानी फिर छोड़ी सुती फिर की सार न जानी फिर छोड़ी सुती अवगन मुती किस दन विदन राते काम क्रोध अहंकार विगुति हो मैं लगी ताते उडर हंस चलिया फुरमाया बस मैं

जब लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम। क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है तिस दिन रह न जाए। हम दिन प्रो प्रो करे दिन राती फिर दिन प्यास न जाए। अपनी कृपा करो हर प्यारे हर हर नाम सब सारे आ। गुर के शब्द मिलिया मैं प्रीतम हाँ सतगुर वित्तो वारिया। जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम। मेरे अंतर हुए विगास प्रो प्रो सत नित चवा राम। प्रो चवा प्यारे शब्द निस्तारे बिन देखे तृप्त न आवे। शब्द सिगार होवे नित कामन हर हर नाम पे आवे। दया दान मंगत जन दीजै मैं प्रीतम देहो मिलाए। अन दिन गुर गोपाल ते आई हम सतगुरु विट्टो कुमाए। हम पात्र गुर नाव बिख पव जल तारी है राम। गुरुदेवो शब्द सुभाए मैं मूड निस्तारी है राम। हम मूड मुग्ध किस मित नहीं पाई तू अगम वड जानिया। तू आप दयाल दया कर मेले हम निर्गुणी निमाणिया। अनेक जन्म पाप कर परमे हुन तो शरणागत आए। दया करो रख ले वो हर जियो हम लागे सतगुर पाए। गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम। काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया क्यों सास गिरास विसारी है। अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर सबदी हो सतगुर के बलिहारी है। सतगुर आ गए शीश टेक दियो जे सतगुर साचे भावे। आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। जो तुम त्यावे जगदीश ते जन पौ बिखम तरा। बिखम पौ तिन तरिया सुहेला जिन हर हर नाम ते आया। गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया। ज्योति ज्योत मिल ज्योत खवाणी हर कृपा कर तरणी तरा। हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया। तन तन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे। विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित कवे। जा बह गुरमुख हर नाम बोले जा खड़े गुरमुख हर हर कया। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे। तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे। तिनके पाप दोख सब बिन से जिन मन चित इक अरा दिया। तिनका जन्म सफल हो सब किया करते जिन गुरबचनी सच पाखिया। ते तन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे। तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। हमरे हाथ किस नाहे जा तू मेले ता हो आए मिला। जिनको तू हर मेले स्वामी सब तिनका लेखा छुटक गया। तिनकी गणत ना करो को भाई जो गुरबचनी हर मेल लया। नानक दयाल हुआ तिन ऊपर जिन गुर का पाना मनिया पला। तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। सुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ। तिन तू त्याया मेरा राम जिन कै तुर लेख माथ। जिन को तुर हर लिख्या स्वामी तिन हर हर नाम आराध्या। तिन के पाप इक निमक सब लाथे जिन गुरु वचनी हर जापिया। तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया।
तिन देखे हो पया सनाथ। तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ। तू जल थल मई अल परपूर सब ऊपर साच धनी। जिन जपया हर मन चीत हर जप जप मुक्त कणी। जिन जपया हर ते मुक्त प्राणी तिनके उजल मुख हर द्वार। ओए हलत पलत जन पै सुहेले हर राख लिए रखन हार। हर संत संगत जन सुनो पाई गुरमुख हर सेवा सफल बनी। तू जल सल मई अल परपूर सब ऊपर साच धनी। तू थान सनंतर हर एको एक रव्या। वन त्रिन त्रिभवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया। सब चवे हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे। सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावे। सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सब चवया। तू थान सनंतर हर एको एक रव्या। तेरी भगत पंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले। जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके। हर गुण हृदय टिके तिस कै जिस अंतर पाव पावनी होई। बिन पै किने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई। पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा करे। तेरी भगत पंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले। तुखारी महला चौथा नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श पया। दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया। गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी। जन्म मरण दुख खिन में बिन से हर पाया प्रभ अविनाशी। हर आप करते पूर्व किया सतगुरु कुल खेत नावन गया। नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श भया। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। आन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा। हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखण आया। जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर मेला आया। तीरथ उद्दम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ। खबर पई संसार आए त्रै लोआ। देखण आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया। जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किलविख नाश गवाया। जोगी दिगंबर सन्यासी खर दर्शन कर गए गोष्ठ टोआ। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व होआ। दुतिया जमुन गए गुर हर हर जपन किया। जागाती मिले दे पेट गुर पिछे लंघाए दिया। सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम से आया। गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागाती नेड़ ना आया। सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाए ले सब छुटक गया। द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया। तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलक भया। सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लिया। आड़ दाम किच पया ना बोलक जागातिया। मोहन मुंडन पई पाई हम करें क्या किस पास मांगे सब पाग सतगुर पिछे पई। जागातिया उपाव स्यान कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया। तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया। मिल आए नगर मां जना गुर सतगुर ओट गही। गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही। सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता। सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद ते आया। देही नगर कोट पंच चोर बटवारे तिनका थाओ थिओ गवाया। कीर्तन पुराण नित पुन होवे गुर बचन नानक हर भगत लही। मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही। सुखारी संत मैला पंजवा इको अंकार।
सतगुर प्रसाद। कोल कुमाई लालना गुर मन दीना, सुन बचन तुम्हारा मेरा मन पीना। एहो मन पीना ज्यो जल मीना, लागा रंग मुरारा। कीमत कही न जाए ठाकुर, तेरा महल अपारा। सगल गुणा के दाते स्वामी, बिनो सुनो एक दीना। देहो दर्स नानक बलिहारी, जीड़ा बल बल कीना। एहो तन मन तेरा, सब गुण तेरे। खनिए वंजा दर्शन तेरे, दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे। निमख दृष्ट पेख जीवा, अमृत नाम सुनी जय तेरा। कृपा करे ता पीवा, आस प्यासी तिरके ताई। ज्यो चात्रिक बूंदे रे, कहो नानक जीड़ा बलिहारी। देहो दर्श प्रभ मेरे, तू साचा साहिब साओ अमिता। तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता। प्राण सुख दाता गुरमुख जाता, सगल रंग बन आए। सोई कर्म कमावे प्राणी, जेहा तू फुरमाए। जाको कृपा करी जगदीशर, तिन साध संग मन जिता। कहो नानक जीड़ा बलिहारी, जियो पिंड तौ दिता। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुरु टाक लिया मोह पापी पर्दा। ठाक नहारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते। अविनाशी अवगत स्वामी, पूरन पुरख विदाते। पुस्तक कहन न जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का। नानक दास ता कह बलिहारी, मिले नाम हर निंका।

मेरे मन राम नाम नित गाविए रे। अगम अगोचर न जाई हर लख्या गुरपूरा मिले लखाविए रे। रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिव लाविए रे। सबको भगत करे हर केरी, हर पावे सो थाए पाविए रे। हर हर नाम अमोलक हर पै, हर देवे ता नाम ते आविए रे। जिसनो नाम दे मेरा स्वामी, तिस लेखा सब छड़ाविए रे। हर नाम अराधे से तन जन कहिए, तिन मस्तक भाग तुर लिख पाविए रे। तिन देखे मेरा मन बिकसे, ज्यों सुत मिल मात दल लाविए रे। हम बारिक हर पिता प्रभ मेरे, मोको देहो मति जित हर पाविए रे। ज्यों बछरा देख गऊ सुख माने, त्यों नानक हर गल लाविए रे। किदारा महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद मेरे मन हर हर गुण कहो रे। सतगुरु के चरण तोय तोय पूजो, इन विद मेरा हर प्रभ लहो रे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस, इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत की जय, हर गोष्ट साधु स्यो गोष्ट। हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमो रे। अंतर का अभिमान जोर तू किछ किछ किछ जानता, इहो दूर करो आपन गौरे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की तूर कर हरे। किदारा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद माई संत संग जागी, प्रिय रंग देखे जपती नाम निधानी। रहाओ दर्शन प्यास लोचन तार लागी, बिसरी त्यास बिदानी। अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी। देख समोदर रहस मन उपजो, नानक प्रिय अमृत बानी। हिदारा महला पंजवा कर कीजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद दीन बिनो सुन दयाल, पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ। राख हो कृपाल, रहाओ अनिक जतन गवन करो। खट कर्म जुगत ध्यान करो, उपाव सगल कर हारे हो। नह नह हुते बिकराल, शरण बंदन करुणा पते। पाव हरण हर हर हर हरे, एक तू ही दीन दयाल। प्रभ चरण नानक आसरो, उदरे प्रम मोह सागर। लग संतना पग पाल, किदारा महला पंजवा कर चौथा इको अंकार। सतगुर प्रसाद सरनी आयो नाथ निधान, नाम प्रीत लागी मन पीतर। मांगन कौ हर दान, रहाओ सुखदाई पूरन परमेश्वर। कर कृपा राखो मान, देहो प्रीत साधु संग स्वामी। हर गुण रसन बखान, गोपाल दयाल गोविंद दमोदर। निर्मल कथा ज्ञान, नानक को हर कै रंग रागो। चरण कमल संग त्यान, किदारा महला पंजवा। हर के दर्शन को मन चाहो, कर कृपा सत्संग मिलावो। तुम देवो अपनो नाओ, रहाओ करो सेवा सतपुरुष प्यारे। जत सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई। कवन अनूप ते रोठाओ, सर्व प्रत पाले सगल संभाले। सगलिया तेरी छाओ, नानक के प्रभ पुरुष विधाते। कट कट तुझे दिखाओ, किदारा महला पंजवा।

फूले कपट तपट बुझ तृष्णा, जीवों पेख दरसारी कौन सो जतन उपाव कनेहा, सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक, संते संग उधारी किरारा महला पंजवा, हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे, अपना नाम जपावो रहाओ, काड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो, तंपो मोह कट्यो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो, सबकी रेण होए मन मेरा अहंग बुद्ध तजावो, अपनी भगत देह दयाला वड पागी नानक हर पावो, किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारत जात, तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात, रहाओ तन जोबन संपे सुख पोगवे संग न निभत मात, मिर्ग तृष्णा देख रचियो बावर द्रुम छाया रंग रात, मान मोह महा मद मोहत काम क्रोध के खात, कर गए लिहो दास नानक को प्रभ जियो होए साथ, केदारा महला पंजवा हर बिन कोए न चालस साथ, दीना नाथ करना पत स्वामी अनाथा के नाथ, राव सुत

करण समरथ अटक अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बासत मिले लिखत तुर मात खिलारा मैला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद बिसरत नाहे मनते हरी अब इह प्रीत मां परबल सही आन बिखै जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना तेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी चिदारा महला पंजवा प्रीतम बस रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर गह लियो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते लै मोर गर्भ कुंट में जिने तारियो नहीं बिखे बन में होर हर सकत सरन समरथ ना

आओ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आशा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल मूर्त हृदय तारो त्यान नाम निधान लाभ नानक बस ए परवान केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कछ व्यापे संत संग व्यवहार रहाओ कर अनग्रह आप राख्यो न उपजतो बेकार जिस परापत होए सिमरे तिस दहत नह संसार सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार नानक दास शरणागति तेरे संतना की चार केदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत जीवन रूप विसार जीवे ते कत जीवन होत रहाओ खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत आठ पैर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत तज गोपाल जे आन लागे ते बहु प्रकारी रोत कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत किदारा महला पंजवा संते तूर ले मुखमली गुणा अचुत सदा पूरन नह दोख व्यापे कली राव गुर बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली प्रभ एक अनक सर्वत पूरन दिखे अग्न ना जली गह पूजा लीनो दास अपनो ज्योति ज्योत रली प्रभ चरण शरण अनाथ आयो नानक हर संग चली केदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचे कोट सांत आनंद पूरन जलस छाती बुझे रहाओ संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचे रेन जन की लगी मस्तक अनक तीरथ सुचे चरण कमल ध्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजे शरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं लुजे।

राम न जपो कवन प्रम फूले, तुम ते काल न दूरे, अनित जतन कर एहो तन राखो, रह अवस्था पूरे। आपन किया कछु न होवे, क्या को करे परानी, जात पावे सतगुरु पेटे, एको नाम बखानी, बलुआ के करुआ में बसे।

पाओ भगत च्यों काज न कछुए मेरो काम दीवान। राम विसार्यो है अभिमान कनक कामनी महासुंदरी पेख पेख सच मान। राव लालच झूठ विकार महामद ए बिद औद बिहान। कह कबीर अंत की देर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग ना कछ ले जाए। रहाओ देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए। मरहट लग सब लोग कुटम मिल हंस इकेला जाए। वह सुत वह बित वह पुर पाटन बौर न देखे आए। कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकारत जाए। राकेदारा बाणी रविदास जीओ की इको अंकार। सतगुर प्रसाद खत कर्म कुल संयुक्त है हर भगत हृदय नाहे। चरनार बिंद ना कथा पावे सुपत तुल समान। रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बालनी कै देख। किस जात ते के पदे अमरियो राम भगत विशेख। रहाओ स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत। लोग बपुरा क्या सारा है तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुबत कुंचर गए हर के पास। ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। राग पैरों मैला पहला कर पहला चौप दे।

पुस्तक पाठ व्याकरण वखाने संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंड कमंडल शिखा सूत तोती तीरथ गवन अप प्रमन करे राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सोपार परे जटा मुकुट तन पखम लगाई बस्तर छोड़ तन नगन भया राम नाम बिन तृप्त ना आवे किरत के बांधे पेख पाया जे तेजी जंत जल फल महियल जत्र कत्र तू सर्व जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक चोल पिया।

जात का गर्व न करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्व न कर मूर्ख गावारा, इस गर्व से चले बहुत विकार आ रहा। चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा, बोविद पांडे करे कुमारा। पंच तत् मिल देही काकारा, कटवद को करे बिचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई।

की दयाल पंच शब्द बजाई, पंत नानक करे क्या कोए, जिसनो आप मिला वै सोए पैरों महला की जा। सो मुन जे मन की दुबदा मारे, दुबदा मार ब्रह्म विचारे, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध।

चार हुक्म बुझ समाना। कर्म होवे गुर कृपा करे, यह मन जागे इस मन की दुविधा मरे। मन का स्वभाव सदा बैरागी, सब में बसे अतीत अनुरागी। कहत नानक जो जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ। पैरों महला तीजा, राम नाम जगत निस्तारा। पव जल पार उतारण हारा, गुर प्रसादी हर नाम समाल। सद ही निभे तेरे नाल, रहाओ नाम ना चे

नानक गुरमुख नाम प्यार पैरों में लाती जा। कल युग में बहु कर्म कमाए ना रुत ना कर्म खाए पाहे। कल युग में राम नाम है सार गुरमुख साचा लगे प्यार। रहाओ तन मन खोज करे मैं पाया गुरमुख राम नाम चितलाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए राम नाम रव रया ते लोए। कल युग में हर जियो एक होर रुत न काई नानक गुरमुख हृदय राम नाम लियो जमाई। पैरों में लाती जा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। डुबदा मन मुख रोग व्यापे कृष्णा जले अधिकाई। मर मर जम में ठौर न पावे बिरथा जन्म गवा।

सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे गुर सबदी विचारा हर जियो सत्संगत मेलाए नानक तिसनो देव दयाई जो राम नाम चितलाए रहाओ ममता काल सब रोग व्यापे तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ न आवे जिन हर राख्या उधारा जिन हर का नाम ना गुरमुख जाता।

कृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते हृदय नाम दुबदा मन पागी हर हर अमृत की तृप्ता से रहाओ आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिम साजी।

गुरमुख मन वसाए, आप तरे सगले कुल तारे, जिनी राम नाम लिवलाए, मेरा प्रभ है गुण का दाता, अवगुण शब्द जलाए, जिन मन वस्या से जन सोहे, हृदय नाम वसाए, कर दर मेल सतगुरु दिखाया, रंग सो रलिया माने, जो कुछ कहे सो पला कर माने।

गुरु प्रसाद परम पद पाया, सब इच पुजावन हार राव, सब मैं एको रब रहा, गुर बिन बूझ न पाए, गुरमुख प्रगट होआ मेरा, हर प्रभ हम दिन हर गुण गाए, सुखदाता हर एक

या दाता से अंत गए पछताए, सतगुरु सेव सदा सुख पाया फिर दुख न लागे ताए, नानक हर भगत प्राप्त होए ज्योति जोत समाए, पैरों महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना, फूला चोटा खाए मर मर जमे सदा दुख पाए, डर की खबर न पाए, मेरे मन सदा रहो सतगुरु की शरणा, हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर शब्दे पव जल करना रहाओ, देख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार, अंतर तिसा भूख अत बहुती पौकत फिरे दरबार, गुर के शब्द मरे फिर जीवे तिनको मुक्त द्वार, अंतर शांत सदा सुख होवे हर राख्या उदार, जो तिस भावे तिवे चलावे करना किसु न जाई, नानक गुरमुख शब्द संभाले राम नाम वडियाई, पैरों महला तीजा हो मैं माया मोह खुआया, दुख खटे दुख खाए अंतर लोभ हलक दुख पारी, बिन विवेक परमाए मन मुख त्रिग जीवन सहसार, राम नाम सुख

आपके मार्ग पाए, आपके गुरुमुख देव दे आए, नानक नाम समाए पैरों महला पीजा। मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला, दूजे पाए फाके जमजाला। सतगुरु करे मेरी प्रतपाला, हर सुखदाता मेरे नाला। गुरु उपदेश प्रहलाद हर उचरे, सासना के बालक गम न करे। रहाओ माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़ो जियो ले उबारे। प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए, राम नाम न छोड़ा गुरु दिया बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे, प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकरे बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रघुराया। हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहां तुझले उबार। किन मैं पयान रूप लिख्या थम उपार, हरनाकस नखी विदारिया प्रहलाद लिया उबार। संत जना के हर जियो कार सवारे, प्रहलाद जन के इच्छी कुले उदारे। गुर के शब्द हो मैं बिख मारे, नानक राम नाम संत निस्तारे। पैरों महला पीजा, आपे दैंत लाए दिते संत जना को। आपे राखा सोई जो तेरी सदा सरनाई, तिन मन दुख न होई। जुग जुग भगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री। तर्पण किछु न जाने शब्द मेल मिलाया रहाओ। अन दिन पगत करे दिन राती, दुबदा सब देखोई। सदा निर्मल है जो सच राते, सच वस्या मन सोई। मूरख दुबदा पने

सुकृत करनी सार जप माले, हृदय फेर चले तुगनाले, हर हर नाम जपो बनवाले, कर कृपा मेलो सब संगत, टूट गई माया जमजाली राव। गुरुमुख सेवा काल जिन काली, तिस तरिये सब सची टकसाली, हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली, हम बारिक हर पिता प्रतपाली, जन नानक तारो नगर निहाली, पैरों महला चौथा सब कट तेरे तू सबना माहे, तुझते बाहर कोई नाहे, हर सुखदाता मेरे मन जाप,

जिसको तुम हर राखिया भावे तिसके नेड़े कोई न जावे। तू जल थल मैयल सब ते भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजू।

हर बाहर जो कुछ करे सोई पल होसी, हर क्या वो अंग दिन नाम मुरार, हर जो कुछ करे सो आते आते वो पूछ ना किसे करे विचार, नानक सो प्रभु सदा त्याई है जिन मेलिया सतगुरु कृपा तार, पैरों महला चौथा ए साधु हर मेलो स्वामी, जिन जपिया गत हुए हमारी, तिनका दर्श देख मन बिगसे, किन किन किन कहो हो बलिहारी, हर हृदय जप नाम मुरारी, कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनिहारी रहो, तिन मत उत्तम तिन पत उत्तम, जिन हृदय वस्या बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत हुए हमारी, जिन ऐसा सतगुरु साधना पाया, ते हर दरगे का दे मारी, ते नर निंदक सोग न पावे, तिन नख काटे सुरजनहारी, हर आप बुल

कहो कबीर इहो किया वखाना, गुर पीर मिल खुद खसम पचाना। कहरों महला पंजवा, दस मिर्गी सहजे बंध आने, पांच मिर्ग दे दे शिव की बाने। संत संग ले

नानक कह कर केवल नाम। पैरों महला पंजवा जे सो लोच लोच खावाया साकत हर हर चीज।

सुकाया, खट शास्त्र मूर्ख सुनाया, जैसे दैदिस पवन चुलाया, दिन कान खलहान जैसे दान पाया, क्यों साकत ते को

पहला पंजवा निकट बुझे सो बुरा क्यों करे बिसंक नित डरता फिरे है निकट अर्थ एक न पाया बिन सतगुरु सब

महला पंजवा जिस तू राख है कुछ कौन मारे है सब तुझ ही अंतर सगल संसार है कोट उपाव चितवत है प्राणी सोहो वैज करे चोज विदानी राखो राखो कृपा तार तेरी शरण तेरे दरबार राव जिनसे व्या निरपो सुखदाता।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सद ही चूरे, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दर का विचार, पैरों मेला पंजवा, हूँ मैं रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाग रोग खप गए।

मन मानिया नानक भगवंता कहरो महला पंजवा। बाप हमारा सद चरण जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज करवासी, हम सुख पाया।

नानक उदरे नाम पुनः चार, हवर कर्म लोके पतियार, पैरों महला पंजवा, नमस्कार ताको लख बार, रुमन दी जय ताको वार, सिमरन ताके मिटे संताप, होए आनंद न व्याप।

जा को सतगुरु दियो नाम, जा को पेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जतना। कहो नानक जो जन प्रभ पाए, ताकी रेन बिरला को पाए। हैरो महला पंजवा, चितवत पाप ना आलक आवे, बेसुआ भजत किसने शरमावे। सारो दिन मजूरी करे, हर सिमरन की वेला बज्जर सिर पर। माया लग पूलो संसार, आप पुलाया पुलावन हारे। राच रहा बिरथा व्योहार राओ, एक माया रा।

पूरन होत न कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे हुए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया, पैरों मैला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए, राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

जित लड़ लाए ले सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभ सभी साथ, तेरो महला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रविया हर नाम, सतगुरु पूरे तीनो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमूला अपर

स्वाओ नाम न विसरै संत प्रसाद नाम लेत अनहद पूरे नाद प्रभ कृपा ते नाम नौ निज पाई गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई तनवंते से प्रधान नानक जा कै नाम निधान पैरों महला पंजवा तू मेरा पिता

नाम तिस शरणाई सदा सुख होए कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ जाके कर्तव्य लते न जाए जाका परवासा सब कट माए।

सिर पाप सा साचा सोए, जिसकी ओट तिसे की आशा, दुख सुख हमरा किसी पासा, राख लीनो सब जन का पर्दा, नानक किसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चिताया, बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग न होए, दिखला का सब

ज्ञान है। मूर मुग्ध होए चतुर सुज्ञान है। सगल पयान का पौन से जन अपने के हर मन बसे। पार ब्रह्म प्रभु सुख निदान है। तत् ज्ञान हर अमृत नाम है। कर कृपा संत टहले लाए। नानक साधु संग समाए। पैरों महला पंजवा। संत मंडल में हर मन वसे। संत मंडल में दुर्त सब नसे। संत मंडल में निर्मल रीत। संत संग होए एक प्रीत। संत मंडल तहां का नाओ। पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ। संत मंडल में जन्म मरण रहे। संत मंडल में जम किछु ना कहे। संत संग होए निर्मल बाणी। संत मंडल में नाम वखाणी। संत मंडल का नेचर आसन। संत मंडल में पाप विनाशन। संत मंडल में निर्मल कथा। संत संग हो मैं दुख नसा। संत मंडल का नहीं विनाश। संत मंडल में हर गुण पास। संत मंडल ठाकुर विश्राम। नानक ओत पोत भगवान। पैरों मैला पंजवा। रोग कवन जा राखे आप। इस जन होए न दुख संताप। जिस ऊपर प्रभु कृपा करे। इस ऊपर के काल पर हरे। सदा सखाई हर हर नाम। जिस चीत आवे तो सदा सुख होवे। नित ना आवे ता कह जाम रहाओ। जब ए नासो तब किने उपाया। कवन मूल के क्या प्रगटाया। आपे मार आप जीवाले। अपने भगत को सदा प्रतिपा।

ला कोए, हर हर नाम जपे जन सोए। रहाओ अहं बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग। नाम तिराए हर हर

कोई भगत जपे नाम जाप मन पर दास गुते मत लई। कहो नानक

सहो नानक प्रभु कृपा करी, सास गिरास जपो हर हरी, पैरो महला पंजवा, सबसे ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख वसे मन आए, सिमर मन

नानक को गुर पै दयाल पैरों मैला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटे कलेश सुख सहज निवास तिसे प्राप्त जिस

जो इच्छा सोई फल पाए, हर का नाम मन वसाए, आवन जान रहे हर त्याए, भगत पाए प्रभु की लीलाए, बिन से काम क्रोध अहंकार, टूटे माया मोह प्यार।

सगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए, पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे, हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे, मूल बिना साखा कथा है, गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे, बंधन काट हर संग मिलाए रहो।

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रैन ते आया, टूटे बंधन पूरन आसा, हर के चरण रिद माय निवासा, कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप प्रेत पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरों महला पंजवा, नाम लैत किछ बिघन न लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देओ न पो है, हर सिमरत मोह मान न बद्दे, हर सिमरत गर्भ जोन न रुद्दे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग, नानक को प्रभु कृपा तार, सास सास हर दियो चितार, पैरों महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूरन समरथ, प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, रहा

प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनेक रंग बहुत रंग सर्व को तनी रहाओ अनेक ज्ञान अनेक ध्यान अनेक जाप जाप ताप अनेक गुणत तुनत ललित।

लक्ष्मी पौ करे नासा कह जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए, सतगुरु नाम निधान।

बचे हर प्रभ आप मिलाए गुर की वाणी शब्द पछाती साच रहे लिव लाए तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल गुर कै शब्द विचारे नानक तिन कै सद

आया। कहो नानक तत्ते तत मिलाया, पैरों महला पंजवा, कोट बिशन कीने अवतार, कोट ब्रह्मंड जाके तर्मसाल, कोट महेश उपाय समाए।

तरतत्यान कोट तपीसर तप ही करते, कोट मुनीसर मौन में रहते, अवगत नाथ अगो

पहचाना उलट जात कुल दो विसारी सुन सहज मैं बुनत हमारी हमरा चगरा रहा न को पंडित मुला छाडे दो रहाओ बुन बुन।

बिरख मूल माया में परा, माया अंतर पीने देव, सागर इंद्रा अर्तर देव, कह कबीर जिस उदर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे।

दियो जवाब होए बजगारी, दास कबीर तेरी पन्ह समाना, पिस्त नजीक राख रहमाना, सब कोई चलन कहत है उहा, ना जानो बैकुंठ है कहाँ रहाओ, आप का मर्म न जाना, बातन ही बैकुंठ बखाना, जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग ना ही चरण निवास, खाई कोट ना

आहे। क्यों लीजै गड बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। रहाओ पांच पच्चीस मोह मद मत्सर, आडी परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे।

उत मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जा कह प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जा कह मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ।

फिरे बासक कोट सेज बिस्तरे समुंद कोट जाके पानी हार रुमावल कोट अठारे पार कोट कमेर परे पंडार कोटक लक्ष्मी करे सिगार कोटक पाप पुन

राव। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामी प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए। कबहु न टूटस रहा समाए, नामे चित लाया सचनाए।

ताना। पापी का कर अग्ने माहे, जलत रहे मिट वै कब नाहे। राव हर की भगत ना देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए। मूलो पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिख खाए। ज्यों बेसवा के परे अखारा, कापर पहर करे सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वहां के गले जम का है फांस। जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना। कहत नाम दियो इहो विचार, इन विद संतो उतरो पार। संडा मर कह जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे। राम कह कर ताल बजावे, चटिया सब बिगारे। राम नामा जप वो करे,

परफड चित समाल सोए सदा सदा गोविंद। पोलिया हौ मैं सुरत विसार, हौ मैं मार विचार मन, गुण विच गुण लै सार रहाओ, कर्म पेड़ साखा हरी, धर्म फुल फल ज्ञान।

सच नाम पत का तन पूरा होआ लागा सहज ध्यान महारुति आवना वेखो कर्म कमाए नानक हरे न सो कही जे गुरमुख रहे समाए महला पहला बसंत रुत आई ले सरस बसंत माए।

फैला। सगल पवन तेरी माया मोह, मैं अवर नदी सह सर्व तो हो। तू सुरनाथा देवा देव, हर नाम मिले गुरु चरण सेव। मेरे सुंदर गहर गंभीर लाल, गुरुमुख राम नाम गुण गाए। तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ, बिन साध ना पाये हर का संग। बिन गुरु मैल मलीन अंग, बिन हर नाम ना सुध।

आए गुर संग दिखायो राम राय, मिल सकी सहेली हर गुण बने, हर प्रभ संग खेले वर कामन, गुरमुख खोजत मन मने रहाओ, मनमुखी दुहागन नाहे पेओ, ओ कट कट रावे सर्व प्रेओ, गुरमुख तिरची ने संग देओ, गुर नाम दृढ़ाया जप जपेओ, बिन गुर भगत ना पाओ होए, बिन गुर संत ना संग दे, बिन गुर अंधले तंद रोए, मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए, गुर

गुरमत उत्तम संग साथ, हर नाम रसायन सहज आथ, मत बिसरस रे मन राम बोल, अपरंपर अगम अगोचर गुरुमुख, हर आप तुलाए।

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहो पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा, गुर प्रसाद को पा।

सालग्राम बिप पूज मनावो, सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो, दया करो दयाला,

तीजा राते सात हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोए ज्यो पावे त्यों राखे सोए गुरु गोपाल मेरे मन पाए रह न सकूं दर्शन दे।

जे हर जीव भावे सदा सुख शरीर पाने चित लावे अपना प्रभ सेवे सहज सुभाए नानक नाम वसै मन आए बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाए मन तन हरिया सतगुरु भाए सफल्यो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुभाए सच फल लागे सतगुरु भाए रहाओ आपे नेड़े आपे दूर गुर कै शब्द वेखै सद हजूर सावकणी फूली बन राए गुरमुख बिगतै सहज सुभाए अन दिन कीर्तन करें दिन रात सतगुरु गवाई विच्चों झूठ परात परपंच वेख रहा विस्माद गुरमुख पाये नाम प्रसाद आपे करता सब रख भोग जो किछ करे सोई पर होग वड्डा दाता तिल ना तमाए नानक मिलिए शब्द कमाए बसंत महला तीजा पूरे पाग सचकार कमावे एको चेतै फिर जून नावे सफल जन्म इस जग में आया सच नाम सहज समाया गुरमुख कार करो लिव लाए हर नाम सेवो विच्चों आप गवाए रहाओ तिस जन की है साची बाणी गुर कै शब्द जग माए समाणी चहो जुग पसरी साची सोए नाम रता जन प्रगट होए।

होए जिन सच सेविया तिन रस पाया नानक सहजे नाम सुमाया बसंत महला तीजा भगत करे जन देख हजूर संत जना की पग पंकज धूर हर खेती सद रहे लिव लाए पूरे सतगुरु दिया बुझाए दासा का दास गिरला कोई होए उत्तम पदवी पावे सोए रहाओ एक को सेवो अवर न कोए जित सेवे ऐसा सुख होए ना ओ मरे ना आवे जाए जिस बिन अवर सेवी क्यों माए से जन साचे जिनी साच पछाणिया आप मार सहजे नाम समाणिया गुरमुख नाम प्राप्त होए मन निर्मल निर्मल सच होए जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान साच सबद प्रभ एक स्ञान हर रस चाखे ता सुध होए नानक नाम रते सच

जीवत मरे मर मरण सवार है, गुरु कै शब्द साच उधार है रहाओ। गुरुमुख सच भोजन पवित्र शरीरा, मन निर्मल सद गुणी गहीरा, जब मैं मरे ना आवे जाए, गुरु प्रसादी साच समाए, साचा से वो साच पछाने, गुरु कै शब्द हर दर निशाने, दर साचे सच शोभा होए, निज करवासा पावे सोए, आप अपूल सच्चा सच सोए, और सब पूले दूजे पथ होए, साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साच समाणी, बसंत महला तीजा, बिन कर्मा सब परम पुलाई, माया मोह बहुत दुख पाए, मनमुख अंधे ठौर न पाए, बिस्ता का कीड़ा बिस्ता माए समाए, हुकम मने सो जन प्रवान, गुर कै शब्द नाम निशान रहाओ। साच रते जिना तुर लिख पाया, हर का नाम सदा मन पाया, सतगुर की बाणी सदा सुख होए, ज्योति ज्योत मिलाए सोए, एक नाम तारे संसार।

लै पाए सो बुझाए जिस आप बुझाए सतगुरु सेवा नाम दृढ़ाए जिन एक जाता के जन प्रवान नानक नाम रते दा निशान बसंत मैला तीजा कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप।

बहु पेक करे मन शांत ना होए, बहु अभिमान अपनी पक होए, सेवट पागी जिन शब्द पछाणिया, बार जांदा कर मैं आणिया, कर मैं वक्त अगम अपारा, गुरमत खोजे शब्द विचारा, नाम नाम निध पा

गुरसा लाई सर अपना पाई, गुरचरणी चित लाई मेरे मन राम नाम चित लाए, मन तन तेरा हरिया होवे, एक हर नामा फल पाए रहाओ।

टूट तिना की अकुली है पाए, सत्संगत मेल मिलाए, आप सराय करे आप भाई, जिन हरिया की आ सब कोए, नानक मन तन सुख सद वसै पाए, शब्द मिलावा होए। राग बसंत मैला चौथा हर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यों पसरी सूरज के।

रहाओ। काट काट अंतर एको हर सोए, गुर मिलिया एक प्रगट होए। एको एक रहा परपूर, साकत नर लोभी जाने दूर। एको एक वर्तै हर लोए, नानक हर एको करे सो होए। बसंत महला चौथा, रैन दिनस दोए सदे पए। मन हर सिमरो अंत सदा रख ले, हर हर चेत सदा मन मेरे। सब आलस दुख पंज प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ के रे रहाओ। मन मुख फिर हो मैं मोए, काल दैत संगारे जमपुर गए। गुरमुख हर हर हर निव लागे, जन्म मरण दो दुख पागे। भक्त जना को हर कृपा धारी, गुरु नानक तुखा मिलिया बनवारी। बसंत हिंडोल मैला चौथा, कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद राम नाम रतन कोठड़ी, घर मंदिर एक लुकानी। सतगुर मिले ता खोजिए, मिल ज्योति जोत समानी। माधो साधु जन देओ मिलाए, देखत दर्स पाप सब नासे। पवित्र परम पद पाए राव, पंच चोर मिल लागे नगरिया। राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे। तन साबत रास उबरिया, पाखंड परम उपाव कर थाके। हृद अंतर माया मा

साध मिलावे, नानक शांत होवे मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुम नछे, हर दीन दयाल करो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बनछे, गोविंद जी ओ सत संगत मेल कर कृपछे, जन्म जन्म के किल विख मल परया।

हम कीड़े पतत पवीछे बसंत ही डोल मैला चौथा मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गी दे जो बारिक रसक परयो थन माता थन का दे बिलल बिली दे गोविंद जी ओ मेरे मन तन नाम हर दी दे।

जन नानक शरण पवी दे बसंत हिंडोल मैला चौथा मन खिन खिन परम परम बहुत आवे दिल कर नहीं वाता पाई है गुर अंकत शब्द दारू सिर तारियो कर मंदर आन वसाई है गोविंद जी ओ सत्संगत मेल हर त्याई है हूं मैं रोग गया सुख पाया हर सहज समाग लगाई है रहाओ कर रतन लाल बहु मानक ला दे मन प्रम्या लह न सकाई है ज्यो ओडा कूप गोज खिन काडे त्यो सतगुर वस्त लहाई है जिन ऐसा सतगुर साधना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीव आई है जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदले जाई है मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा कर कृपा गुरु मिलाई है जन नानक निर्वाण पद पाया मिल साधु हर गुण गाई है बसंत हिंडोल मैला चौथा आवन जान पया दुख बिख्या दे मन मुख सुनी सुन राम नाम खिन पल नहीं चेत्या जम पकड़े काल सुलुंज गोविंद जी ओ बिखो मैं ममता मुंज सत संगत गुर की हर प्यारी मिल संगत हर रस पुंज राव सत संगत साध दया कर मेलो शरणागत साधु पंज हम डूब दे पाथर काट ले हो प्रभ तुम दीन दयाल दुख पंज हर उस्तत तारो

किसे प्राप्त एहो निधान, नानक गुर जिस करे दान। बसंत महला पंजवा, इस बसंत जिस प्रभु कृपाल, इस बसंत जिस गुर दयाल। मंगल तिस कह जिस एक काम, इस सद बसंत जिस

पग तारा दें जोग जुगत, नेत्र संतोखे दर्श पेख, रसना गाए गुण अनेक, तृष्णा बूजी गुर प्रसाद, मन आधा ना हर रसें स्वाद, सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख अपरंपर देव, सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो इहो निधान, बसंत महला पंजवा, तुम बरदाते दे रहे, जी प्राण में रव रहे, दीने सगले पोजन खान, मोहिनी

तरों टेक सर्व कला प्रभ तुम पर बीन अंत न पावे जलह मीन अगम अगम ऊंचे ते ऊंच हम थोरे तुम बहुत मूच जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत शरण नानक परे बसंत महला।

नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवा, मन तन पीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस, किलविख काटे साध संग, नाम जप्यो हर नाम रंग, गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उधारे, सदा सदा हर जस सुना रहाओ।

राम रंग सब गए पाप, राम जपत तत नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत कछना है फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख

जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा। प्रभ रख वाले माई बाप जा कै सिमरन नहीं संताप। खसम त्याई इक मन इक भाए गुरपूरे की सदा शरणाई। साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ अपने जन प्रभ आप रखे। दुष्ट दूत सब प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए। दुख देश दुसंतर रहे ताए किरत ओना का मिटस नाहे। ओए अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए। जन को पहुँच ना सकस कोए प्रवदास रखे कर जतन आप। अखंड पूरन जा को प्रताप गुण गोविंद नित रसन गाए। नानक जी वह हर चरण ध्याए। बसंत महला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया। सर्व मनोरथ पूरन काम जप जी वह नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर्षित आवे बिन सत गुरु दी सह बिल लांती। साकत फिर आवे जावे रहाओ।

संगत पद कियो निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल मई अलरव रया, गुर मिल नानक हर हर कया, अष्ट सिद्ध नव निध एहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीवे तेरे दास, गुर मिल नानक कमल परगास, बसंत महला पंजवा कर पहला, इक तुके इको अंकार, सतगुर प्रसाद, सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रवन जोग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ, कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, सेज सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख तनी, मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पुजारिया, बसंत महला पंजवा, किल बिख बिन से गाए गुना, आन दिन उपजी सहज तुना, मन मौलियो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन बेटे, नितरा तो हर नाम रंग रहाओ, कर कृपा

नानक प्रभ कृपा भई बसंत महला पंजवा रोग मिटाए प्रभु आप बालक राखे अपने कर थाप सांत सहज गृह सद बसंत गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप जप हर हर मंत्र रहाओ सोग संताप कटे प्रभ आप।

सुखदाता जपदे नीत नीत बसंत महला पंजवा हुकम कर कीने निहाल अपने सेवक को पया दे।

देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभु सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बासकू।

दुबदा दूर करो लिवलाए। हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। इन बिद पासा तालो वीर, गुरमुख नाम जपो दिन राती। अंत काल न लागे पीर रहाओ, तरम तरम तुम चौपर साजो। सत करो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो। ऐसी खेल हर प्यारी, उठ इस नाम

है भाणा कहो नानक कह पया द्वारे रख ले वो मुग्ध अजाना बसंत हिंडोल मैला पन्नवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म प्रवधनी मोहि निस्तारो निर्गुनी रहाओ ओ पत पर लो।

या जानो या पीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐडानो। संग तिहार है कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो। उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उर्यानो। जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो। बसंत महलानो।

बार अंत की होए सहाय, कहो नानक गुण ताके गाए। बसंत महला पहला, अष्टपदियां कर पहला, दो तुकियां एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद।

नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपा धार। बसंत महला पहला मन फूलो परमस आए जाए, अत लुभद लुभानो विकम माए, न अस्थिर दिसे एक।

सतगुरु मिले मत उत्तम होए, मन निर्मल हो मैं कड्डे धोए, सदा मुक्त बंद ना सके कोए, सदा नाम वखाने और ना कोए, मन हर के पाने।

तू अपुल ना पूलो कदे ना है, गुर शब्द सुनाए मत अगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे, बसंत महला पहला दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तराचे पर हर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए, गुरमुख

सहन भाव नानक हूँ मैं शब्द जलाया सतगुरु साचा दर्श दिखाया बसंत महला पहला चंचल चीत न पावे पारा आवत जात न लागे बारा दुख कणो मरिए कर तारा बिन प्रीतम को करे न सारा सब उत्तम किस आखो ही ना हर पगती सच नाम पतीना रहाओ औखद कर था।

व्यापे कट कट रव रहा प्रभ जापे सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता नानक राम रवे हित चीता बसंत महला पहला एक तुकिया मत पसम अंधूर।

बेअंत अपारा सचपति जय करने हारा। नानक पूले गुर समझावे एक दिखावे साच टिकावे बसंत महला पहला। आपे पौरा फूल बेल आपे संगत नीत मेल ऐसी।

तू अकल निरंजन परम हीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद, बसंत हिंडोल मैला।

दिहाड़ी नानक नाम मिले वड़ियाई मेखा कड़ी समाली बसंत हिंडोल कर दूजा महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। पाया नगर एक बालक वसिया खिन पल थिर ना रहाई अनेक उपाव जतन कर थाके बारंबार परमाई मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाये पज राम नाम निशान रहाओ एहो मृतक मरा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसिया राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हो आ रसिया मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया।

आपे जल अपरंपर करता आपे मेल मिलावे नानक गुरुमुख सहज मिलाए जो जल जल है समावे। बसंत महला पंजवा कर पहला।

भगत बिहुना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद पजो मेरे सदा मीत साथ शब्द कर सदा प्रीत रहा।

राजा सब मंगन हार, दुख सुख बादो संसार, मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, ईट मीत को सखाना है। आप बीज आपे ही खाए, जाके कीने होत बितार।

पर कृपा प्रभु देहु नाओ तू करता तू करणहार तू ऊंचा तू बहु अपार कर कृपा लड़ देहु लाए नानक दास प्रभु की शरणाए बसंत की वार महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद हर का नाम से आए कै हो वरिया भाई कर्म लिखन तय पाई है ए रुत सुहाई वन त्रिन त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजे लखी सब छाई नानक सिमरे एक नाम फिर बहुड़ न पाई पंजे बद्दे महाबली कर सच्चा ढोआ अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ दिन रहे नाम से आएदा फिर पाए न मोआ जिस ते उपजिया नाम का।

अगम अगोचर साहेब दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशिया नानक सुनावे बसंत माणी भगता की कबीर जी कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया।

जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, इस देही के अधिक काम, कह कबीर पद राम नाम।

है कबीर को लखे न पार, प्रहलाद उधारे अनेक बार। इस तन मन मदे मदन चोर, जिन ज्ञान रतन हिर लीन मोर। मैं अनाथ प्रभ कहो काहे, तो को ना बिगू तो मैं को आहे। मादो दारन दुख सहो न जाए, मेरो चपल बुद्ध स्यो कहा बसाए। रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद, नाभि कमल जाने ब्रह्माद। सब जन जोगी जटा तार, सब आपन औस

चलो बन जा रहा हाथ चार, पूंजी हिरानी बनज टूट, दैद सितांडो गयो फूट, कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता परम पाज, बसंत हिंडोल कर।

पेट खाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी।

गुर का शब्द काटे कोट कर्म बसंत बाणी नाम देव जी के इको अंकार सतगुर प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पजे चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल मेरे हीरे बसे रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे तैसे संत जना राम।

कते त्रुटि तुहाकति सर कोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पंत नाम दियो रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाहे पहरावा देखे उबजाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भे बावली जैसे पादो खूब राज तू किस

मन मानिया हर पाए प्राण आधारा रहाओ। इन विद हर मिलिए वर कामन तन सुहाग प्यारी जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी जिस मन माने अभिमान ना।

अंतर रतन पदार्थ हित को दुरै ना लाल प्यारी। नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर धारी। सारंग महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम धूर। मिल सत्संगत परम पद पाया आत्म राम रहा भरपूर। रहाओ सतगुर संत मिले सांत पाये। दिल विच दुख काटे सब दूर। आत्म ज्योत पई पर

आत्माधारी। नानक जिन को नजर भई है तिनकी तैसवारी। सारंग महला चौथा हर हर अमृत नाम दिहो प्यारे। जिन ऊपर गुरुमुख मन मानिया तिनके काज सवारे रहाओ। जो जन दीन भय गुर आ गए तिनके दुख निवारे। अंग दिन भगत करे गुर आ गए गुर के शब्द सवारे। हृदय नाम अमृत रस रसना रस गावे रस बिचारे। गुर प्रसाद अमृत।

साथ वसे मन आए, गुरु कृपाल पै तम पाया, हर चरणी चित लाए, मत पर दास पई हर ध्याया, ज्ञान तत् लिव लाए, अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया, हर सहज समाज

तिन वाजे पंच शब्द वद पाग मथोरा, तिन जन के सब पाप गए, सब दोख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए, तिन जन के हर मार कदे पंच चोरा, हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु जगदीश जपो, मन बचन कर्म हर हर

सदा सदा आनंद जप जगदीश राग मन इच्छे फल पावो सदे फल पावो धर्म अर्थ काम मोख जन नानक हर सो मिले।

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले जिस सतगुरु सो जन, हर हर अमृत नाम।

फिर प्यास चात्र की जो जल की सफल दर्शन कद पाओ रहाओ। अनाथा को नाथ सर्व प्रतिपालक भगत वत्सल हर नाओ जाको कोई

पद जै गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद। जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महा प्यान उद्यानद। जहां कीर्तन साध संगत।

पाए, जो जो शरण पर्यो करुणानिध के पाए तराए रहाओ। सुख सोयो अर सहज समायो, सहसा गुरहे गवाए। जो चाहत सोई हर कियो, मन बांचत फल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो, श्रवणी कथा सुनाए।

है। गोविंद ना पजे अहं बुद्ध माता, जन्म जुए जो हारे रहाओ। नाम अमोला प्रीत ना किस्यो, पर निंदा हितकार है। छापर बांध सवारे त्रिन को, द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठा

अवर सब फूले प्रमत न जानिया। एक सुदाखर जा कै हृदय वस्या, इन वेदें तत पछानिया रहाओ। परवृत मार्ग जेता किस

जगदीश है। खोजत खोजत ए बिचारियो सर्व सुखा हर नामा, कहो नानक किस पयो प्राप्त जा के लेख मसामा। सारंग महला पंजवा, अन दिन राम के गुण कही है, सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांचत फल लिये रहाओ। आवो संत प्राण सुख दाते सिमरन प्रभ अविनाशी, अनाथे नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो खटवासी। गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड पागे, कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे।

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन, सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निद मंगल गायो, पले संजोग पले दिन अवसर, जो गोपाल री जायो रहाओ, संते चरण मोर लो माथा, हमरे मस्तक संत

कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर, मन ना रहे बहुविध उमकाई रहाओ। चितवन चितवो प्रिय प्रीत बैराग।

आयो मानस जन्म गुलवाई गर्भ जून छोड़ जो निकसो तौ लागो अनठाही करें बुराई ठगाई दिन रहन नेफल कर्म कमाही कान नाही तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही।

सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कहो नानक तिन जन बलिहारी, जो अल्प रहे मन माही। सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछड़त होत मृतका, गृह में रहन न पाई। रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा।

मन कहां लुभाइए आन कहो, कीत ऊत प्रभु सदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर, यह अदावन पान को, अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहरनी की ध्यान को, बाणी मंत्र महापुरुषन की, मने उतारन मान को, खोज लहो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को, सार मेला पंजवा, मन सदा मंगल गोविंद गाए, रोग सोग तेरे मिटे सगल अग

आए मात पिता पाई नानक को सुखदाता हर प्राण साए। सारंग महला पंजवा हर जन सगल उधारे संके पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे। रहाओ मार्ग चले तिनी सुख पाया जिनसो गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे। जिनके पाग बड़े हैं पाई तिन साधु संग मुख जुरे तिनकी तूर बाँचे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे। सारंग महला पंजवा हर जन राम राम राम के आए एक पलक सुख।

मोहन काय आवो करो जो दरिया, मान करो अभिमान बोलो फूल चूक तेरी प्रक्रिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही परम परम दुख परिया, होए कृपाल गुर लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिलिया, सारंग महला पन्नवा अब क्या सोचो।

सारी नानक पाग परयो हर पाछे राख संत सदकारी सारंग महला पंजवा अब मोहे सर्व उपाव दिरकाते करण कारण समरथ स्वामी हर एक स्ते में।

प्रमतो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सारंग महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर चेका गुर दयाल पय सुखदाई अंदुले मानक देख।

जो अल कमला लो भांगे, गुण निधान मनमोहन लालन सुखदाई सर्वांगे, गुरु नानक प्रभु पाहे पठायो मिलो सखा गल लागे। सार महला पंजवा, अब मोरो ठाकुर शिव मन माना, साद कृपाल दयाल पहे है यो छेदियो दुष्ट बिगाना रहाओ। तुम ही सुंदर तुम्हे सियाने, तुम ही सुगर सुजाना, सगल जोग अज्ञान प्यान, इतने मत ना कीमत।

हर भगत पंडार खजीना साल महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तारे छुटे संगार निमक कृपा ते कोट ब्रह्मंड उदारे रहाओ करे अरदास बहुत बेनंती निमक निमक समारे हो कृपाल दीन दुख पंजन हाथ दे निस्तारे क्या ए पूपत बपरे सही है कहो ए किसनो मारे राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हारे सारंग महला पंजवा अब मोहे तन पायो हर नामा पय अचिंत कृष्ण सब बुझी है यो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दुहे गिरामा गुर कृपाल सौदा ए जोरियो हप करियो लाल अगामा आन बपार बन जो करिये ते दुख सहामा गोविंद भजन के निरपय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरे मन निष्ट लगे प्रे बोला गुर बाँ पकड़ प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर टोला रहाओ।

तिल विख गए मन निर्मल होई है, गुर का दे माया द्रोहं, कहो नानक मैं सो प्रभ पाया, करण कारण समर्थो हं। सारंग महला पंजवा, नैनो देखो चलत तमाशा, सब हो दूर सब हो ते नेरे, अगम अगम कटवासा, रहाओ अपूल ना पूले, लिखो ना चलावे, मता ना करे पचासा, किन में साज संवार बिना है, भगत वचल गुण तासा, अंधकूप में दीपक बलियो, गुर हृदय कियो परगासा, कहो नानक दर्श तेख सुख

हृदा पुनीत हृदय हर बस्यो मस्त पुनीत संत दूरावा सर्व निधान नाम हर हर के जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक को गुर पूरा पेट्यो सुख सहजे अनंत बिहावा सारंग महला पन्नवा त्यायो अंत बार नाम सखा जह मात पिता सुत पाई न पहुँचे कहाँ।

गुर मिल ऐसे प्रभु ते आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताती बाया रहाओ, जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमख न बिसरे करी न बिसरे, सद संगे जत जाया, हौं बल बल बल बल चरण कमल को बल बल गुर दर्शाया, कहो नानक काहू परवाह, जो सुख सागर में पाया, सारंग महला पंजवा, मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा, खुलियो कर्म पयो परगासा, कट कट हर हर गीठा रहाओ, पार ब्रह्म अजोनी संभो, सर्वथान कट गीठा, पयो प्राप्त अमृत नामा।

जाओ। सर्व सिद्ध कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराद खिन में खो भई है गुर मिल हर हर।

न्यायी, जैसे मात पिताए तिस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसरना कब हूँ जाए। कहो नानक मिल संत संगत ते, मगन पए लिवलाई सारंग मैला पंजवा। अपना मीत स्वामी गाये, आसना अवर काहू की कीजे, सुखदाता प्रभु ध्याय रहाओ। सुख मंगल कल्याण जिसे घर, तिस ही शरणी पाये, तिसे त्याग मानुख जे सेवो, तो लाज लोन हो जाये। एक ओट पकरी ठाकुर की, गुर मिल मत बुध पाये, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया, सगल चुकी मोहताये। सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जियो मेरे, दृष्ट ना लिया वो अवर।

नाम औखद मुख दीनो जाए पया गुर पैरे। समन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रे। काठ सिलक जो अपना कीनो नानक सुख कनेरे। सारन महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख विनाशी। पयो कृपाल जी सुखदाता।

तब अरोग जब तुम संग बसतो सुटकत होए रवारे कमन बसेरो दास दासन को थाप्यो थापन हारे नाम न विसरे तब जीवन पाये बिनती नानक हे सारे सारंग महला पंजवा मन के पै पौ दूर पर आयो।

लाडले सहज सहज गुन गायो रहाओ। गुर बचनात समात कृपा से बहुर न कथु धायो। रहत उपाद समाद सुख आसन पगत वचल गृह पायो। नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो। करना आप करावने आपे

अपने पै मान अपने पैताना अपने ही पै अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुर पाए।

देवन हार बिसारे अंदुले जो ससरी उदर भरे बह हाथुले साध बिकार बिकार झूठ रस जै जानो तै वीर बातली कहो नानक समझ रे आने आज काल खुले तेरी गांठली सारंग महला पंजवा गुरजियो संग।

आपे सगले दूत बिदारे ठाकुर अंतर जाम आपे पत राखी सेवक की आपकी ओ बंदान आद जुगाद से

जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान, जन का संग पाई है वड भागी, नानक संतन कह कुर्बान। सारंग महला पंजवा, करो गत दयाल संतो मोरी, तुम समरथ कारण करना, टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिकी तुम तारे, सुमत संग तुम

कहो नानक जिन जगत ठगाना, सो माया हर जन ठागे। सारंग महला पंजवा, अब जन ऊपर को ना पुकारे, पुकारन को

गुरु के बचन जप्यो नाव नानक प्रगट पयो संसार है सारंग महला पंजवा हर जन छोड़िया सगला आप ज्यो जानो त्यो रखो गुसाई पेख जीवा प्रताप रहाओ गुरु उपदेश साध की संगत बिन स्यो सगल संताप मित्र सत्र पेख समत विचार्यो सगल संबाखन जाप तपत बुझी शीतल आघाने सुन अनहद विषम पै विषमाद अनद भया नानक मन साचा पूरन पूरे नाद सारंग महला पंजवा।

हाओ। हर हर हर हर मन आराधे, रसना हर जस गावे, सज अभिमान काम क्रोध निंदा, वासुदेव रंग लावे, दामोदर दयाल आराधो गोविंद।

अन उपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद धारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एक है एकंकार सबते ऊंचे ठाकुर।

आशत फल पाओ सहु नानक लाभ लहा ले चालो सुख से ती कर जाओ सारंग महला पंजवा ठाकुर तुम शरण आई आया उतर गए।

समाए अनद अनद गुण गाया बाँ पकड़ कडली ने अपने गृह अंधकूप से माया कहो नानक गुर बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा हर के नाम की गत ठांडी वेद पुराण सिमरत साधु जन खोजत खोजत काढ़ी रहाओ शिव ग्रंथ अर इंद्र।

तै हरणी मन बांछत चितवत नानक दास तेख जीवा प्रभ चरणी सारंग महला पंजवा सीते हर के नाम बिन साध अमृत रस कीर्तन हर गाय।

सच तन बन जो सच तन संचो कबू न आवो हारे खास खर्चत किछ निखुटत नाही अगनत परे पनारे कहो नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म कह द्वारे सारंग महला पंजवा प्रभ जी मोहे कवन अनाथ बिचारा कवन मूल ते मानव करया।

आवे राम शरण वड पागी, एकस बिन किछ होर न जाने, और उपाव त्यागी रहाओ। मन बच कर्म अरादे हर हर, साध संग सुख पाया, अनद विनोद अकप कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, ताकी उत्तम बाणी, साध संग नानक निस्तरिये, जो राते प्रभ ने

जियो प्राण आधार तेरा, तूने थावे थाओ सास सास संभाल हर हर, नानक सद बल जाओ सारंग महला पंजवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ, मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ, उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी, मया करो भगवान आवत जात दो पख पूरन, पाये सुख विश्राम। सोदत सोदत तत विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक इक राम नाम बिन, अवर सगल विद उरी, सारंग महला पंजवा, साचे सतगुरु दा तारा, दर्शन देख सगल दुख नाते, चरण कमल बलिहार।

गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाये, सगल कटा आधार नानक वाहो वाहो कहो ताको, जाता अंत न पार। सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहो ठाकुर सब थाई, निकट बसे सब ने रह रहाओ। बंधन तोर राम लिवलाई, संत संग बन आई।

आठ पहर गोविंद गुण गावे, जन नानक सद बल जावे। सारंग महला पंजवा, जीवन कौ गनिये हर पेखा, करो कृपा प्रीतम मनमोहन, और परम की रेखा रहाओ। कहत सुनत किछ शांत ना उपजत, बिन विश्वास क्या सेखा। प्रभु त्याग आन जो चाहत, ताके मुख लागे का लेखा। जाके रास सर्व सुख स्वामी, आन ना मानत देखा। नानक दर्श मगन मन मोहयो।

जन्म मरण संकट ते छूटे जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूरन सुख सागर कर कृपा देवो दान सिमर सिमर नानक प्रभु जीवे बिन जाए अभिमान सारंग महला पंजवा तूरत सोई जे

बिखे रस भोग अमृत सुख सागर, राम नाम रस पीवन रहाओ। संचन राम नाम तन रतना, मन तन पीतर सीवन, हर रंग रांग पै मन लाला। राम नाम रस खीवन, ज्यो मीना जल स्यो उर्जानो, राम नाम संग लीवन। नानक संत चात्र।

मन तन राम को व्योहार, प्रेम भगत गुण गावत गी दे, होहत न संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी, एहो साध को आचार, चरण कमल अस्थित हृदय अंतर, पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती, कृपा अपनी धार, नाम निधान उचरो नित रसना, नानक सद बलिहार। सारंग महला पंजवा, हर के नाम हीन मत थोरी, सिमरत नाहीं श्री कर ठाकुर, मिलत अंध दुख कोरी।

सरना है। जप तप संजम कर्म सुख साधन तुलना कछु वैला है। चरण कमल नानक मन भेद्यो चरण संग समाए। सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी। आगे कुशल पाछे खेम सूखा सिमर।

जवां जीवत राम के गुण गाए, करो कृपा गोपाल बीठले बिसरना कभी जाए रहाओ। मन तन तन सब तुमरा स्वामी, आनना दूजी जाए जो तू राखे तिव ही रहना, तुमरा पेने खाए साध संगत के बल बल।

आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ। कोट जन्म प्रमतो बहु भांति थित नहीं कठू पाई पूरा सतगुरु सहज न पे।

सहज अनद अनहद तुनवाणी बौर न पय बिखाद सनकादिक ब्रह्मादिक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमयो मनोहर हर रस जप नानक हर विस्माद सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहुकोट दिन सरह।

पूरन होत न कथो बातें अंत पर तिहार रहाओ। सांत सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार, आप पर का कछ न जाने काम करो दे जार। संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार। चरण कमल

महला पंजवा। पोथी परमेश्वर का थान, साध संग गावे गुण गोविंद, पूरन ब्रह्म ज्ञान रहाओ। साधक सिद्ध सगल मुन लोचे, बिरले लागे ध्यान, जिसे कृपाल हुए।

प्रभु त्याए रतन जन्म अपार जीतियो बहुर जोन ना पाए पय कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग हर चरण रास।

नो दुतिया पाओ सब लूहराओ त्याग गोपाल और जो करना ते बिखिया के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोयो काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हो मैं हूँ राम रंग राते दास नानक मौलियो मन तन जूह सारंग महला पंजवा।

पंजवा हर के नाम की मत सार हर विसार जो आन राचे मिथन सब विस्तार रहाओ साध संगम पज स्वामी पाप होवत खार चरणार

निकट वर्तन सा सदा सुहागन दै दिस साई जानी प्रिय रंग रंग रती नारायण नानक तिस कुर्बानी सारंग महला पंजवा तोए चरण आस

गोविंद गुप्त होए रहो न्यारो, मत अंग मत अहंकार, कर कृपा प्रभु संत राखे, चरण कमल आधार, कर जोर नानक।

सेवक पै दूर करन कलमल दोख जारे, कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते, राम राम सार भूत नानक तत बिचारे, सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी, रहाओ प्रीत लाए हर त्याए गुण गो

कास्यो न्यो लगाई जो दिसे सो सगल विनाशे ज्यो बादर की चाही तज अभिमान शरण संतन गो मुक्त हो है छिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने भी नाही सारंग महला नावा कहा नर अपनो जन्म गवावे।

सहज समाद सदा लिव हर्ष्यों, जीवा हर गुण गाई, गुर के शब्द रता बैरागी, निज कर ताड़ी लाई, सुद रस नाम।

कोट कल्प के दुख विनाशन साथ दृढ़ाए निवेरा रहाओ। क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नौरंगी, अनपौ विसर गए प्रवजाच्या हर निर्माइल संगी। चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी, हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल ले बढ़ पागी। अमृत सिंच भय सुबर सर गुरमत साच निहाला, मन रत नाम रते ने केवल आज जुगा दयाला। मोहन मोय लिया मन मोरा बदे पाग लिव लागी, साच विचार किल विक दुखाते मन निर्मल अनरागी। गैर गंभीर सागर रत्नागर अवर नहीं अन पूजा, शब्द विचार परम पौ पंजन अवर न जानिया दूजा। मनुआ मार निर्मल पद चीनिया हर रस रते अधिकाई, एक बिन मैं अवर न जाना सतगुरु बूझ बुझाई। अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

आवागौन निवार सच राते, साच शब्द मन भाया, सतगुर सेव सदा सुख पाईए, जिन विच्चों आप गवाया, साचे शब्द सहज तुन उपजे, मन साचे लिव लाई, अगम अगोचर नाम निरंजन, गुरमुख मन वसाई, एक समय सब जग तो वरते, विरला एक पछाणे, शब्द मरे ता सब किछ सूजे, अंधन एको जाने, जिसनो नजर करे सोई जन बूझे, होर कहना कठिन न जाई, नानक नाम रते सदा बैरागी, एक शब्द लिवलाई, सारंग महला तीजा, मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नजर करे सोई जन पाए, गुरुमुख विर ले जानी, रहाओ, हर गहर गंभीर गुणी गहीर गुर के शब्द पछानिया बहुविध कर्म करें पाई दूजे बिन शब्द बहुरानिया हर नाम नामे सोई जन निर्मल फिर मैला मू

अनेक रूप रंग ब्रह्मांड अनेक बना अनेक फल मूल आपे सूखम आपे स्थूल अनेक जुगाद दिन अर रात अनेक परलो।

दाता कट कट पूरन है अलपाता कट कट पूरन कर विस्थिरन जल तरंग ज्यों रचन किया हब रस माने भोग कटाने।

ऐसा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थन अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोयो।

नाभि वस्त ब्रह्म अंत न जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिन आप उपाया आपे खेल रचाय उन सब जगत सवाया त्रै गुण आप सिरजियन।

छिए कर कर करता करे करे मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजे लोभाया कूड कपट कमाम दे कूड़ो अलाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख समाया जम दर बद्दे मारिए परमे परमाया मनमुख जन्म गवाया।

मूर्ख अंधिया अंधी सात कह कह कहन कहायन आप महला पहला आखन औखा सुनन औखा आख ना जाती आख एक आख आखे शब्द पाखे अर्ध उर्द दिन रात जे क्यों होए ता क्यों दिसे जाते रूत ना जात सब कारण करता करे कट औकट कट थाप आखन औखा नानका आख ना जापे आख पौड़ी नाई सुनिए मन रहसिए नामे शांति आई नाई सुनिए मन तृप्तिए सब दुख गवाई नाई सुनिए ना उपजे नामे वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरुमुख नाम से आई है नानक लिव लाई श्लोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की पेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिहो वरे है सब थाई झूठ न तरती झूठ न पानी झूठ न पौने माई समानी नानक निगुरे।

नाय मने दुर मत गई मत प्रगति आया नाव मन हो मैं गई सब रोग गवाया नाय मन नाम उपजे सहजे सुख पाया नाय मन सांप उपजे हर मन वसाया नानक नाम रतन है गुरमुखार त्याया श्लोक महला पहला और शरीक होवे कोई तेरा तिस अगे तुद आखा तुद अगे तुद ऐ सलाही मैं अंधे नाउ सुजाता जेता आखन साही सबदी पाख्या पाए सुबाई नानक बहुता एहो आखन सब तेरी वड्याई महला पहला।

सच पवै तुर लेखै पौड़ी। नाम निरंजन अलख है क्यों लखिया जाई, नाम निरंजन नाल है क्यों पाई है भाई, नाम निरंजन वर्त

नक वजे नक वधाया, मां करूप दुखिए सदा काले मोह माया। पलके उठ नित पर दर्द हिरे, हर नाम चुराया, हर जियो तिनकी

ता नानक कहिए मूरत पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सोल है गुर सब दीन लिया। सतगुर के पाने जो चले हर से पीर लिया, जम काल जो न सकई कर चानन बलिया। नानक बख्श मिलायन फिर गर्व न गलिया। श्लोक महला पहला सच वर्त संतोष।

रूप इकना नाद ना वेद ना गी रस रस तस ना जानंत इकना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल।

वस्त पराए आप गर्व करे मूर्ख आन गणाए नानक बिन बूझे किने न पायो फिर आवे जाए महला तीजा मन आनंद भया।

जित था वह सब छुट जाए। कृष्णा मूल न हो गई नाम वसे मन आए। बिन नामे जे होर खाना चित रोग लगे तन खाए। नानक रस सब सलाहना आपके ले मिलाए। महला तीजा जिया अंदर जियो सब।

हर गुरमुख नाम दे आए दुख पुख काणा सब चुकाए सी यूं उठा छे बरलाए सब तरत पाई हरियावली अनजमिया बोहल लाए हर अचिंत बुलावे कृपा कर हर आपे पावे थाए हर किसे त्यावो संत जनों जो अंते ले चलाए हर कीर्त भगत आनंद है सदा सुख वसे मन आए जिना गुरमुख नाम आराध्या तिना दुख दुख ले जाए जन नानक तृप्त है गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए पौड़ी गुर पूरे की दात नित देवे चढ़े सवाइया तुस देवे आप दे।

आप छोड़ शरणाए पवे मन ले रजाए। गुरुमुख जम डंड ना लगे हों मैं विचों जाए। नानक सेवक सोई आखिए जे सत रहे लिवलाए। महला तीजा दात जोत सब

पहला करो बिनो गुर अपने प्रीतम हर बार आन मिलावे सुन तन कोर शीतल मन मोरा लाल वती गुण गावे।

का नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर क्या गया, जब को तप ही आया, दिष्टा कीत पे उतही ते, उतही मन समाया, अधिक स्वाद रोग अधिकाए।

न जाए क्या कर आंख बखानिए माए रहाओ ऊपर बर समान पे आल क्यों कर कहीं दो विचार बिन जेवा जो जपह आए कोई जाने कैसा ना हो कथनी बदनी रहे निवरात सो बूझे हो जिस बात अंतर है निवरात।

मानसता तल तप में साथे सास दे पाया तल पाए ताके पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूट से साचे नाए मलार महला पहला दुख महुरा मारन हरना।

जिस ते हुआ तिसे समाना, चूक गया पासारा मलार महला तीजा। जिन्नी हुकम पछाणिया से मेले हो मैं सबद जलाए, सच्ची भगत करे दिन राती सच रहे लिवलाए। सदा सच हर वेख दे गुर कै सबद सुभाए, मन रे हुकम मन सुख होए प्रभ पाना अपना भावदा। जिस बच्चे तिस बिघन न कोए रहाओ, त्रै गुण सबा तात है ना हर भगत न भाए। गत मुक्त कदे न हो वही हो मैं कर्म कमाए, साहिब पावे सोथी है पये किरत फिराए। सतगुरु पेटिए मन मर रहे हर नाम वसे मन।

मेरा हर पद अगम अगोचर है। कीमत कह न जाए गुरु प्रसादी बुझिए सब जयकार कमाए। नानक नाम सलाए तू हर हर दर शोभा पाए।

रे एक गुरुमुख आप मिलाया बक्षे पलक पंडार तू आपे सब किस जानदा किस आज्ञा करी पुकार हर हर नाम अमृत है नगरी पाया जाए हम दिन हर हर उचरे गुर के सह सुवाए नानक नाम निधान है नामे ही चितलाए मल्हार महल आती जाए गुरसावाही सदा सुख दाता।

एक तो एक बसे मन स्वामी, दूजा और न कोई, एक को नाम अमृत है मीठा, जग निर्मल सब सोई, नानक नाम प्रभु ते पाया, जिनको तुर लिखिया होई, मलार महला तीजा, गण गंधर्व नामी सब उदरे, गुरु का शब्द विचार, हूँ मैं मार सब मन वसाया, हर राख्या उधार, जिसे बुझाए सोई बुझे।

मैं अंदिन सदा पछताए मर मर जन मैं कदे न बूझे विस्ता मैं समाए गुरमुख नाम रते सेव दुरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम त्याया।

एक बिन मैं और ना जाना सतगुरु दिया बुझाई मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता गुर के शब्द हर

इहो हुकुम कर श्रेष्ठ उपाय। गुर प्रसादी बूजो भाई, सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो तिहा गुणा की पंड उतारे, अन दिन एको नाम।

हौ जीवा सदा हर के गुण गाई। गुर का शब्द महारस मीठा, हर के नाम मुक्त गत पाई रहाओ। माया मोह अज्ञान।

पूरे लालच ना लपताई, जो कुछ हो वह सह सुहाए, हर रस पीवे रसन रसाए, कोट मदे किसें बुझाई, आपे बख्शे देव दयाई, जो तुर मिलिया सो विछड़ ना जाई, नानक हर हर नाम समाई, मलार महला तीजा, रसना नाम सब कोई कह, सतगुरु सेवे का नाम लह, बंधन तोड़े मुक्त कर वह, गुर सबदी अस्थिर कर गह, मेरे मन काहे रोष करी जय, लाहा कल गुराम नाम है गुरमत।

नानक गुरमुख विरला कोई। राग मल्हार मैला चौथा कर पहला चौपदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद अंदिन हर हर त्यायो हृदय मत गुरमत दुख विसारी। सब आशा मनसा बंधन टूटे हर हर प्रभ कृपा धारी। नैनी हर हर लागी तारी सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो। जन हर पेट्यो बनवारी रहाओ जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर तिस्ते कुल लागी गारी। हर तिस्ते कुल प्रसूत ना करियो तिस विधवा कर मैं तारी। हर हर आन मिलावो गुर साधु जिस एनस हर उधारी। गुर दीखे गुर का सुख बिगसे ज्यो बारक देख मैं तारी। तम फिर का एक ही संगवासा विच हो मैं तीर्थ करारी। गुरपूरे हो मैं तीर्थ तोरी जन नानक मिले बनवारी। मल्हार महला चौथा गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करें उद्दम तूर साधु की ताई। किल विच मैल परे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई। तीरथ असठ मज्जन नाई सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई। रहाओ जहर नवी तपे पागी रथियाणी केदार था प्यो महसारी। काशी कृष्ण चरावत गाऊ मिल हर जन शोभा पाई। जितने तीरथ देवी थापे सब कितने लोचे तूर साधु की ताई। हर का संत मिले गुरु।

दू तूर दे हर पार लंघाई मल्हार महला चौथा किस जन को हर मीठ लगाना जिस हर हर कृपा करे उसकी पूख दुख सब उतरे जो हर गुण हर उचरे जप मन हर हर हर निस्तरे गुर के बचने करण सुन ध्यावे अव सागर पार करे रहाओ किस जन के हम हाथ बिहाजे जिस हर हर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाए सब दुर्मत मेल हरे हर जन को हर पूख लगानी जन तृप्त जा हर गुण बिचरे हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरे जिन ए प्रीत लाई सो जाने तो जाने जिस मन धरे जन नानक हर देख सुख पावे सब तन की पूख करे।

हर गन हर कार लावे, सतगुर हर हर नाम दिलावे। हर बोलो गुर के सुख मेरे भाई, हर पौजल जगत करावे रहाओ। जो गुर को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभु भावे। हर की सेवा सतगुर पूजो, कर कृपा आप करावे। कर्म पूले अज्ञानी अंधुले, कम कम फूल पुरावे। निर्जीव पूजे मरा सुरेवे, सब दृष्टि काल गवावे। ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कहिए, हर हर कथा सुनावे। उस गुर को छादन पूजन पाठ, पतंबर बहु विदे सत कर मुख संचो। किस पुन की फिर कोट ना आवे, सतगुर देव प्रतक हर मुहूर्त। जो अमृत वचन सुनावे, नानक पाग

देखे मेरा मन बिकसै हौकिन कै सद बल जात ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिनकी तृष्णा पूछ सब उतरी जो गुरमत राम रस्थांत रहाओ हर के दास साग सखा।

इतनानी हर हृदय के कपटी नरमित कपट कमाक तिनको क्या कोई देख वाले ओ आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आते जन्म आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत करी त्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अंग दिन अंग भया।

तिन संगत हर मेलो करमया, तिनका दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया। जो अनदिन हृदय नाम ध्यावे, सब जन तिना का सफल भया। वे आप करे सुष्ट सब तारी, सब कुल भी पार पया। तुद आपे आप उपाया सब जग।

गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, तृष्णा भूख न जाए, मन मुख मूल जलत अहंकारी, हों मैं विच दुख पाए, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताए, जिस ते उपजे तिसे न चेते, त्रिग जीवन त्रिग खाए, प्राणी गुरमुख नाम दे आए, हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर नाम समाई रहाओ, मन मुख जन्म भया है बिरथा, आवत जात ल जाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हों मैं विच जल जाए, तिन सिद्ध न बुद्ध भई मत मदन, लोभ लह दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम तकरे दिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सह सुभाई, नाम निधान वस्या घट अंतर।

निरसाद संगत हर तोर रहाओ, हर तन बनजो हर तन संचो, जिस लागत है नहीं चोर। पात्रक मोर बोलत दिन राती, सुन कन हर की कोर। जो बोलत है मृगमीन पंखेरु, सो बिन हर जापत है नहीं होर। नानक जन हर कीरत गाई, छूट गयो जम का सब सोर। मलार महला चौथा, राम राम बोल बोल खोजते बड़ भागी। हर का पंथ को बतावे, हौंता कह पाए लागी रहाओ। हर हमारो मीत सखाई, हम हर स्यों प्रीत लागी। हर हम गावे हर हम बोले, और दुतिया प्रीत हम त्यागी। मन मोहन मोरो प्रीतम राम, हर परमानंद बैरागी। हर देखे जीवत है नानक, एक निमक पलो मुख लागी। राग मल्हार महला पंजवा, चौक दे कर पहला एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद, क्या तू सोचे क्या तू चितवे, क्या तू करे उपाय, ताको कहो।

खीर आधार बार्क जब होता बिन खीर रह न जाई साल समाल माता मुख नीर तब हो तृप्त अघाई हम बार्क पिता प्रभदाता फूले बार्क अनेक लख बरिया अनठौर नाही जय जाता रहाओ चंचल मत बार्क बपरे की सर्प अग्न कर मेले माता पिता कंठ लाए राखे अनद सहज तब खेले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी इस बारिक भूख कैसी नवनिध नाम निधान गृह तेरे मन बाछे सो लैसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारिक मुख मांगे सो देना नानक बारिक दर्श प्रभ चाहे मोहि हृदय बसे नित चरना मलार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करया सजियो सगल अंदेशा कार्य सगल अरंभियो करका ठाकुर का भरोसा सुनिए बाजे बाज सुहावी और पया मैं प्रेम मुख पेखे गृह मंगल सुहलावी रहाओ मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संता जाए खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो भगत करो निर पाए जब प्रेय आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया मीत साजन मेरे पै सुहेले प्रभु पूरा गुरु मिलाया सखी सहेली पै आनंदा गुरु कार्य हमरे पूरे कहो नानक वर मिलिया सुखदाता छोड़ न जाई दूरे मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोक जठर को परते कृपा निध छोड़ आम को पूजे आत्म का सी हरते हर बिसरते दुख दुख मरते अनेक बार प्रमे बहुजोनी एक न काहू तरते।

में जरते नानक शरण चरण कमलन की, तुम ना डारो प्रभ करते राग मलार महला पंजवा दुख दे कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी हूँ एक खिन तिस बिन रह ना सको, प्रीत हमारी लागी रहाओ उनके संग मोहे।

सीता कृपाल पै बड़ पागी मां सुख पाया बर न पाको रेन नानक जन पागी मल्हार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई सगल सहेली सुख पर सूती जे कर लाल बसाई रहा।

त्रिपुरुष सुखदाई, एक निमस में मेरा सब दुख काटिया, नानक सुख रहन बिहाई। मलार महला पंजवा, बरस मेघ जी तिल बिल ना लाओ, बरस प्यारे मने सदारे, होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ।

कहु नानक मेरो बन्यो सुहागो तत शोभा तले अचारे मल्हार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम ध्याए दुख दर्द बिन सह पव सागर गुर की मूरत हृदय बसाए रहाओ।

कर कृपा किलवित सब काटे, नाम निर्मल मन दिया, गुण निधान नानक मन वसिया, बहुर दुख न थिया, मल्हार महला पंजवा, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रेम भगत अपनो नाम दीजै, दयाल अनुग्रह तारे, रहाओ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम, हृदय तुहारी आशा, संत जना तह करो बिनंती, मन दर्शन की प्यासा, बिछड़त मरण जीवन हर मिलते, जन को दर्शन दीजै, नाम आधार जीवन तन नानक, प्रभु मेरे कृपा की जय, मल्हार महला पंजवा, अब अपने प्रीतम स्यो बने आई, राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ, एक पल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवै निद पाई, उदोत पयो पूरन पावी को, तेते संत सहाई, सुख उपजे दुख सगल विनाशे, पार ब्रह्म लिवलाई, करो संसार कठिन पै सागर, हर नानक चरण ध्याई, मल्हार महला पंजवा, तन हर बरस सगल जग छाया, तय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहाओ, मिटे कलेश त्रिसं सब बूजी, पार ब्रह्मन ध्याया, साध संग जन्म मरण निवारे, बहुर न कतु धाया, मन तन नाम निरंजन रातो, चरण कमल लिवलाया, अंगीकार कियो प्रभ अपने, नानक दास शरणाया, मल्हार महला पंजवा, विचरत क्यों जीवे ओए जीवन, चितें उलास आस मिल

दीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओट जीवे दास तेरे नानक प्रभु शरणाई। मलार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवीजै, दर्श प्यास मेरो मन मोयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ। खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, तार अनग्रो स्वामी मेरे नाम महारस पी जय। त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल को कृपा की जय, कर गह लिहो दास अपने को, नानक अपनों की जय। मलार महला पंजवा, प्रभ को भगत बछल बिरदायो, निंदक मार चरण तल दीने, अपनो जस वरतायो रहा।

कार्कियो मेरे स्वामी, प्रमको मेट सुखायो महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो राग मल्हार महला पंजवा, चौक दे कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद गुरुमुख दीसे ब्रह्म प्रसार, गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार, गुरुमुख नाद वेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार। मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाये, गुर उपदेश हर हृदय वस्यो, सास गिरास अपना खसम त्याय।

गुर पेटे ना हुए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जाको कर्म लिखिया तुर आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर शरणाई, नानक गुर पार ब्रह्म जाकी कीम ना पाई। मल्हार महला पंजवा, गुर के चरण हृदय बसाए, कर कृपा प्रभ आत्म मिलाए, अपने सेवक को लय प्रभ लाए, ताकि कीमत कही न जाए, कर कृपा पूर्ण।

सदा सदा जाइए कुर्बान, काल गवाया करते आप, सदा सदा मन किसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया, मलार महला पंजवा, गुर शरणाई सगल निधान, साची दरगे पाये मान, प्रम को दुख दर्द सब जाए, साध संग सब हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सालाए, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाओ, सत गुर जेवड़ अवर न को

सो मन निर्मल जो गुर संग राची गुरपुरा पाए वडवाग काम क्रोध लोभ मनते त्याग कर कृपा गुर चरण निवास नानक की प्रभु सत अरदास राग मलार मै

प्रीतम थिया मल्हार महला पंजवा मन कने प्रमय बने उमक तरस चाले प्रभ मिलबे की चाह रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे हज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हु गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललित गुण अनक भांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिरतर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मल्हार महला पंजवा गुर प्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफल्यो दर्श पेख्यो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विस्मय विषम भई अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण द्वारे मल्हार महला पंजवा बरस सरस आग्या हो है आनंद सगल पाग रहाओ संत संगे मन पर फड़े मिल मेघ तर सुहाग कन कोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया मल्हार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ कै संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल साध जना कै चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला पंजवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन।

लाए शास्त्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे बिल करे बिल लाई कम हर कोर दसो दिस बरसे बिन जल प्यास न जाई मीन निवास उपजै जल ही ते सुख दुख पूर्व कमाई खिन तिल रह न सके पल जल बिन मरण जीवन तिस ताई तन वाडी तिर देश निवासी सच्चे गुर पै शब्द पठाई।

अपना काश वारो आपे सुखदाते गोसाई गुरु प्रसाद कर ही फिर पाया कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रहे गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनेक जतन कर रहे न पावे आच पाच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सतबार न लागे बवरे हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

अमर अनाथ सर्व सिरमोरा काल विकाल परम पैखंजन कागद कोट इहो जग है बपरो रंगन चेन चतुराई नानी सी बूंद पवन पत खोवे जन्म मरे खिन ताई नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर माही उल्टी नदी कहाँ कर तरवर सरपन डसे दूजा मन माही गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिख्या गुरमत जारी मन तन हेम पै सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाते तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत राखो साच मिले गोपाला बादी तंद अंग नहीं सूजे बदिक कर्म कमावे सतगुर मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण देह साच बिन काची मैं पूछो गुर अपना नानक सो प्रभु प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे सारिंग सबद सुहाई रैन बबीहा बोलियो मेरी माई रमाओ त्रै स्यो प्रीत न उल्टे कबहू जो तै पावे साई नींद गई हो मैं तन फाकी सच मत हृदय समाई।

जुड़कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा ते मगना चालनहार, जित कर वसे तू है बिद जाने भी जो महल न जाते, सतगुर बाजो समझ न होवी, सब जग दबिया छापे, करण तलाव करे बिलला तो बिन गुरु नाम न जापे, पल पंकज में नाम छड़ाए, जे गुर सबक सिंजापे, एक मूरख अंधे मुग्ध गवार, एक सतगुर के पै नाम आधार, साची बाणी मीठी अमृत धार, जिन पीती तिस मोख द्वार, नाम पै पा

मन मेरे हर हर नाम सितलाए, सतगुर ते हर पाए साचा, हर स्यो रह समाए रहाओ। सतगुर ते ज्ञान उपजे ता ए संसा जाए, सतगुर ते हर बुझिए गर्भ जोनी नह पाए।

वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे विचार बिन नावे जम दंड सह मरजन में वारो वार सतगुर पेटे मुक्त होए पाए मोख द्वार मन रे सतगुर सेव समाए वड्डे भाग गुर पूरा पाया हर हर नाम ते आए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाई हर आपे दे आधार हर अपने भाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर कै पाने

हर सिउ रहा समाए मल्हार महल आती जा अष्टपदी कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हर हर कृपा करे गुर की कारे लाए दुख पल्लर हर नाम बसाए साची गत साचे चित लाए गुर की बाणी शब्द सुनाए मन मेरे हर हर सेव निधान गुर कृपा ते हर तन पाई है।

नानक साचे साच समाए राग मल्हार छंत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते एक निमक मनो ना विसरै। गोपाल गुण निद सदा संगे सर्व गुण जगदीसरै। मन मोह लीना चरण संगे नाम रस जन माते। नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महापतित तुम पारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्स प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है पिन आन ना जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मान।

बिनवंत नानक शरण तिनके, जिन्नी हर हर ध्याया वार मलार की महला पहला, राणे कैलाश तथा मौल दे की तुन इको ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा, गुर मिले मन रहस्य ज्यो उठे तरण सिगार, शब्द से हरियावली सर परे सदर ताल, अंदर रचे सच रंग ज्यो मंजी ठे लाल, कमल विग से सच मन गुर के शब्द निहाल।

काल खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवई जिचर शब्द

गुरु नानक का सब सुख साचो नाम पौड़ी। आपी ने आप साज आप पछाणिया, अंबर तरत बिछोड़ चंदो आताणिया, गिण थम्मा गगन रहाए सब निशाणिया, सूरज चंद उपाए जोत समाणिया, किए रात दिनंत चोज विलाणिया, तीरथ तरम विचार नावन कुर्बाणिया, तुझ सर अवर न कोए के आख वखाणिया, सच्चे तख्त निवास होर आवन जाणिया। श्लोक महला पहला। नानक सावन जे वसै चहो उमाहा होए, नागा मिर्गा मच्छियां रसियां कर तन होए। महला पहला। नानक सावन जे वसै चहो विछोड़ा होए, गाई पुत्ता निर्धना पंथी चाकर होए। पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया, बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया, ब्रह्म बड़ा कहाए अंत न पाया, ना किस बाप न माए किंतु जाया, ना किस रूप न रेख वर्ण सबाया, ना किस पुख प्यास रज्जा ताया, गुर में आप समोए शब्द वरताया, सच्चे ही पते आए सच समाया। श्लोक महला पहला। वैद बुलाया वैदगी पकड़ टंडोले बाहा, होला वैद न जाने।

दारू लोड लहो जित वन्ये रोगा कान जित दारू रोग उठिए तन सुख वसे आए रोग गवाए आपना का नानक वैद सदाए पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सवाया ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तंग दै लाए आप छपाया।

आप पैर मारे आप आपकार जचिया सबना खसम एक है गुरुमुख जानिए हुक्मी लिखे सिर लेख विन कलम मसवानिए सत संगत में लाप जिथे हर गुण स्वभाव खानी है नानक सच्चा शब्द साला है सच पछानी है श्लोक महला तीजा ऊनव ऊनव आया अवर करेंदा वन क्या जाना तिस सास्यों केव रहसी रंग रंग रहा तिन कामणी जिन मन पाओ पाओ होए नानक पै पाए बाहरी तिन तन सुख न होए महला तीजा ऊनव ऊनव आया वरसे नीर निपंग नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंते स्यों मन पंग पौड़ी दोवे तरफा उपाय इक वर्त्या वेद बाणी वर्ताए अंदर वाद कत्या परविरत निर्विरत हाठा दोवे विच तरं फिरे रह बारिया मन मुख कच्चे कूड़ियार तिन्नी ने चौदर गै हारिया गुरमति शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया से भगत तुद

नजर करे नानक नजरी बाहरी सब करण पलाह करे पौड़ी सो हर सदा सरे भी है जिस तर्क न लागे वार आदाने आकाश।

गुरमुख पक्षों लेखा निबड़े बक्षे सिर पंडार ओथे हाथ ना पड़े फूक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुरु बेली होवे कर ले अंती वार एना जनता नो हो सेवा नहीं सतगुरु सिर करतार। श्लोक महला तीजा बाबी हा जिसनो तू पुकार दा तिसनो लोचे सब कोए अपनी कृपा करके वससी मन तिन हरिया होए गुर प्रसादी पाईए विरला बूझे कोए बैंदिया उठदिया नित बिहाईए सदा सदा सुख होए नानक अमृत सद ही।

लाए जो जल में कमल अलिप्त है, ऐसी बंत बनाए से सुखिए सदा सोने, जिन विचों आप गवाए तिन सोग विजोग करे नहीं, जो हर के अंक समाए श्लोक महल आती जा नानक सोसा।

नानक तिनका आखिया आप सुने, जे लयन पन्ने पाए महला तीजा, अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार, गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उधार, हर अमृत पीवे सवा रंग राते होमे तृष्णा मार, अमृत हर का नाम है वरसे कृपा धार, नानक गुरमुख नगरी आया हर आत्म राम मुरार।

विचारी है गुण में रह समाए अपना आप आप तोलसी आपे मिले मिलाए जिसकी कीमत ना पवे कहना किछु न जाए हौ बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझ दिती बुझाए जगत मुसे अमृत लुटी है मन मुख बूझ न पाए विन नामे नाल न चलसी जासी जन्म गवाए गुरमति जागे तिन्नी कर रखिया दूता का किस न वसाए श्लोक महला तीजा बाबी हा ना बिललाए ना तरसाए इहो मन खसम का हुक्म मन नानक हुक्म मने तिख उतरे चले चवगल वन महला तीजा बाबी हा जल में तेरा वास है जल ही माए फिरा है जल की सार न जान ही का तू कूकन पाहे जल फल चहो दिस वर्षदा खाली को ठाव ना है एते जल वर्ष दे तिख मरे पाग तिना के ना है नानक गुरमुख तिन सोजी पई जिन वस्या मन माहे पौड़ी नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत न पाया गुरमुख नाम के आए तुझे समाया जुग शक्ति गुबार तिस ही पाया जला बिंब असराल तिने वर्ताया नील अनील अगम सरजीत सवाया अगन उपाई वाद पुख तिहाया दुनिया के सिर काल दूजा भाया रखे रखन हार जिन सबद बुझाया श्लोक महला तीजा इहो जल सब कै वरसवा वर्षे पाए सुवाए से बिरखा हरि आवली।

समाए नानक जिन को नजर करे ता इहो तन पल्ले पाए पौड़ी आप कराए करे आप हों कैसो करी पुकार आपे लेखा मंगसी आप कराए कार जो तिस पावे सोती है हुकम करे गावार आप छदाए छुट्टी है आपे बक्षण हार आपे वेखे सुने आप सब सहदे आधार सब में एक वर्तदा सिर सिर करे विचार गुरमुख आप विचारी है लगे सच प्यार नानक किसनो आखी है आपे देवन हार श्लोक महला तीजा बाबी हां इहो जगत है मत को परम पुलाए इहो बाबी हां पशु है इसनो बूजन नाहे अमृत हर का नाम है जित पीते तिख जाए नानक गुरमुख जिन पिया तिन बहुर न लागे।

प्रसादी को विरला बूझे, सो जन मुक्त सदा होए। पौड़ी सच्चा वे परवाह इको तू धनी, तू सब किस आपे आप दूजे किस गणी। मानस पूरा गर्भ सच्ची तुदमणी, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी। सतगुर सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी। मन मुख मोह गुबार ज्यो पुल्ला मंजवाणी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जाने, महल देख अरदास पाए। अपने पाने बहुता बोले, बोलिया खाए न पाए। खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए। बाबी हा क्या बपुड़ा, जग तै की तिख जाए। महला तीजा, बाबी हा किन्नी रहन बोलिया, सहजे सच सुभाए। यो जल मेरा जियो है, जल बिन रहन न जाए। गुर शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए। नानक जिस बिन चसा न जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए। पौड़ी खंड पताल असंख।

संत भाइयां दूजे पट खोई, एक दाते एक मंगते सगना सिर सोई, विणना में बाजारिया पिहावल होई, कूड़ खुट्टे नानका सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा, बाबी हा गुणवंती महल पाया, और गुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसे, गुरमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नदर निहाल, नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु के काल। महला तीजा, बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान, जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान, नानक गुरमुख बस ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी।

अवगण यार जिस बक्से सो पाए सी गुर सबदी विचार। श्लोक महला पंजवा रात न बिहावी सापता जिना विसरै नाओ राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा रतन जवे हर मान का हबे मणि मखन नानक जो प्रभु पाया सत्य दर सोहन पौड़ी सच्चा सतगुरु सेव सच समालिया अंत खलोआ आए जे सतगुरु अग्गे कालिया कोई न सके जमताल सच्चा रखवालिया गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया मन मुख बिन नावे कूड़ियार फिरे बेतालिया पशु मानस चंप लेते अंदरों कालिया सबो वरते सच सच्चे सबर निहालिया नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा बाबी है हुक्म पछाणिया।

गुड़ी छह बदलाए। बाबी है कूक पुकार रह गई, सुख वस्या मन आए। नानक सो साल आई है, ये दिन दा सबना जिया। रिजक समाए महला तीजा, चात्रिक तू ना जानही, क्या तुद विच तिखा है, कित पीते तिख जाए। दूजे पाए परम्या, अमृत जल पल्ले ना पाए। नदर करे जे अपनी, ता सतगुर मिले सुभाए। नानक सतगुर ते अमृत जल पाया, सहजे रहा समाए पौड़ी। एक वन खंड बैसे जाए सदना दे रही, एक पाला चक्कर पान शीतल जल हे वही। एक पसम चढ़ा में अंग मैलना तो वही। एक जटा बिकट विकराल कुल कर खो वही। एक नगन फिरे दिन रात नींद ना सो वही। एक अग्न जला में अंग आप विगो वही। गिणना में तन चार क्या कह रो वही। सोहन खत्म द्वार जे सतगुरु से वही। श्लोक महला तीजा, बाबी हा अमृत वेले बोलिया, तांदर सुनी पुकार। मेगैनो फुरमान होआ, वर्षो कृपा कार। हो तिन कै बलिहार ने, जिन्नी सच रखिया उधार। नानक नामे सब हरियावली, गुर कै शब्द विचार। महला तीजा, बाबी हा इव तेरी तिखा न उतरे, जे सो करे पुकार। नदरी सतगुरु पाईए, नदरी उपजे प्यार। नानक साहिब मन वसै, विच्चों जाए विकार पौड़ी।

दिन रात शब्द ना पाया, तीन जात ना पक्ष ना कर्म जन्म गवाया, मन झूठे वे जात झूठा खाया, बिन शब्द आ

गुरमुख शब्द संभालिए, सच्चे के गुण गाओ, नानक नाम रते जन निर्मले, सहजे सच समाओ पौड़ी, पूरा सतगुर सेव पूरा पाया, पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया, पूरे ज्ञान ध्यान मैल चुकाया, हर हर तीर्थ जान मनुआनाया, शब्द मरे मन मार तन जने दी माया, दर सच्चे सच्चार सच्चा आया, पूछ ना सके कोई जाखस ने भाया, नानक सच सलाहे लिखिया पाया, श्लोक महला पहला, कुल्हा देन दे बावले, लेन दे वडे निलज, चूहा थड ना मावई, तिकल बन्ने छज, देन दुआई से मरे, जिनको देन से जाहे, नानक हुक्म न जा कई, किथे जाए समाहे,

के ते मंग मंग जाहे। महला पहला, सौ मन हस्ती क्यों गुड़ खावे, पंज सै दाना खाए। डके फूके खेह उड़ावे, साहे गया पछताए। अंधी फूक मोई देवानी, खसम मिटी फिर भानी। अद गुल्ला चिड़ी का चुगन, गैन चढ़ी बिल लाए। खसमे पावे ओहा चंगी, जे करे खुदाए खुदाए। सत्ता शिव मारे सह मिर्या, सब पिछे पे खाए। होए सताना पुरे न मावे, साहे गया पछताए। अंधा किसनो बुक सुनावे, खसमे मूल न भावे। अक्षों प्रीत करे अक्टा, अकडाली बैठाए। खसमे पावे ओहो चंगा, जे करे खुदा।

गुर का शब्द सलाही है अंतर प्रेम प्यार बिन प्रीति पगत में हो गई बिन सतगुरु ना लग गए प्यार तू प्रभ सब तुझ सेव दे एक ताड़ी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार श्लोक महला पहला राति काल कटे दिन काल छिजे काया होए पराल वर्तन वर्त्या सर्व जंजाल पुलिया चुक गया तपताल अंधा चक चक

सुख पाया अंधा अंध कमाई बिख्या कदे ही रजे नाही मूरख पुख न जाई दूजे सबको लग विगुता बिन सतगुर बूझ न पाई सतगुर सेवे सो सुख पाए जिसनो कृपा करे रजाई। श्लोक महला पहला सरम करम दोए नानका जे तन पल्ले पाए सो तन मित्र न कांडी है जित सिर चोटा खाए जिनके पल्ले तन वसे तिनका नाव फकीर जिनके हृदय तू वसे ते नर गुणी गहीर। महला पहला दुखी दुनी सहेड़ी है जाए तन लगे।

गया जानिए, कौजल तारण हार शब्द पछानिए, चोर जार जुआर पीड़े खानिए, निंदक लाए तबार मिले हरवानिए, गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा, नाव फकीर है पातशाह हो मूर्ख पंडित नाओ, अंधे का नाव पारखू एवं करे गुआओ, किल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला, हरना बाजा चै सिकदारा एना पर्याना।

रास आप छुटे न छूटी है नानक बतन दिनास महला पहला मास मास पर मूर्ख चगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने कौन मास कौन साग कहावे किसमें पाप समाने गेंदा मार होम जग किए देवतिया की बाने मास छोड़ बैस नक पकड़े राती मांस खाने फर कर लोकानो दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे नानक अंदेशों क्या कही है कह ना कहे बूझे अंधा सोए जे अंग कमावे तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त निपन्ने मच्छी मांस ना खाही।

तू है मन भाया पाल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाना कन चरिया नथसी सत गुर बोत बेर सच्चा रखसी अगन पखे परहाड़ अंदिन पक्षी फासा चुगे चोग हुक्मी छुटसी करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला कर

रविया सब ठाई जित तू लाहे सचिया तित को लगे नानक गुण गाए सुध राग मलार बाणी।

रहाओ। सुरसरी सलल कृत बारुणी रे संत जन तर्क नहीं पानन। सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनन। तर तार अपवित्र तरमानी रे जैसे कागरा करत विचारंग। भगत भगौत लिखिए तेह ऊपरे पूजिए कर नमस्कार। मेरी जात कुट बांदला टोल टोवंता नितै बनारसी आस पासा। अब बिक्र प्रधान ते करें।

कहो रविदास पयो जग लेखो, जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। राग का नड़ा चौक दे महल।

मेरे मन राम नाम जपियो गुरवाक, हर हर कृपा करी जगदीशर, दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक राव, नाना रूप रंग हर केरे, कट कट राम रवे।

गुण गावे गुरमत हो बल बले हो बल बले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी की चै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस राव हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे जप जापो जगदीश तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिनको हो कुमकुमे कुमकुम जीस हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे सो करे जे तुद पावीस जन नानक अमृत पिया गुरमती तन तन तन तन तन गुरु साबीस कानड़ा महला चौथा पज रामो मन राम जिस रूप ना रेख वडाम सब संगत मिल पज राम बड हो भाग मथाम रहाओ जित गृह मंदर हर होत जास तित तर अनदो अनद पज राम राम राम राम नाम गुण गावो हर प्रीतम उपदेश गुरु गुर सतगुरा सुख होत हर हरे हर हरे हरे तज राम राम राम सब शिष्ट तार हर तुम

महला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पज हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म किरिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाइए हर ब्रह्म जोग हर पाइए सत्संगति उपदेश गुरु संत जना खोल खोल कपाट तू

दो, हर हर अगम अगा दो, मत गुरमत हर प्रबला दो, सुर हो लिखे लीला दो रहाओ, बिख माया संत बहुचित है विकार, सुख पाइए हर पज संत संत संगति, मिल सतगुरु गुर साधो, ज्यो छोए पारस मनहूर भय कंचन, त्यो पतित जन मिल संगति, सुध होवत गुरमति सुधा दो, ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता, त्यो पापी संग तरे साध साध संगति, गुर सतगुरु गुर साधो, चार वर्ण चार

सुख पावे जप हर हर नाम निधान। उस्तत करें प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुरु सतगुरु भगवान। जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान। कानड़ा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। गाये गुण गोपाल कृपा निद दुख विदारण सुखदाते सतगुर जा को पेटत होए।

जाको सतगुर अपना राखे, सो जन हर रस रसना चाखे, कहो नानक गुर कीनी माया, हालत पलत मुख उजल भया, कानड़ा महला पंजवा, आराधो तुझे स्वामी अपने, उठत बैठत सोवत जागत, सास सास सास हर जपने।

कल युग में पाया जिन नाओ, कानड़ा महला पंजवा, कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना, अनेक बार कर बंदन संतन, हुआ चरण गोविंद जी के बसना, रहाओ अनेक पाप कर द्वार न पावो, होए कृपाल ता हर हर ध्यावो, कोट कर्म कर दे न सोदा, साध संगत में मन पर बोदा, कृष्ण ना बूजी बहुरंग माया, नाम लेत सर्व सुख पाया, पार ब्रह्म जब पै दयाल, सहु नानक कौ छू।

अनेक स्वांग का छे पेट तारी, जैसो सा तैसो दृष्टारी, कहन कहावन सगल जंजार, नानक दास सच करनी सार। कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हर जत सुनत उमायो।

तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय ले धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा पौ जल तरना, अबे दान नाम हर पायो, सिर डारियो नानक संत चरना। कानड़ा महला पन्यवा, साध सरन चरण चित लाया।

सुख पाया तृष्णा सब बुझी है, सांस पाई गुण गाया बिन बूझे पशु की न्याई, प्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी, नानक सहज समाया कानड़ा महला पंजवा, हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत, सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आस होत पूरा।

पंजवा साध संगत निध हर को नाम संग सहाई जी कै काम रहाओ। संत रेन नित मज्जन करे जन्म जन्म के किल विकारे संत जना की ऊंची बानी सिमर सिमर तरे नानक प्राणी। कानड़ा महला पंजवा साधु हर हरे गुण गाए मन तन तन प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाए रहाओ। ईत ऊत कहाँ लोबावे एक स्यो मन लाए महा पवित्र संत आसन मिल संग गोविंद ध्याए सगल त्याग शरण आयो नानक लेहो मिला।

सहज मूरत सिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मित कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नासे रिद पयंत सांत अमृता रस पी।

उदरे हर सिमरत नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निज पतित उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो कानड़ा महला पंजवा तन ओ प्रीत चरण।

सुख पाए आए मिले पूरन बड़पागी रहाओ। मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी। कोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी। तू अथाओ अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रतनागी। नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रभ पागी। कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर कप

नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है रहाओ। कवन कवन कवन गुण कहिए।

ऊंच नीच सब एक समानो मुख बकनो मन मान रहाओ। काट काट पूर रहे सुख सागर पै पंजन मेरे प्राण। मने प्रगास पयो प्रमनास्यो मंत्र दियो बुरकान। करत रहे कर्तज्ञ करुणा में अंतर जामी ज्ञान। आठ पहर नानक जस गावे मांगन को हरदान। कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन को कई केत। ऐसो जन बिरलो है।

कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भये ते संगे, मोनी मोहे रही।

फिर तो फिरत नानक दास आयो संतन ही शरणाए काटे अज्ञान परम मोह माया लियो कंठ लगाए कानड़ा महला पंजवा आनंद रंग विनोद हमारे नामो गावन नाम त्यावन नाम हमारे प्राण आधार है रहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना हर नाम हमारे कार्य सवारे हर नामो शोभा नाम बढ़ाई पौजल विषम नाम हर तारे अगम पदार्थ लाल अमोला पयो प्राप्त गुर चरनारे कहो नानक प्रभु पै कृपाला मगन पय ही रे दरसारे कानड़ा महला पंजवा साजन मीत स्वामी नेरो देखत सुनत सबन कै संगे होरे काज बुरु कै फेरो रहाओ नाम बिना जे तो लपतायो कछु नहीं नाही कतेरो आगे दृष्ट आवत सब प्रगट इहा मोयो परम अंधेरो अटक्यो सुत बनता संग माया देवन हार दतार बिसेरो।

उषा ठाकुर शरण तुम्हारी आयो रहाओ। जन्म जन्म के महापराशत दर्शन पेट मिटायो, पयो परगास अनद उजियारा सह समाज समायो। कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो, कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक ले लायो। कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जपती।

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाये, साध जना मिल हर जस गाया।

हा पूजा जे हर पावास माटी की ए पुत्री जोरी क्या ए कर्म कमास प्रभ बाँ पकड़ जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट में कोई न सूजे इक हर की ओट में आस क्या दीन करे अरदास जो सब कट प्रभु ने।

जगत उदाहरण नाम पै तेरै, नवनिध नाम निदान हर केरै, हर रंग रंग रंग अनुपेरै, काहे रे मन मोहे मगनेरै, नैनो देख साध दर तेरै, सो पावे जिस लिखत लिले रे, रहाओ सेवो साध संत चरने रे, बाँचो तूर पवित्र करे रे, असत मज्जन मैल कटे रे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किस संग न चाल।

बरना साकू एक फुलेरे दर्शन प्यास बहुत मन मेरे मिल नानक देव जगत गुर के रे। कानड़ा महला पंजवा ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाओ आस प्यास सफल मूरत।

मान मोह त्याग छोड़ो तौ नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बरत नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्र कर्म तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अत रहत बिटंगा हौ रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक।

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकार राव जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सो जन उदरे जिसे उदारो आप बिनस जाए।

मन मोही पंच दोही उर्ज निकट बत्यो ताकि शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ। कोट जन्म जोन प्रम्यो हार पर्यो द्वार कृपा गोविंद पई मिल्यो नाम आधार दुर्लभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार। कानड़ा महला पंजवा कर यारवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सहज सुभाए आपने आए कछु ना जानो कछु दिखाए प्रभ मिल्यो सुख बाले पोले रहाओ। संजोग मिलाए साध संगाए कथु ना जाए करें बसाए गुण निधान प्रगट्यो ए चोले चरण लुभाए आन सजाए थान सनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोले। कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमित रूप अगम अगोचर रहो सर्व समाई रहाओ। कहन पवन नाही पायो पायो अनक उकत चतुराई जतन जतन अनक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निद जन नानक संतरे नाई। कानड़ा महला पन्नवा माई सिमरत राम राम राम।

रंग मृत मृत निकट निकट सदा है। हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड, बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई। कानड़ा अष्टपदिया

मन गुरमत नाम समावे गो, नाम सुने नामो मन भावे, नामे ही तृप्तावे गो। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पात बनावे गो। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गो। माया पटल पटल है भारी, कर कूमन केर कुलावे गो। पाप विकार मनूर सब भारे, विकदुत्तर करे।

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञान लाए जगावे गो, नानक पाने अपने ज्यो पावे तिवें चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो, जो जो जपे सोई गत पावे, ज्यो त्रू प्रहलाद समावे गो। रहाओ।

मिल सतगुरु नाम सियावै गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मल लह जावै गो। ज्यों लोहा तरयो संग कास्त लग, शब्द गुरु हर पावै गो। संगत संत मिलो सत्संगत, मिल संगत हर रस आवै गो। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावै गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर रस मीठ लगावै गो। खिन खिन नाम दे वडियाई, सतगुरु उपदेश समावै गो। भगत जना को सदा निव रही है, जन निवै ता फल गुण पावै गो। जो निंदा दुष्ट करे भगता की, हर नाखस ज्यो पत जावै गो। ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा, तप तापन पूज करावै गो। जो जो भगत होए सो पूजो, परमन परम चुकावै गो। जात न जात देख मत परमो, सुख जनक पगी।

मन गुरमत चाल चलावे गो, ज्यो मैगल मस्त दी जय तल कुंडे, गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो रहाओ। चल तो चले चले दह दह दिस, गुर राखे हर लिवलावे गो, सतगुर शब्द दे रिद अंतर, मुख अमृत नाम चुआवे गो। बिसियर बिसु परे है पूरन, गुर गरुड़ शब्द मुख पावे गो, माया पुयंग तिस नीड नावे, दिख चार चार लिवलावे गो। स्वान लोभ नगर में सबला, गुरखिन में मार कडावे गो, सत संतोख धर्म आन राखे, हर नगरी

सतगुर महापुरुष है पारस, जो लागे सो फल पावै गो। ज्यो गुर उपदेश तरे प्रहलादा, गुर सेवक पैज रखावै गो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुर बचनी अमृत पावै गो। ज्यो अमरीक अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन ते आवै गो। सतगुर सरन सरन मन पाई, सुदा सुदा कर त्यावै गो। दयाल दीन पए है सतगुर, हर मार्ग पंथ दिखावै गो। सतगुर सरन

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दरगे मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचय नाम दियावे गो हर हर रूप हर रूप होवे हर जन को पूज करावे गो साकत नार सतगुरु नहीं किया ते बेमुख हर परमावे गो लोभ लहर स्वान की संगत दिख माया करंग लगावे गो राम नाम सब जग का तारक लग संगत नाम त्यावे गो नानक राख राख प्रभ मेरे सत संगत राख समावे गो छक्का पहला।

रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए सतसंग पाये हर त्याये, बहुर दुख ना लागे। कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन पूर बांचे, हर दर सहज समायन। सगले जंत पजो गोपाले, जप तप संजम पूरन घाले, नित पजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सवाया, गोविंद गाये नित ध्याये, परवान सोई आया। जप ताप संजम हर हर निरंजन, गोविंद तन संग चाले, बिनवंत नानक कर दया दीजे, हर रतन बांधो पाले। मंगल चार चोज आनंदा, कर कृपा मिले परम।

गोविंद गोविंद गुरमत ध्याये सादर गए पाये मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान। नानक गुरु गोविंद हर जित मिल हर पाया ना।

सतसंगत सतगुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर गुण बुलोगिया सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लोगिया। श्लोक महला चौथा। हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोय हौमे ममता नाप होए दुर्मत कड्डे धोए नानक अमदिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा। हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए हर आपे आप वरतदा हर जेवड अवरना कोए जो हर प्रभ पावे सो थिए जो हर प्रभ करे सो होए कीमत किने न पाया बेअंत प्रभु हर सोए नानक गुरमुख हर सा लाहिया तन मन शीतल होए पौड़ी।

तू कट कट हर रंग रंगना सब त्यावे तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाते सब मंग मंगना सेवक ठाकर सब तू है तू है गुरमति हर चंग चंगना सब कहो मुखो रिखी केस हरे जित पावे सब फल फलना श्लोक महला चौथा हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान जो इच्छे सो फल पाए सी गुर सब दी लगे ध्यान किल विख पाप सब कटी है होमे चुके गुमान गुरमुख कमल विगस्या सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम महला चौथा हर हर नाम पवित्र है नाम जपत दुख जाए जिनको पूरब लिखिया तिन मन वस्याए सतगुर के पास

रंग परंग सिस्त सब साजी, बहु बहु विद पांक उपावनी, सब तेरी जोत जोती विच वरते, गुरमती सुदै लावनी, जिन हो है दयाल तिन सतगुर मेले, मुख गुरमुख हर समझावनी, सब बोलो राम रमो श्री राम रमो, जित दालद दुख पुख सब ले जावनी। श्लोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस, हर अमृत हर उर्धार, विच संगत हर प्रभु वरसदा, बुझो शब्द विचार। मन हर हर नाम से आया, दिख हो मैं कड्डी मार, जिन हर हर नाम ना चेत्यो, तिन जुए जन्म सब हार, गुरु तुक

चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल जुग करनी सार मत गुरमत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार वड पागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर पंडार बिन नावे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुरु दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरमुख सुन हर

पंचे शब्द वजे मत गुरमत बड पागी अनहद वजिया अनद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आद जुगाद वे सहर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुवर भरे वहन जिना सतगुर मन्या जन नानक वड पागल हन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वर्णिय किस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चटसाल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा। श्लोक मैला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुर भाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन

पाया जाए। जिन सुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए। नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिनको सदा सदा। जिना सतगुर मेरा प्यारा देखिया तिनको मिलिया मेरा सतगुरु। जिनको तुर मस्तक लेखिया हर अगम दियाया गुरमति। तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुरु बचन से आया जिना अगम हर। ते ठाकुर सेवक रल एकिया सब कहो मुखो नर नर हरे। नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत विशेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे। रम रामो राम रमीत कट कट आत्म राम।

हर स्वामी हर प्रभु तिन मिले, जिन लिखिया तुर हर प्रीत, जन नानक नाम ते आया, गुर बचन जप्यो मन चीत, महला चौथा हर प्रभु सज्जन लोड़ लो, पाग वसै वड पाग, गुर पूरे देखा लिया, नानक हर लिव लाग पौड़ी, तन तन सुहावी सफल करी।

मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजाने हर मेल दिखाए आप हर गुरबचनी नाम समाने तिन वित्तो नानक वारिया जो जप दे हर निर्वाणी श्लोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुरुदे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले।

पौड़ी। तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता, एक मनमुख कर हारायन एक ना मेल गुरु तिना जीता। हर उत्तम हर

जग मोहनो जिन जगत उपाए सब वस कीता। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हो मैं रोग है परम फूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग बजाए मिल सतगुर।

बिन नहीं कोई, कट कट अंतर रव रहा, जप्यो जन कोई, सगल जपो गोपाल गुण, प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरुमुख मिले से सज्जना, हर प्रभ पाया रंग, जन नानक नाम सलाए तू, लुड लुड दर गए।

जन को कृपा करो मधुसूदन। हर देवो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है। जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा। हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत। तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा गुर के पग सिमरो दिन राती। मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी। सस चंदन जस तसिया हर जन हर हर हर लिव लाई। सब साकत खोज पया ज्यो किरत संजोग चलियो। नर निंदक पग नागन छो जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया। कहां भया दैत करी बखीली सब कर कर चर परिया। जे तेजी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखे जन नानक शरण पया। कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुर उपदेश हर नाम से आयो। सब किल बिख दुख लाथे रहाओ। रसना एक जस दाए न साके बहु की जय बहु रसनते। बार बार खिन पल सब गावे गुण कह ना सके प्रभु।

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन को क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प आरापो, कोई मिले प्रभु मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभु सुमरे, जन नानक के प्रभु समरत।

हर हर नाम पजतई, जय अंति अवसर आए बनत है, तह राखे नाम साथई, जन तेरा जप गावे हर हर, प्रभ हर जपियो जगन्नाथई, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पात्र रख बुढ़थई, कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जाने, और कोई निंद करे हर जन

हर सेवा से काल जोए न साके, चरनी आए पवे हर जाने। जाको राख ले मेरा स्वामी, ताको सुमत दे पहकाने। ताको कोई अपर न साके, जाकी भगत मेरा प्रभु माने। हर के चोज विडान देख जन, जो खोटा खरा इक निमक पछाने। ताते जन को अनंद भया है, रिद सुध मिले खोटे पछताने। तुम हर दासे समरथ स्वामी, इक मांगो तुझ पासो हर दाने। जन नानक को हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मोहे हर चराने। कल्याण महला चौथा, प्रभु की जय कृपा निधान। हम हर गुण गावेंगे, हों तुमरी करो नित आस प्रभु। मुहि कब गल्लावेंगे रहाओ, हम बारिक मुगद इयान पिता समझावेंगे। सुत खिन खिन फूल बिगार जगत।

सतगुरु प्रसाद। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी दुख निवारण नारायण, सगल भगत जाते सुख सागर पवनिध तरण हर।

सफल सफल सफल दर्शरे परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिए हीरे हीर विदाई।

रसक रसन नाम जपत तै पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन विद ताकी कहां करो तर्क ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कै

गोविंद नानक आसरो कल्याण महला पंजवा। मन तन जापिए भगवान गुरपुरे सो प्रसन्न भये, सदा सुख कल्याण रहाओ सर्व कार्य सिद्ध भये। गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे, नाथिया दुख काल कर कृपा प्रभु मेरिया, करो दिन रहन सेव। नानक दास

राव, हर बिन आन ना कोई समरथ, तेरी आस तेरा मन तान, सर्व कटा के दाते स्वामी, दे सो पैरन खान, सुरत मत चतुराई सोबा, रूप रंग तन मान, सर्व सुख आनंद नानक, जप राम नाम कल्याण, कल्याण महला पंजवा, हर चरण सरन कल्याण करन, प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ, साध संग जपनि संग, जम काल तिसना खावनो, मुक्त जुगत अनिक सुख, हर भगत लवै ना लावनो, प्रभ दर्श लुबद दास नानक, बहुड़ जोन ना तावनो, कल्याण महला चौथा, अष्टपदियां इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। रामा राम रामो सुन मन पीजे, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजे रहाओ, कास्त में ज्यो है बैसंतर, मत संजम काड कटी जय, राम नाम है जोत सबाई, सत

जय। हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दी जय। राम नाम तुल और न

जन हर भगवान दिखी जाए। साकत सूत बहु गुरु जी भरिया क्यों कर तान सनी जाए। संत सूत किछ मिटे नाही साकत संग न की जाए। सतगुरु साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवि जाए। अंतर रतन जवे हर मानक गुर कृपा ते ली जाए। मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा

कृपा कृपा कर साध मिलावो जग सम्मन कौथम दीजे बसदा तले तले सब ऊपर मिल साधु चरण रुली जय अप उत्तम हो सब शिष्ट चरण तल दी जय गुरमुख जो

राम नाम अनुग्रह बो किया गुरु साधु पुरख मिली जय गुण राम नाम विस्थिरन किए हर सगल पवन जस जी जय साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय जो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर न पी जाए तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे दंड धर्म राय का दी जाए सब तीर्थ बरत जग पुन किए हिवे गाल गाल तन छीजे अतुल्ला तोल राम नाम है गुरमत को पूजे ना तोल तुली जाए तब गुण ब्रह्म ब्रह्म तू जाने जन

मन तन अर्प करो सब आगे रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहा। ब्रह्म नाम गुण साफ तरोवर नित चुन चुन पूज करी जय। आत्म देव देव है आत्म रस लागे पूज करी जय। विवेक बुद्ध सब जग में।

तिन कस कस नाक वढ़ी जाय साकत नर अंकारी कही है बिन नावे त्रिग जीवी जाय जब लग सांस सांस मन अंतर तत बेगल शरण करी जाय नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखी जाय कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण धुवी जाय किल बिखो दहन होए खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा की जय रहा मंगत जन दीन करे दर ठाडे अत तरसन को दान दी जय त्राहे त्राहे शरण प्रभ आए मोको गुरमत नाम दृढ़ी जय काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उठ जूझ करी जय अंगीकार करो रख ले वो गुरु पूरा कार्ड कटी जय अंतर अगन

ज्यों सूरज किरण गव्या सर्ब ठाई, सब कट कट राम रवि जय। साधु साध मिले रस पावे, तप निज पर बैठिया पी जय। जन को प्रीत लगी गुर सेती, ज्यों चकवी देख सूरी जय। निरखत निरखत रैन सब निरखी, मुख का दे अमृत पी जय। सांपत स्वान

साधु साध शरण मिल संगत जित हर अस्पार कभी जाए पर उपकार बोले बहु गुनिया मुख संत भगत हर दी जाए तू अगम दयाल दया पत दाता सब दया तार रख ली जाए सर्व जी जग जीवन एको नानक प्रतपाल करी जाए कल्याण महला चौथा रामा हम दासन दास करी जाए जब लग सास होए मन अंतर साधु तूर कवी जय रहाओ शंकर नारद शेख नाग मुन तूर साधु की लोची जय पवन पवन पवित्र हो।

करम राय की कान चुकावे, दिख दुबदा काड कडी जाए, परम सू के बहु उबसुक कही है, मिल साधु संग हरी जाए, कांते बिलम पल टिल न की जाए, साधु चरण लगी जाए, राम नाम कीर्तन रतन वथ, हर साधु पास रखी जाए, जो बचन गुर सत सत

करी जाए जेवर भाग होए अपनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जाए सब माया मोह बिकम जग करिए सहजे हर रस पी जाए माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै तची जाए अज्ञान अंधेर महापंथ बिखड़ा अहंकार पार लग ली जाए नानक राम रम रम रम रम रामे ते गत की जाए सतगुर मिले ता नाम दृढ़ाए राम नामे रले मिली जाए छक्का पहला।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज करवाती विपास महला पहला चौक दे कर पहला नाए तेरे तरना नाए पत पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मन्ने सब कोए बिन नामे पत कब होना होए अवर सियाणत सगली पाज जय बख्शे तै पूरा।

सोजन जान साची दरगे पावे मान कहना सुनना अकथ कर जाए कथनी बदनी नानक जल जाए प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अष्ट तीरथ संग गहे गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लहै गुर समान तीरथ नहीं कोए सर संतोष।

पूरा नावण पशु परे तो देव करे रत्ता सच नाम तल ही अल सो गुर परमल कही है जाकी वास बनास पत कौर है पास चरण लिव रही है गुरमुख जी प्राण उपजे गुरमुख शिव कर जाई है गुरमुख नानक सच समाई है गुरमुख निज पद पाई है प्रभाती मैला पहला गुर कर सादी विद्या विचार है पर पावे मान आपा मध्य आप प्रगासिया पाया अमृत नाम करता तू मेरा जजमान एक दखना हो तै तै मांगो दे अपना नाम रहाओ पंच तस्कर कावत राखे चूका मन अभिमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कनक कर प्राप्त पाती धान दूध कर्म संतोष कियो कर ऐसा मांगो दान क्षमा तीरज कर गऊ लवेरी सहजे बछरा खीर पिए सिफत कर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नान करवत रह प्रभाती महला पहला आवत किने न वाख्या जावत क्यों राख्या जाए जिससे हुआ सोई पर जाने जा उस ही माए समाए तू है वाहो तेरी रजाए जो किछ करे सोई पर होए बा अवर न करना जाए रहा जैसे हर हट की माला टिंड लगत है एक सखनी होर फेर परियत है तैसो ही यो खेल खत्म का ज्यो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर प्रगासी मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी कौन गिरही कौन उदासी जिसकी आशा तिस ही सौंप के यो रहा निर्वाण जिससे हुआ सोई कर मान्या नानक गिर ही उदासी सो करवाण प्रभाती महला पहला दिष्ट विकारी बंधन बांधे हौ तिस कै बल जाई पाप पुन की सार न जाने फूला फिरे अजाई बोलो सच नाम करतार फुन बहुर ना आवन।

करवाण ताको समझावन जाये जे को भूला होई। आते खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई नाव पर भाते सब त्याये छोड़ो दुनी परीता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता परवाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया मगर उठा साबास जा तू राखे राख ले साबत हो वैरास ऐसा नाम रतन निध मेरे गुरमत देह लगो पग तेरे रहाओ मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार कट कट एक वखाणी है कहो न देखिया जाए फोटो पूठो रालिए बिन नावे पट जाए जा तू मेले ता मिल रहा जा तेरी होए रजाए जात

साजा तू सापत है, जे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटी है, नानक छूट सुनाए प्रभाती महला पहला, जागत बिगसे मूठो अंधा, गल फाही सिर मारे तंदा, हासा आवे मनसा जाए, पुरजी ताणी किछ ना बसाए, जागस जीवन जागन हारा, सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ, कहो न बूझे अंग न सूझे, कोंडी कार कमाई, आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर, कर्मी मिले वडाई, दिन दिन आवे तिल तिल चीजे, माया मोह।

की सरकार। मेरा प्रभ रांग कणो अत रूड़ो, दीन दयाल प्रीतम मनमोहन अत रस लाल सगूड़ो। रहाओ ऊपर कूप गगन तनिहारी, अमृत पीवन हारा जिसकी रचना सो विद जाने, गुरमुख ज्ञान विचारा। पसरी किरण रस कमल विगासे, सस्तर सूर समाया। काल बिंदु से मन सामन मारी, गुरु प्रसाद प्रभु पाया। अत रस रंग चलू ले राती, दूजा रंग ना कोई। नानक रसन रसाए राते, रब रहया प्रभु सोई। प्रभाती महला पहला, बारह में रावल खप जावे, चहो छह में सन्यासी। योगी का पड़िया सिर खूथे, बिन शब्द गल फासी। शब्द रते पूरे बैरागी, औ हथ हस्त में पीछिया जाची।

पाए सब मिले से सूचा चारी साची दरगह माने हम दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने सगले कर्म कर्म सुख संजम जप तप तीरथ शब्द वसे नानक सतगुरु मिले मिलाया दुख पराचित काल नसे करवाती महला पहला संता की रेण साध जन संगत हर कीरत कर तारी कहां करे बपुरा जन डरते गुरुमुख हृदय मुरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरुमुख आवे साध मना रहाओ गुरु उपदेश साथ सुख जाको क्या तिस उपमा कही है लाल जवेहर रत्न पदार्थ खोजत गुरुमुख लही है चीने ज्ञान त्यान तम साचो एक शब्द लिवलावे निरालंब निरहार नहीं केवल निरपौता लीलावे सायर सपत करे जल निर्मल उल्टी नाम करावे बाहर जा तो ठाक रहा वे गुरमुख से समावे सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछानिया नानक कहे अवर नहीं दूजा साथ शब्द मन मानिया राग करवाती महला तीजा चौपदे इको अंकार सतगुर प्रसाद गुरुमुख विरला कोई बूझे सब दे रहा समाई नाम रते सदा सुख पावे साथ रहे लिवलाई हर हर नाम जपो जन भाई गुरु प्रसाद मन अस्थिर होवे हम दिन हर रस रहा अघाई रहा हम दिन पवित्र करो दिन राती इस युग का लोहा भाई सवा जन निर्मल मैल न लागे सत नाम सितलाई सुख सिगार सतगुरु दिखाया नाम वड्डी वड्याई अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे सदा हर सेवो भाई आपे करता जिसनो देवे तिस वसे मन आई नानक नाम ते आए सदा तू सतगुरु दिया दिखाई करवाती महला तीजा निर्गुणी आरे को बख्श ले स्वामी आपे लहो मिलाई तू बेअंत तेरा अंत न पाया सब दे देहो बुझाई हर जियो तुद विटो बल जाई तन मन अर्पी तुद आगे राखो सदा रहा शरणाई रहाओ अपने पाने विच सदा रख स्वामी हर नामो दे वड्याई पूरे गुरते पाना जापे हम दिन सहज समाई तेरे पाए भगत जे तुद भावे आपे बख्श मिलाई तेरे पाने सदा सुख पाया गुर कृष्णा अग्न बुझाई जो तू करे सो होवे करते अवर न करना जाई नानक नावे जेवड़ अवर न दाता पूरे गुरते पाई करवाती महला तीजा गुरमुख हर साल आया जिन्ना तीन साल आए हर जाता विचों परम गया है दूजा गुर कै शब्द पछाता हर जियो तू मेरा इक सोई तुद जपी तुद ऐसा लाही गत मत तुझते होई रहाओ गुरमुख सालान से साध पायन

कोई गुर के शब्द कमल पर गासिया हो मैं गुरमत खोई सब नाम एक को सच वरते विरला बूझे कोई गुरमति मन निर्मल हुआ अमृत तत्व थामे हर का नाम सदा मन वसिया विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुर अपने विटो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु न सेविया बिरथा जन्म गवाया नजर करे ता सतगुरु मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे पाग से आया प्रभाती महला तीजा आते पांच बनाए बहुरंगी शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया कर कर वेख करे कराए सर्व जियानो रिजक दिया कली काल में रवे आराम कट कट पूर रहा प्रभे को गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहा गुप्ता नाम वर्ते विच पल जुग कट कट हर पर पूर रहा नाम रतन तिना हृदय प्रगटिया जो गुर शरणाई पग पया इंद्री पंच पंचे वस आने खिमा संतोष गुरमत पावे सो तन तन हर जनवड पूरा जो कह बैराग हर गुण गावे गुर ते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित धरे कर आचार बहु संतोषं चे जो किछ करे सो नरक पड़े एको शब्द एको प्रभु वर्ते सब एक स्ते उत्पत चले नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सालाए पूरा पाग हो गए मुख मस्तक सदा हर के गुण गाए रहाओ अमृत नाम को जन हर दे कोट मदे कोई विरला ले जिसनो अपनी नजर करे गुर के चरण मन माए वसाए दुख अनेरा अंदरों जाए आपे साचा ले मिलाए गुर की बाणी सो लाए प्यार एथे ओथे एव आधार आपे देवे सृजनहार सच्चा ननाए अपना भाणा सोई तगत सुगड़ सुजाना नानक तिसके सब कुर्बाना प्रभाती महला चौथा विकास इकोंकार सतगुरु प्रसाद रसक रसक गुण गावे गुरमत लिव उन मन नाम लगान अमृत रस पिया गुर शब्दी हम नाम विटो कुर्बान हमरे जग जीवन हर प्राण हर उत्तम रिद अंतर भायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर नाम बखान कित बिद क्यों पाये प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर बान सत संगत में हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान वड्डे पाग सत संगत पाई गुर सतगुर परस भगवान गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान जन नानक को गुर कृपा भारी हर नाम दियो खिन गान प्रभाती महला चौथा उगवे सूर गुर मुखर बोले सब रैन संभाले हर गाल हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करें प्रभु हर पाल मेरा मन साधु तूर जवाल हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा गुर पद चारे हम बाल रहाओ साकत को दिन रैन अंधारी मोय फाथे माया जाल खिन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो ऋण बादे बहु

हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल दिख पौ जल डुबदे काड लियो प्रभ गुरु नानक बाल गोपाल प्रभाती महला चौथा। एक थिन हर प्रभ कृपा धारी गुण गाए रस प्रतीक गावत सुनत बहु कहे मुक्ते जिना गुरमुख खिन हर पीक मेरे मन हर हर राम नाम रसतीक गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस जीक राव जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिना मस्तक उजल टीक हर जन शोभा सब जग ऊपर ज्यो विच उडवा सस पीक जिन हर हृदय नाम नवस्यो तिन सब कारज फीक जैसे सिगार करे दे मानुक नाम बिना नकटे नकीक कट कट गुनैया रमत राम राए सब वर्ते सब मैं एक जन नानक को हर कृपा धारी गुर बचन ते आयो करी नीक। प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभधारी मुख हर हर नाम हम कहे पतित पावन हर नाम ध्यायो सब किल बिख पाप लहे जप मन राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ पाया नगर नगर हर बसयो मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगत्यो कर मंदल हर प्रभ लहे जो नर परम परम उद्याने ते साकत मूड मुहे जो मृग ना भी बसे बास बसना त्रम त्रम्यो चार गहे तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ मत देवो हर प्रभ लहे जन नानक को गुर हाथ सिर करयो हर राम नाम रव रहे। प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभु वडपा सतगुरु बचन सुखाने हीरे हर तारी हर प्रभु कृपा मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा हर हर दान दियो गुरु पूरे हर नामा मन सन बसा रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर जप शोभा गुरमुख करपफा हलत पलत जन पै सुहेले मुख उजल गुरमुख तरफा अनपौ हर हर हर लिव लागी हर उर्धार्यो गुर निमखफा कोट कोट के दोष सब जन के हर दूर किए इक पलफा तुमरे जन तुम ही ते जाने तब जान्यो जन से मुखफा हर हर आप करो हर जन में जन नानक हर प्रभ इकफा। प्रभाती महला चौथा। गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जपबा तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा दिख दुख दे बाह दे कडबा जप मन राम नाम अर्धांबा उपजंप उपाय न पाये कतहु गुरपूरे हर प्रभ लाबा रहाओ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रसदा लो मनूर कंचन मिल संगत हर उर्धार्यो गुर हरवा हौ मैं बिखिया नित लोग लुवाने उत्कलत मोह लुबा तिन पग संत न सेवे कबहु ते मन मुख पूंगर परदा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम करे हार तुम शरणवा ज्यों जानो त्यों राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा। सत्ता पहला प्रभाती विपास करताल महला चौथा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। जप मन हर हर नाम निधान हर दरगे पावे मान जिन जप्याते पार प्राण रहाओ
सुन मन हर हर नाम कर ध्यान, सुन मन हर कीरत अठ न जान, सुन मन गुरुमुखता में मान, जप मन परमेश्वर प्रधान, चिन खोवे पाप कुतान, मिल नानक हर भगवान, प्रभाती महला पंजवा विपास इको अंकार, सतगुर प्रसाद, मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत् रच जोत निवाजिया, सेजा तरत बर्तन को पानी, निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी, मन सतगुर सेव होए परम गते, हरख सोगते रहे निरारा, का तू पावे प्राण पते रहा, कातड़ पोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कुटंब सगल बनाए, रिजक समाहे जल फल नीत, सोहर सेवो नीता नीत, कहा सखाई जय कोई न होवे, कोट अपराध एक खिन में धोवे, बात करे नहीं पछोतावे, एका बख्शे फिर बहुर ना बुलावे, किरत संजोगी पाया भाल, साध संगत में बसे गोपाल, गुरमिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहो मुरार, करवाती महला तन्यवा, प्रभु की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन के पंडार, गुण गावे प्रभु दर्श प्यार, तुमरी पगत प्रभु तुम्हें जनाई, काट जेवरी जन लिए छिड़ाई रहा, जो जन राता प्रभु के रंग, तिन सुख पाया प्रभु के संग, जिस रस आया सोई जाने, तेख तेख मन में हैराने, सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जाके हृदय वसिया प्रभु सोए, सोई नेचर आवे न जाए।

निरंकार कर कृपा मोहि ठाकुर देवा नानक उदरै जन की सेवा प्रभाती महला पंजवा गुण गावत मन होए आनंद हाथ पैर सिमरो भगवंत जाके सिमरन कलमल जाहे तिस गुर की हम

गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा। तिस गुर कै सदा बल जाइए, हर सिमरन जिस गुर ते पाइए। बूढ़त प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोह नहीं माया। फलत पलत जिन गुरे सवारिया, तिस गुर ऊपर सदा हो वारिया। महामुक्ते किया ज्ञानी, गुर पूरे की अकट तवानी। पार ब्रह्म नानक गुरुदेव, वडे पाग पाये हर सेव। प्रभाती महला पंजवा, सगले दुख मिटे सुख दिए, अपना नाम जपाया। कर कृपा अपनी सेवा लाए, सगला दुख मिटाया। हम बारिक शरण प्रभु दयाल, अवगण काट किए प्रभु अपने। राख लिए मेरे गुरु गोपाल राव, पाप पाप बिन से किन भीतर। तय कृपाल गुसाई, सास सास पार गम आरादी। अपने सतगुर के बल जाई, अगम अगोचर बेअंत स्वामी। ताका अंत न पाये, लाहा खाट हुई है तनवंता। अपना प्रभु ध्याई है, आठ पैर पार ब्रह्म त्याई। सदा सदा गुण गाया, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ। पार ब्रह्म गुर पाया, प्रभाती महला पंजवा। सिमरत नाम किल बिख सगना से, सच नाम गुर दीनी रासे। प्रभ की दरगे शोभा वंते, सेवक सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे भाई, सगले रोग दोष सब बिनसे।

पाए भगत हर सो मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगै अतोले, सदा सदा प्रभ गुण निध गाइए, कहो नानक वड पागी पाइए।

गुर पूरा पाये वडपागी, दर्शन को जाये कुर्बान। रहाओ चिलगुठ में तो सबद संतोख, नाम आराधन हो आजोग, साध संग हो आप्रगास, चरण कमल मन माए निवास। जिनकी आकिन लिया राख, प्रभ पूरा अनाथ का नाथ। जिसे निवाजे कृपा धार, पूरन कर्म ताके आचार। गुण गावे नित नित नित नवे, लख चौरासी जोर न भवे। इहा उहा चरण पुजारे, मुख उजल साचे दरबारे। जिस मस्तक गुर तरिया हाथ, कोट मदे को विरला।

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल पर कृपाला, अपना नाम आप जपाया रहाओ। संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूरन भैयास, सर्व कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोभ मोह बिनस जाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बालक कछु ना जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख बिगार, देनहार बुद्ध विवेक।

सुत कंचन स्यों हेत बधाया, सब कुछ अपना इकराम कराया। ऐसा जाप जपो जप माली, दुख सुख पर हर भगत निराली रहाओ। गुण निधान तेरा अंत न पाया, सात शब्द तुझ माए समाया। आवागौण तुद आप रचाया, सही भगत जिन सच चित लाया। ज्ञान ध्यान नर हर निर्बाणी, बिन सतगुर पे ते कोई न जानी। सगल सरोवर जोत समानी, अनद रूप वित्तों कुर्बानी। पाओ भगत गुरमति पाए, हो मैं विच्चों सबक जलाए।

जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रहत सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख नेता हारा, अवर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आगे राख्या, नानक कहे महारस चाख्या, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुलंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किछ सोजी नाही, पर में पूला बूड मरे, अंदा परया पर कोवे, अंतर की मल कदे ना लहे, नाम बिना फोकट सब कर्मा, जो बाजी गर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन सोई, तू गुण सागर अव

बाद ओ परम पूले मरो न कोई सतगुरु श्री सदा सुखोई बिन सतगुरु मुक्त किने न पाई आवे जाए मरे मर जाई ओ शरीर है त्रै गुण तात किसनो व्यापे शोक संताप।

अदर पछाण प्रभाती महला पहला दक्षिणी गौतम तपा अहल्या स्त्री किस देख इंद्र लोग।

अंतर झूठा क्यों सुठ होए, सब जी तो वह विरला कोए, गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना था कहावे।

पवित्र पावन सृजन निर्मल हर के नाम समाए, हर मंदिर हर का हाथ है रखिया शब्द सवार। इस विच सौदा एक नाम गुरमुख लैन सवार, हर मंदिर में मन लोहत है मोया दूजे भाए। पारस पे पे कंचन भया कीमत कही ना जाए, हर मंदिर में हर वसे सर्व निरंतर सोए। नानक गुरमुख बन जिए सच्चा सौदा होए, प्रभाती महला की जा कह पाए जागे सृजन जागरण करें होमे मेल उतार। सदा जागे कर अपना राखें पंच तस्कर का डैमार। मन मेरे गुरमुख नाम ध्याए जित मार घर पाइए, मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरमुख सहज तुम उपजे दुखों में विच्चों जाए। हर नामा हर मन वसे सहजे हर गुण गाए, गुरमति मुख सोने हर राख्या उर्द।

तरह सुहोग विपास प्रभाती मैला पंजवा अष्टपदियां इको अंकार सतगुरु प्रसाद। मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग आनंद स्यों जुगता उर्ज परयो मन मीठ।

वेसना पाई है महा दुखियारी, बोले नाही हुए बैठा मोनी, अंतर कल्प पवाई है जोनी, अंते रहता दुख देही सहता, हुक्म ना बूझे व्याप्या ममता, बिन सतगुर किने न पाई परम गते, पूछो सगल वेद सिमरते, मन मुख कर्म करे अजाई, जो बालू कर ठौरना ठाई, जिसनो पै गोविंद दयाला, गुर का बचन तिन बांध्यो पाला, कोट मदे कोई संत दिखाया, नानक तिन कै संग तराया, जे होवे पाग का दर्शन पाईए, आप तरह सब कुटुंब तराईए, रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किलगत सब काते, धर्म राय के कागर पाते, साध संगत मिल हर रस पाया, पार ब्रह्म रिद माए समाया, राम रमत हर हर सुख पाया।

हर प्रेम भगत मन सन सदराता, प्रभु जनाया तब ही जाता, कट कट अंकर रविया सोए, तिस बिन भी जो नाही कोए, गैर विरोध छेद।

उल्टा गांडा। जब कब संजम नाम समा लिया, अपने ठाकुर नगर निहा लिया, मंगल सुख कल्याण तिथाई। जय सेवक गोपाल गुसाई, प्रभु सो प्रसन्न तय गोपाल, जन्म जन्म के मिटे विताल, होम जग उर्द तप।

भरपूर मात पिता हर प्रीतम मेरा मीठा जन भरवासा तेरा कर गए लीने अपने दास जप जीवे नानक गुणतास विपास प्रभा की बाणी भगत कबीर जी की।

जो जन जान बजे पुरुषोत्तम काची अवगत बाणी नामा कहे जग जीवन पाया हृदय अलस बिडानी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत न जानिया सर्व निरंतर राम रहा रव ऐसा रूप बसानिया गोविंद गाजे शब्द बाजे।

हृद अंतर कर तलकाती, ठग दुष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा, कल भगवत बंद चिरामन, क्रूर दुष्ट रता निस्वादन रहाओ, नित प्रत स्नान शरीरं, दो तोती कर्म मुख खीरं, हृदय चुरी संध्यानी, पर दर्भ हिरन की बानी, सिलपू जस चक्र गणेशं, निस्जाग सुपगत परवेशं, पग नाच सुचित अकर्मं, एलं पट नाच अधर्मं, मृग आसन तुलसी माला, कर उजल तिलक कपाला, हृदय कूर कंठ रुद्राखं, रे लंपट कृष्ण अवाखं, जिन आत्म तत् न चीनिया, सब फोकट तर्म अवीनिया, कहो बेणी गुरुमुख त्यावे, बिन सत गुरु बाप न पावे।

सिमर राम सिमर ए है तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग जगत सुख मान मिथ्या।

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार समझत नह क्यों गवार, बिन सत नह लगे बार पूरे समगात है। रहा सगल परम डाल।

भी हाथ है। जय जावंती महला नामा। रे मन कौन गत हुए है तेरी, यह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान। बिखिया

पनिता बिनोद सुत कतंच भात मेट हित बंधव कतंच मोह कुटुंबत कतंच चपल मोहनी रूपं ते खंते त्यागं करोत रहं।

तत आसन लान के गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रचति चर्मणे नवंत द्वारं भीतरहंतं।

प्राप्तम धर्म लखन नानक जैसो परसन माधवे निर्तमोहं अलप बुद्धन रचंत बनता दिनोद साहं जो बन बेह कर्म कनक कुंडले बचित्र मंदर शोभंत।

ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਜਾ ਚੰਤ ਨਾਨਕੇ ਦੇਨਹਾਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ।

धरे। दयाल एक भगवान पुरखे, नानक सर्व जीव प्रित पालके। अनित्य वित्तं अनित्य चित्तं अनित्य आशा बहुविध प्रकारं, अनित्य हेतं अहम् भं अहम् बंधं।

होत अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अग खंडन ऋद बसंत भयभीत दूते कर्म करत महानिर्मले जन्मे मरण रहंत स्रोता सुख समूह।

बते विपरीत बुद्धिं मारत लोकै नानक चिरंकाल दुख भोगते।

सातुरे भाग उद्यम लब्धं माया नानक साध संग खल पंडते कंठ रमणी राम राम माला हस्त ऊ

अजाभोदंत कंद मूलं बसंते समीप के हरे तत्र गते संसारे नानक सोग हर्षं व्यापते छलं छिद्रं कोट विघ्नं।

ਪਿਆਲ ਖਰੇ ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਮਨ ਮੋਹ ਮਦਰੰ ਮਹਾ ਅਸਾਦ ਪੰਚ ਤਸਕਰੇ ਹੀਤ ਮੋਹ ਭੈ ਭਰ।

परम बादम अवर्ते एते सुत अक्षणे गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन्मतन बलवंत बलात् कारणे चरण कमल भजंत तृण समान धृग जनमने।

करण कदे न चित्तो, जाता अस्थल तोल अमितो, सोई नानक सखा जी संग कितो। अप जसन मिटंत सत पुत्र सिमर तवर गए गुरु मंत्रणे।

चरणे हो सुती होए अचिंते मन आस पुराया हर हां जा घर आया कं ता सब किस पाया।

गुर क्या करे जो सिखा में चूक हम दे एक ना ला गई जो बांस बजाये फूक। कबीर है गए बाहन सगन कन छत्रपति की नार ताश पटम कर ना पूजे।

कीचड़ आटा गिर परया किछु न आयो हाथ। पीसत पीसत चाबिया सोई निभिया साथ। कबीर मन जाने सब बात जानत ही औगन करे।

साबत रखे ता राम भजे नाहे ता विनती बात। कबीर केसो केसो कुकिया ना सोए सारे

केवट बिरला संत कबीर राम रतन मुख को पारख आगे खोले कोई आए मिले दो गाती ले दो महंगे मोल कबीर राम नाम जानियो नहीं पाले कटक कुटुंब संदे ही में मर गयो बाहर पई न बंब कबीर आखी केरे मात के पल पल गई बिहाए मन

जीवंते पंछी चले दिसावरी बिरखा सुफल कलंक। कबीर साधु संग परापति लिखिया होए लीलात मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवकट काट। कबीर एक करी आदि करी आदि हूँ ते आदे अगत।

खेलत खेलत हाल करे जो कुछ होए ता होए। कबीर जो तुम खाद तिरम की पाके से की खेले, काटी सरसों तेल कह ना फल कई ना तेल। ढूंढत डोले अंग गत हर चीनत नाही संत, कहनामा क्यों पाए बिन भगतों भगवंत।

जिप जिहाड़े तनवरी साहे ने लिखाए मलक जितने सुंदा मोह दिखा ले आए जिंद निमानी कटलिए हंडा को कड़काए साहे लिखे ना चलने जिंदों को समझाए जिंद वोती मरण वाले ले जासी परनाए आपन हथी

कंध कुहारा सिर कड़ा वन के पर लोहारे खरीदा हो लोड़ी सो अपना तू लोड़ है अंगियार खरीदा इतना आटा।

ओ लबी वाते थप्पड़ तू मैं क्या हो चिकर डुबे हाथ फरीदा नंदी संत नारायण वड़ी सी मोई आते।

न होती नित। फरीदा मंडप माल न लाए, मर्द सताए चित तारे साईं।

सोताओ वत कुआरी ना पिए कलर तेरी छपड़ी आए उलते हंजे पिंजू बोरन ना पीवे उड़न संधी डंज हंस उदर कोदरे पया लोक विदारण जाए जहला लोक ना जानदा हंस ना कोदरा खाए चल चल गईया पंखियां जिनी वसाए तले फरीदा सर परिया पी चलसी थके कवले कले फरीदा इत सिराने तोए सन कीड़ा लड़ियो मास केतड़े

फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माही मंदा किसनो आखी है जा किस दिन कोई ना है। फरीदा जे जे नाला कपया जे गल कपे दुख पवन ना इकी मामले सहाना इकी दुख चबन चलन रतन से सुनियर बह गए हेरे मुक्ति पासे जानी चल गए। फरीदा बुरे दा पला कर गुस्सा मन न हंडा।

नौबत वजी सुबह सों चलन का परसाद फरीदा रात पूरी वंडी है सुतिया मिले न खाओ जिना नैन निंद्रावले तिना मिलन को आओ फरीदा मैं जानिया दुख मुझको।

फरीदा महल सखण रह गए वासा आया तल देरा से निमाणिया बैसन रूहा मल आखी से था बंदगी चलन अज के कल फरीदा मोतैदा बन्ना एवें दिसे ज्यों दरिया वैता अगे दोजक तपिया सुनिए हूल पवे कहा इतना नू सब सोजी आई इक फिर दे वे

क्या चलै किस नाल इक जागन दे नाल हन कितना सुतियां दे उठाल तू देंदिए सुहाग को सौ तन काई कोर जिन्ना नाउ सुहागनी तिन्ना छाप न होर सबर मंज कमान ए।

ए सिर तल उपर पाए मैं जानिया वड हंस है ताने की पासंग जो जाना बग बकुड़ा जन्म न पेड़ी अंग क्या हंस क्या बगुला जाको नदर परे जो किस पावे नानका सागो हंस करे सरवर पंखी हे परो फाही वाल पचास तन लहरी गद किया सच्चे तेरी आस कम को अखर कम गुण कम को मणिया मंते कम को वे सोहा करी जित वस आवे संत निमन को अखर खन गुण जो बा मणिया मंते।

परब रहो भरपूर सगल घट रहो व्यापे व्यापक देखे जगत जाने कौन तेरी गते सर्व की रक्षा करे आते हर पते।

आन नहीं तुम भरे हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुले ब्रह्म संसय एक दिन क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर अपार पर आपनो भावन कर मंत्र न दूसरो धर उपतो तरलो एक निमक तो घर आन नई समसर उजियारो निर्मल कोट पर छते जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दल कुल ब्रह्म समसर एक दिन क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार।

जन नानक भगदर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बतन हाके बल बल बल बल।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

धन धन ते धन जरे जे कृपाल हर हर भयो हर गुरु नानक जिन परसो से जन्म मरण दो ते रहो सत सत हर सत सत सत सत भणिए दूसर आन न आवर पुरखे पुरातन सुनिए अमृत हर को नाम लेत मन सब सुख पाए जे रसन साखो तै जन तृप्त अधाए जे ठाकुर सो परसन भयो सतसंगत तें प्यार हर गुरु नानक जिन परसो तिन सब कुन कियो उधार सच सभा दीवान सच सचे तै धरयो सचे सत निवास सच तथावस करो सच सुन जो

हर तारन तरन समरथ सवैद कुले समूह उधारन सो चित चेत अचेत जाम सत संगते भरम अंधेर मोयो कत धो मूरत घड़ी च सापल सिमरन राम नाम रखना संगलो होतो काज अलग सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख भाव सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरों रंच करे खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सो दे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूधन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निक

नानक काट भरम भरे। रे मनमूस बिलावे गर्वत करतब करत महाम भुना, संपत दौल झूल संग झूलत माया मगन भरमत घुगना। सुत बन का साजन सुख बंदते तासो मो बड़ो सुघना। बोयो भीत अहं मम अंकुर बीतक औध करत अधना। मृत मंजार पसार मुख निरखते भुंचत भुगत भूख भुखना। सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जगे जानत सुपना। देहे न देहे

एहन करत सौद तन जारी करम धर्म संजन सुख सुचने मा करम धर्म संजन सुचने मा चंचल संग सगल बिदहारी पथ पंखी बिरख अस तावर बहुत जौन भम्यो अत भारी सिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पथ सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उधरे और माया मगन चले सब डारी ब्रह्मांगत शिव छंद मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरत धरण गगन आवत फुन धावत सिद्ध मांस

ग्रस्यो जम तो तन डन मृत मरो है। अंत धोन संकट नरक भुंचत शासन दुख गर्त गर्यो है। प्रेम भगत उधरे सेनान के कर कृपा संत आप करो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आसमारी। औषध मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मद सर तृष्णा बिन सजाए।

नानक दास सदा बलहारी। आवत तत्यो न जात प्रेम रस चरण कमल सन, दामन बंधयो न जात विधे मन दर्श मग, पावत जरो न जात रहो जन धूर लग, नींद न साकस बोर चले हर पंथ मगे, नानक रोग दुख अगमो छिदे हर नाम खग, उदम कर लागे बहु भांति बिचरे अनशास्त बहु खटुआ, भस्म लगाए तीरथ बहु घमते सूखम दे बंधे बहु जटुआ, बिन हर भजन सगल दुख पावते, जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ, पूजा चक्र करत सोम पाका अनक भात फाटे कर खटुआ, स्वये मले तले ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक मन पुरख दयाय वरदाता, संत सहार सदा दिखयाता, ताशन वैर दे बसाओ

भगत दीन गुण रही सहज आत्म रंग माणे, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ आर न जाए। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिख जस गायो, कब कल सुजस नाम।

करतार करह समरथो। सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरयो जिन हथो, तै धरयो मस्तक।

सत संगत सहज सारे जागिले गुर बिचारे निमरी भूत सजीव परम प्यारे कौतीर्थ कल सहारे सतत दीप मझारे लेना जगत गुरु पर समुरारे तै तो दरियो नाम अपारे बिमल जास बिखारे साधक सिद्ध

हर हर दर्श समानी आत्मावंत ज्ञान जाने अकलगत गुरु परवान जाके दृष्ट अकल ठाने बिमल बुद्ध सुठाने पैर सील सन।

लैणा जगत गुरु परस मुरार, दृष्ट धरत तम हरन दहन अघ पाप परासन, सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन, लोभ मोवस करण शरण जाचिक प्रित पालन, आत्मरत संग्रहण कहन अमृत।

रुद दुगा सजाग्यो अलग कल धरी जुगंतर। सतगुर सहज समाद रव्यो सामान निरंतर। उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन्न। सब रंग सहज कल उचरे जस जमतो लेने रसने। नाम औखद नाम आधार अर नाम समा

हमें दृष्ट शुभ करे हरे अघ पाप सकर्मल काम क्रोध अर लोभ मोवश करे सदै बल सदा सुख मन वसै दुख सन

तीरथ रव फिर प्रगण संसारे सात सरोवर मवल सराब। उत्तर दक्षिण पुग अर पश्चिम जय जयकार जपंत नरा हर नाम रसन गुरुमुख बरदायो उल्ट गंग पर

कोई नाम अचल भगते भवतार। अमरदास गुरु को पुरिया चित नाम लागते तुझ से ध्याई जति कपि।

कित संसार किरण रहो सुरतर साथे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस भाके जन्म तयो सखे अत जित नाम हर दे निवासे सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आशा से भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगत वच भाव जल हरन गुर अमरदास तै पायो नाम धुयावे देव कैतीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे जय नाम समाधयो हरक सोग समतर सहारे नाम शिरोमण सर्व में भगत रह निवधार सोई नाम परार्थ अमर गुर तुस दियो करकार सत सूरो श्रील बलवंत सत भाय संगत सघन गुरु मत निर्वैर लिया जिस धीरज धुर धवल भुजा

सुख पायो अमर गुर की खोजो। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी। धन सतगुण सेवे जिस पसाय।

हृदय बसो अत हो सोए रस नहीं जातो। मुखों भगत उतरे अमर गुर इत रंग रातो। मस्तक निशान सचो करम पल जोए कर भायो। परसो गुर सतगुरु तिलक सर्व इच्छ तिन पायो। चरण तपर सत्यत चरण गुर अमर पवल ले। हथ तपर सत्यत हथ लगे गुर अमर पे। जी तपर सत्यत जी गुर अमर भरजे।

करवणी गुर अमर सुन जय सत सोहियो जित ही बसे गुर अमरदास निज जगत पिते सत्यत सो सुर जालक भणे जो सुर ने गुर अमर निते।

गुर अमर रास निज भगत है, देख दर्श पावो मुकते। गुर अमर दास परसिए कहुं पाठक विनाशे, गुर अमर दास परसिए सिद्ध साधक आशासे। गुर अमर दास परसिए ध्यान ले तो मुकै,

लहर जालता पदार्थ इतने गुरु अमरदास जिथे मिले सच नाम करतार सुदृढ़ नानक संग्रह हो ताते अंगद

अते तात गुण कवण वखाणो जो गुण अलख अगम तिने गुण अंत न जानो बोलतो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उधरणे गुरु अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पासरण आप नारायण कलाधार जग में परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल।

जप तप सत संतोष तिक दर्शन गुर सिखे शरण परे ते उबरे छोड़ जमपुर की लिखे भगत भाए भरपूर हृदय उचरे कर तारे गुरु गौहर दरिया पलक डूबंते तारे नानक कुल निमल अवतरे गुण कर तारे उचरे गुरु अमरदास जिन सवे तिन दुख दरिद्रे।

उद्वस करे पवन उदंत न धावे। निरंकार के वसे देश हुकम बोझ विचार पावे। कलमाए रूप करता।

धर्म धन कर गयो भगत सिंह सर लड़यो। धन गोहर अटल मन सबद गुरु ने जाग दियो। काम क्रोध लोभ मोह।

ਅਬਨਾ ਸੇ ਅਬਗਤ ਦਿਆਇਓ। ਇਸ ਭੂਤੇ ਦਾਰਿਦ੍ਰ ਨ ਚਮਤੇ ਕਲ ਸਹਾਰਤਾ।

नाम रे निरंजन उर धरया। हर नाम रसक गोविंद गुण गाहते, चाहत तत समत सरे, कब कल ठकर हर दास ने, गुरु राम दास सर अबर भरे। छूटत प्रवाह अमे अमरा तत,

तिन भौ निवार अन भय पद दीना, शब्द मात्र ते उधर धरे। कण कण छकुन हर दास तने, गुरु रामदास सर अवर भरे। सतगुरु मत गूढ़ बिमल सत संगते, आत्म रंग चलूल भया। जागा मन कवल सहज परिगासा, अभय निरंजन घरे लहा। सतगुरु दयाल हर नाम दिलाया, इस पन साधवस पंच करे। कल कल ठाकुर हरदास तने, गुरु राम दास सर अभर भरे। अनुभव अनुमान अकल लेवे लागी, पारस भेटिया सहज घरे। सतगुरु प्रसाद परम पद पाया, भगत भाए भंडार भरे। मेटिया जन मंत्र मरण भव, भागा चित लागा संतोष सरे। कब कल ठकुर हरदास तने, गुरु रामदास सर अबर भरे। अबर भरे पायो अपार अंतर धारियो, दुख भंजन आ

अमे रस रसन प्रकाशय मिलत सांत उपजय दुर्ख दुरंतर नाशय सुख सागर।

भरत परवासी तुप बुली न होते सतगुर शब्द अथाओ अम्यो धारा रसगुत्ते मत माता संग

गुरमुख ध्यान दुर्मत मैल धोवे जियो। सतगुरु नाम एक लिव मन जते, जिन जन दुख पाप को।

काठो सीखन सतगुर कियो दुख दर्द तिन के गए। सतगुरु चरण जिन परसिया ते पस प्रे

गुरु गुरु ऐनस जाते दास भट बेनत कहे जो गुरु नाम रिद में धरे सो जन्म मरण दो ते रहे गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर कर सच बिचारे गुर करे मन मेरे गुर कर शब्द सुपन।

के अथक संसार में। गुरु गुरु गुरु कर मन मेरे, तारण तरण समर्थ कलयुग सुनत समाद शब्द जिसके रे। सुन दुखन नाश सुखदायक सूरो, जो धरत ध्यान बस तै मेरे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत, मुख देखत अग जाए परे रे। जो हर बुध हृदय सिद चाहती, गुरु गुरे गुर कर मन मेरे। गुरु मुख देख गरु सुख पायो, उठी जो प्यास प्यो सेवन की, बंसत सिद को विद मिलायो। पूरन भवन ठौर बसोरसे, बासन शिव जो दंज सधायो। गोविंद वाल गोविंद पुरी, समजलन तीर विवास बनायो। गयो दुख दूर बरखन को, तो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। समरथ गुरु सिर हाथ धरयो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अघन हरो, निस्बासुर एक समान ध्यान, सो नाम सुने सुत भांडरो। भन दास आस जगत गुरु की, पारस भेत परस करो। रामदास गुरु हर

ज्ञानियों शब्द हर हर जपे नाम नवनिध आपे रसन ऐनित रसे सत कर जानियों सुनु प्रेम रंग पाइए गुरमुखे ध्याइए अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियों वचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत उत तो।

गुरु जप सत कर अगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐनक करो बचन गुरु हृदय धर सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु मुख

उदत गुर गहर गमीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लेवलाये। सुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरते शब्द गुरु ध्याये। अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर संग।

गुर मिलत मुन जन रे तरे नार दाद संकार हर गुरु मुखे तरे एक नाम लग तजो रस अन

परमानंद गुरुमुख कयन पर तख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरण सतगुरु गुरु सेव।

हर जन से गुर ज्ञान रते। रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर, मुन बंसे जाकी शरण, सत गुरु गुरु सेव अलख ग।

अवलोका ब्रह्म भरम शुभ छुटकार, अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटकार, दिव दृष्ट कारण करण सतगुरु गुरु सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारण तरण। परताप सदा गुर का घट घट परदास भया।

करें पर भात शुद्ध मन गुरु पूजा विद सहित करन। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद बरन। सतगुरु गुरु सेव अलख।

तिन तरयो समुद्र रुद्र थिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडली सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन

ही पाता। गुरमुख संगत सबे विचारो, वाओ वाओ का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहा, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मा विक रुद्रा दिखे, काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाए परमार्थ, सत्संगत से ती मन खचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद

सब संग प्रगट तिन आगर। गहर गंभीर अथायतमन सुबर सदा सब विद रतनागर। संत मराल करे कंतु हल तिन जम प्रास्मित्यो दुख

ज्ञान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परगास को। वेद बाणी सहते ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन गहना सजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गदा झूठ भेख किए फिरत उदास को। सोतन सतगुण सुख भाए कृपा।

अंतर्गत तेज कुंचे लोक प्रगा से देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभते अल्प मोजो कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप था।

जाके बसीस धर्यो गुर हथे, तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन सरस क्यों ना जगत कोई, आपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे, असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे, अविनाशी अचल अजौनी, संभो पुरखोत्तम आपार परे, करण कारण समरथ सदा।

सतगुरु नानक भगत करे एक मन तन, मन धन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत निज धारी, अगम ज्ञान रस रस हियो गुरु अमरदास।

सुदामा खूब भगत हर के जोगन अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन तिनको अवतार।

मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिटियो जो तिणन। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिटियो जो खिणन। कर्म कर तो दर्श परस पारसन बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो। जै सित सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जै सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जै सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जै सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुण बल भण मिल।

जय तिखत अत होए रहत मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानू, तीनी भगत प्रेम लिवलाई। साते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद की

दम भर सहता भय बंजन पर पीर निवारण कल संहार तुए जस भगता कुल सौदी गुरु राम दास तन धर्म भुजा अर्जन हर भगता।

कहे मथुरा अमृत बैन। मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन। सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो आद पुरख पर तथे लिखो अक्षर मस्तक धुरे प्रगट ज्योत जगम।

आए बौरस साल ने सवार दी खटवस मीठे पाए त्यों बाणी पगत सलां दे हर नाम चित लाए मन तन तन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए पै पगती पगत बहु लोच दे।

0: नाम रतन प्रकाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन नक्शे फिरे बिन नाम बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सके कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर कै शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे पंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़या दसवें आकाश, तिथ है ऊंग न पुख है हर अमृत नाम सुखवा।

भेद है अंत बेली को न सखाए, सतगुरु सेवे सो सुख पाए, नाम वसै मन आए, नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाए। मनमुख नाम न चेतनी बिन नाम है दुख रोए, आत्मा राम न पूजनी दूजे क्यों सुख होए, हों मैं अंतर मैल है शब्द न काढ़े तोए, नानक बिन नाम है मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए। मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करे प्रगास, ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर वचन ना करे विश्वास, ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिव सदा विकास, हर ज्ञानिया की रखदा।

आए बिक का मारण हर नाम है गुर गरुड़ शब्द मुख पाए जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए मिल सतगुरु निर्मल होया बिक हो मैं गया।

सतगुर पुरख निर्वैर है नित हिरदय हर लिवलाए निर्वैर नाल वैर रचाएंदा अपने कर लूकी लाए अंतर क्रोध अहंकार है अंदिन जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल नित पौंक दे।

हर हर नाम ना चेतनी करते आप खुआए, हर गुरमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए, जन नानक तिस बलिहारण जो सतगुरु लागे पाए, नाम लगे से उबरे बिन नाम है जम पुर जाए, नानक बिन नाम है सुख नहीं आए गए पछताए, चिंता तावत रह गए।

सतगुर सेवन अपना गुर शब्दी विचार, सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरदार, एथे ओथे मनियन हर नाम लगे वापार, गुरमुख शब्द सुजाप दे तित साचे दरबार, सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार।

ए मोह माया सब पसरिया नाल चले नांती वार बिन हर शांत ना आवे किस आगे करी पुकार वड पागी सतगुरु पाया बूझिया ब्रह्म विचार तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर उरदार असी खत्ते बहुत कमाम दे अंत ना पारा वार हर कृपा करके बख्श ले हो हों पापी वड गुनहगार हर जियो लेखे वार ना आवे तू बख्श मिलावन हार गुर तुठे हर प्रभ मेलिया सब किल कट विकार जिना हर हर नाम ते आया जन नानक तिन जयकार विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के पै पाए जन्म मरण नहीं चल भये गुरमुख नाम से आए गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लवन नानक लाल अमोल का गुरमुख खोज लहन मनमुख नाम ना चेत्यो तिग जीवन तिग वास जिसदा जित्ता खाना पहनना सो मन ना वस्यो गुणतास ए मन शब्द ना पेदियो क्यों होवे करवास मन मुखिया दोहागनी आवन जान मोयास गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास हर हर नाम उरधारिया हर हृदय कमल प्रगास सतगुर सेवन आपना हो सद बलिहारी तास नानक तिन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास शब्द मरे सोई जन सिजै बिन शब्द मुक्त न होई पेख करें बहु कर्म विगुते पाए दूजे परज विगोई नानक बिन सतगुरु नाव ना पाई है जेसो लोचे कोई हर का नाव अत वड ऊंचा ऊंची हु ऊंचा होई अपड़ कोई न सकई जेसो लोचे कोई मुख संजम हच्छा ना हो वही कर पेख पवे सब कोई गुर की पौड़ी जाय चढ़े कर्म प्राप्त होई अंतर आए वसे गुर शब्द विचार है कोई नानक शब्द मरे मन मानिए साचे साची सोए माया मोह दुख सागर है बिख दुत्तर तरे आना जाए मेरा मेरा कर दे पच मोए हों मैं करत विहाय मन मुखा उरवार न पार है अद विच रहे लपटाए जो तुर लिखिया सो कमावना करना कछु न जाए गुरमति ज्ञान रतन मन वसे सब देखिया ब्रह्म सुवाए नानक सतगुर बोझ वड पागी चढ़े ते पौजल पार लंगाए बिन सतगुर दाता को नहीं जो हर नाम दे आधार गुर कृपा ते नाव मन वसे सदा रहे उरधार तिसना बुझे तिपत होए हर कै नाए प्यार नानक गुरमुख पाईए हर अपनी कृपा धार बिन शब्द जगत बर लिया कहना कछु न जाए हर रखे से उबरे शब्द रहे लिवलाए नानक करता सब कित जानदा जिन रखी बनत बनाए होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण बिख माया मोह न मिटई विच होमे आवन जान सतगुर मिले मल उतरी हर जपिया पुरख सुजान जिना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सतगुरबान माया मोह बहु चित्व दे बहु आशा लोभ विकार मन मुख अस्थिर नाथी है मर बिनस जाए खिनवार वड पाग होवे सतगुर मिले होमे तजै विकार हर नामा जब सुख पाया जन नानक शब्द विचार बिन सतगुरु भगत न हो वही ना

मन आवन जान ना सुजई ना सुजै दरबार माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार तब नरक पा जा गया सिर डंड लगा बहु पार गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार नानक आप ओह उदरे सब कुटंब तरे परवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे हर दरगे गुर सब जापे बिन शब्द मुआ है सब कोए मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम न चेते अंत दुख रोए नानक करता करे सो होए गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ज्ञान ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान तिना नदरी इको आया सब आत्म राम पहचान मन मुख बालक बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही विच हो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कह सब सुवाए ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुर भाए मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलिया।

नानक गुरमुख मन च्यों लुजै, जिना सतगुर पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार। ओए मानस जून ना आखियन पशु टोर गावार, ओ ना अंतर ज्ञान ना ध्यान है हरसो प्रीत ना प्यार। मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार, जीव दयानो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार। नानक गुरमुख सोहणे सिद्ध सच्चे दरबार, हर मंदर हर साजिया हर वसै जिस नाल, गुरमति हर पाया माया मोह पर जाल। हर मंदर वस अनेक है नव नाम समाल, तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल। वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हृदय पाया नाल, मन मुख दे दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार। माया मोह न चुकई मर जमे वारो वार, सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार। जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार, हर हर नाम से आए मन हर दरगह पावे मान। किलविक पाप सब कटिए हो मैं चुके गुमान, गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान। हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम, तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए। तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुक्म फिराओ, जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय तह जाओ। एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ, सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ। पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पथ के साथ आपे खाए, तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए। सतगुर विच वडियां वडियाईयां भाई कर्म मिले ता पाए, एक हुक्म मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए। संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ, नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ। तिन विटो हो वारिया भाई तिन को सद बलिहार रह जाओ। से दाड़ियां सचियां जे गुर चरनी लगन, अंदिन सेवन गुर आपना अंदिन अनदरहन। नानक से मोह सोहणे सच्चे दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़ियां सच बोले सच कमाए। सच्चा शब्द मन वस्या सतगुर माहे समाहे, सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे। सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे, सच्ची दरगह बैसना सच्चे माहे समाए। नानक बिन सतगुर सच ना पाईए मन मुख भूले जाए। बाबीहा प्रयो प्रयो करे जल निज प्रेम प्यार, गुर मिले शीतल जल पाया सब दुख निवारण हार। तिस चुके सहज उपजे चुके कूप पुकार, नानक गुरमुख सांत होए नाम रखो उदार। बाबिया तू सच चो सच्चे सौ लिवलाए, बोलिया तेरा थाए पवे गुरमुख होए अलाए। शब्द चीन तिक उतरे मन लहर जाए, चारे कुंडा चोक वरसदा बूंद पवे सह चुबाए। जल ही ते सब उपजे बिन जल प्यास न जाए, नानक हर जल जिन पिया तिस भूख न लागे आए। बाबी हा तू सहज बोल सच्चे शब्द सुवाए, सब किस तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाए। आप पछाणे प्रीतम मिले वुठा छह बरलाए, चिम चिम अमृत वरसदा तिसना पुख सब जाए। फूक पुकार न हो वही ज्योति ज्योत मिलाए, नानक सुख सवन सुहागणी सच्चे नाम समाए। तुरु खसम पेजिया सच्चे हुक्म पठाए, इंद वरसे दया कर गूड़ी छह बरलाए। बाबी है तन मन सुख होए जा तत बूंद मोह पाए, अन तन बहुता उपजे तरती शोभा पाए। अंदिन लोक भगत करे गुर कह शब्द समाए, आपे सच्चा बस लय कर कृपा करे रजाए। हर गुण गावो कामणी सच्चे शब्द समाए, पै का सह सिंगार करो सच रहो लिव लाए। नानक नामो मन वसे हर दरगह ले छड़ाए। बाबी हा सगली तरती जे फिरे ऊट चढ़े आकाश, सतगुर मिले जल पाईए चूके भूख प्यास। जियो पिंड सब तिसका सब किस तिसके पास, बिन बोलिया सब किस जानदा किस आ गए की
ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਕਟ ਕਟ ਏਕੋ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਏ, ਹਰ ਬੁੱਠਾ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਪਰ ਫੜੈ, ਸਭ ਜਗ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਏ। ਸਬਦੇ ਸਦਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਤ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਏ, ਹਰ ਬੁੱਠੈ ਮਨ ਤਨ ਪਰਫੜੈ ਸਭ ਜਗ ਹਰਿਆ ਹੋਏ। ਵੱਡੜੈ ਚਾਲ ਚਲੁੰਬੜੈ ਨਾਵੜਾ ਲਈਐ ਕਿਸ, ਨਾਉ ਲਈਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ ਪੰਨਣ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਹਰ ਹਟ ਵੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰੈ ਬੋਲੈ ਪੱਲੀ ਬਾਣ, ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਹੈ ਕਿਆ ਉੱਚੀ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ। ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਏ ਹਰ ਰੰਗ ਕੀਆ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ, ਆਪ ਛੋੜੈ ਤਾਂ ਸੋ ਮਿਲੈ ਸੱਚਾ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਹਉ ਮੈਂ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਬੁਝ ਨਾ ਸਕਾ ਕਾਰ, ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤੁਝੈ ਧਿਆਇ ਦਾ ਅੰਦਿਨ ਸਦਾ ਵਿਹਾਨ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕੇ ਵਿਚਾਰ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲਹਿ ਸਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਆਏ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੋਗ ਨਾ ਪਗਵੀ ਕੱਪੜੀ ਜੋਗ ਨਾ ਮਹਿਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਜੋਗ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਉਪਦੇਸ਼। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਜੇ ਪਵੈ ਵੇਦ ਪੜੈ ਜੁਗ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਫੇਟੈ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਵੈ ਮੋਹ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਖਸਮ ਕਾ ਮਤ ਪਵੀ ਫਿਰੈ ਚਲ ਚਿਤ, ਮਨਮੁਖ ਸੋ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸੁਖ ਕੇ ਪੁੱਛੈ ਮਿਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਲਾਏ ਚਿਤ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕਾ ਮੂਲ ਕੱਟੀਐ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਵੀ ਮਿਤ। ਪੁੱਲਿਆਂ ਆਪ ਸਮਝਾਏ ਸੀ।

आए, जिन उपाय तिसे न चेते हैं, बिन चेते क्यों सुख पाए, नानक परपंच किया तुर करते हैं, पूर्व लिखिया कमाए, गुरुमुख प्रतीत पई मन मानिया, अंदिन सेवा कर समाए, अंतर सतगुरु गुरु सब पूजे, सतगुरु का दर्श देखे सब आए, मनिए सतगुरु परम विचारी, जित मिले तिसना पुख सब जाए, हों सदा सदा बलिहारी गुर अपने, जो प्रभु सच्चा दे मिलाए, नानक कर्म पाया तिन सच्चा, जो गुर चरणी लगे आए, जिन प्रिया सोने हो से सज्जन मै नाल, अंतर बाहर हों फिरा पी हृदय रखा समाल, जिना एक मन एक चित ध्याया, सतगुरु सो चित लाए, तिनकी दुख पुख हों मैं वड्डा रोग गया, निर्दोख पए लिव लाए, गुण गावे गुण उचरे गुण मैं स्वय समाए, नानक गुर पूरे ते पाया सहज मिलिया प्रव्याय, मन मुख माया मोह है नाम न लगे प्यार, कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार, दिख माया तन संच मरे अंत होए सब चार, कर्म तर्म सुट संजम करे अंतर लोभ विकार, नानक मन मुख जे कमावे सो थाए न पवे दरगे होए कुवार, सब ना रागा विच सो भला भाई जित वस्या मन आए, राग नाद सब सच है कीमत कही न जाए, रागे नादे बहारा इन्नी हुक्म न बूझा जाए, नानक हुक्मे बूझे तिना रास होए सतगुर ते सो जी पाए, सब किस किससे होया ज्यों तिसे धीर जाए, सतगुरु विच अमृत नाम है अमृत कहे कहाए, गुरमती नाम निर्मलो निर्मल नाम से आए, अमृत बाणी तत् है गुरमुख वसै मन आए, हृदय कमल प्रगासिया ज्योति ज्योत मिलाए, नानक सतगुरु दिन को मेलियन जिन तुर मस्तक पाग लिखाए, अंदर तिसना अग है मन मुख पुख न जाए, मोह कुटम्ब सब कूड़ है कूड़ रहा लपटाए, अन दिन चिंता चिंतवे चिंता बद्दा जाए, जम्मन मरण न चुकई हो मैं कर्म कमाए, गुर सरनाई उबरे नानक ले छड़ाए, सतगुरु पुरख हर त्याय दा सतसंगत सतगुरु भाए, सतसंगत सतगुरु सेव दे हर मेले गुर मेलाए, यो पौजल जगत संसार है गुर बोहित नाम तराए, गुर सिखी पाना मन्या गुर पूरा पार लंगाए, गुर सिखा की हर तूड़ दे हम पापी भी गत पाए, गुरु मस्तक हर प्रम लिखिया गुरु नानक मिलिया आए, जम कंकर मार विदारियन हर दरगे ले छाए, गुर सिखा नो सावास है हर तुठा मेल मिलाए, गुर पूरे हर नाम दिलाया जिन विच्चों परम चुकाया, राम नाम हर कीर्त गाए कर चानन मग देखाया, हों मैं मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया, गुरमती जम जोहे न सके सच्चे नाए समाया, सब आपे आप वरते करता जो पावे सो नाए लाया, जन नानक नाउ ले ता जीवे बिन नामे खिन मर जाया, मन अंतर हों मैं रोग परम पूले हों मैं साकत दुर्जना, नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना, गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई, सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुरु नाम दृढ़ाया, मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुरु के गुल बोले।

गुर कै शब्द अराधिय नाम रंग बैराग जीते पंच बैराया नानक सफल मारू इह राग जामू इक ता लख तौ जिती पिनने दर कितड़े बामन बिरथा गयो जनम जिनकी तो सो विसरे रस पीजिए कभू न फीका होए नानक राम नाम गुण गाये दरगह निर्मल सोए जो प्रभ रखे आप तिन कोए न मारे अंदर नाम निदान सदा गुण सारे एका टेप अगम मन तन प्रभ धारे लगा रंग अपार को न उतारे गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारे नानक नाम।

दुई गणत लाहे अपनी नदर निहाल आपे लहो लाए जन देहो मती उपदेश विच्चों परम जाए जो तुर लिखिया लेख सोई सब कमाए सब कष्ट दे वस दूजी नाही जाए नानक सुख आनंद भये प्रभ की मन रजाए गुर पूरा जिन सिमरिया से भय निहाल नानक नाम आराधना कारज आवे रास पापी कर्म कमाव दे कर दे हाय हाय नानक ज्यो मथन माधानिया क्यों मथे धर्म राय नाम से आए साजना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवे कीतो पवन पुनीत खुबड़ी कुठाए मिठी गलन कुमंत्रिया।

مٹیو نہ جم کو تراس، کہو نانک ہر پدما

जगत पिखारी फिर तू है, सबको दाता राम। जगत

نانک اے بد ہر پجو اک من ہوئے اک چت تیرت برت

जिसका सब आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। के वस्त जी नह जाई, नित नित रख उधारो, तम संसार चरण।

माल राग कौशक संगलाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक उभारा खौखट औ पौरा नद गाये अष्टमाल कौशक संगलाए पुन आयो हिंडोल पंचनार।

परमानंद पास करे आए चंद्रबिम मंगलन सोहाए सरस बान औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत समोदा अष्ट पुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कांगरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग में गावे पांचों संग बिरंगन लावे।

हुक्म लेख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है।

आई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा बिन पाने के नाए करी जेते सिरठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा।

जे को मन जाने मन कोई, मन्ने मार्ग ठाक न पाई, मन्ने पथ स्यों प्रगट जाय, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होय। जे को मन

दरियाओ कुदरत कमण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई पली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ।

असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावे साई पली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल भख खाहे, असंख निंदक सिर करह पा।

अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए।

गत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोय बिन गुण कीते भगत ना होय स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कमण सुवेला वखत कमण कमण थित कमण वार कमण से रुती माह कमण जित होवा आकार वेल न पाइया पंडती।

जा करता सिर ठीक को साजी, आपे जाने सोई किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आखन सब को आखे, एक दू एक सियाणा।

पवह समुंद ना जानिए है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होमनी जे तिस मनो ना विसर है अंत न सिफती कहन ना अंत अंत न करने देन ना अंत अंत ना वेखण सुनन ना अंत अंत ना जापे क्या मन मंत अंत ना जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाऊं।

आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना कमाए केते मंगह जोद अपार केतियां गणत नहीं विचार।

आहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करे ता आख ना सकह केई के, जेवड़ भावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार, सो दर के हा सो कर के हा, जित बह सर्ब संभाले, वाजे नाद अनेक असंख्य।

देवतियां दर नाली गावे हैं सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गावे हैं वीर करारी गावन पंडित पंडर खीसर जुग जुग वेदा नाले गावे हैं मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ पयाले गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावे हैं जोध महाबल सूरा गावे हैं खानी चारे गावे हैं खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावे हैं जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात शाह सहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पत चोली।

आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग वजोग दुहकार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन केले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवें चलावै जिव होवै।

आद अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया सो एकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पौ लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखियह एक नाम जगदीस एक राहे पत पवड़िया चढ़िया होए अतीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पाई।

जोर, जोर लागी वन मरन नह जोर, जोर ना राज माल मन शोर, जोर ना सुती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटे संसार, जिस हाथ जोर कर वेख सोए, नानक उत्तम नीच ना कोई, राती

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड इत्थै नाद बनोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप इत्थै घाट घड़िया बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथै

आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल कित्तै खंड मंडल वर भंड।

ऐपी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पांति कर कर, जिनसी माया जिन अपाई, कर कर देखे कीता है अपना, ज्यों तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई, सो पातशाह साहा पात साहिब, नानक रहन रजाई।

खाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरन संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चितम है उद्दम जा आहर हर जियो।

सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, हुए न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन पहु करिया, उडे उड़ आवे सह कोसा, तिस पासे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन चगावे, मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सत

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमय अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्यावो

तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्याव है हर त्याव है तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूती जमती फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी।

किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़ पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डुबियाले मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा। ना हों जति सती नहीं पढ़िया।

ज्यों होवै साहिब स्यों मेल, कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला, शे कर शे गुर शे अपदेस, गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वडाई तोए रहाओ, विश्वे चसियां कड़ियां पहरां, थिती वारी माह होआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस, राग तनासरी महला पहला, गगन में थाल, रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ, सहस तव नैन नन नैन है तुहि कहो, सहस मूर्त नना एक तो ही, सहस पद बिमल नन एक, पद गंद बिन सहस तव गंद इव चलत मोही, सब मह जोत जोत है सोए, किस दै चानन सब मह चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत इस भावै सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो।

क्रोध लगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडाही पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मन

तहाउ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हों मैं कंडाही ज्यो ज्यो चल है चुभै दुख पावे जमकाल सह सिर डंडाही हर जन हर हर नाम सुमानी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम।

सिद्ध हुआ सिद्ध लाई रिद आखा आउ गुपत प्रगट हुए बैसा लोक राखे पाउ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाउ सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाऊ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाऊ मत देख पू

लिखे भूलन भूलना लिखे खाना खाओ लिखे वाट चलाइया लिखे सुन वे खाओ लिखे सहा लवाइया है पढ़े के पुछन जाओ बाबा माया रचना तो अंधे नाम बसारिया ना तिस एह ना ओहो रहाओ जीवन मरना जाए कै इत्थे खाजे काल जिथे बह समझाई है।

जित सेवै सुख पाईऐ तेरी दरगाह चलै मान रहाव सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम सुनह वखाण है जेतड़ी हों तिन बलिहार जाऊं ता मन खीवा जानिए जा महली पाए थाऊं नाव नीर चंगे आईया

तिसमिन सब अपवित्र है जेता पहनन खान होर गल्ला सब कूड़िया तुद भावे परवान श्री राग महल पहला जाल मोह कस मस कर

रहाउ। प्रभ हर मंदर सोहना तिस मेहमान कलाल, मोती हीरा निर्मला कंचन कोटरी साल। बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ू, गुर हर ध्यान निहाल। गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुलहा हर नाम। गुर सर सागर बोहितो, गुर तीरथ दरियाओ। जे तिस भावे उजली सत सर नामन जाओ। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावण पूरे आस निरास। नानक पूरा जे मिले क्यों घाटे गुणतास। श्री राग महला पहला आप हो भैने गल मिले, अंक सहेलड़िया मिलकै करह कहानियां। समरत कंत किया साचे साहिब सब गुण, औगण सब असहा। करता सब को तेरे जोर, एक शब्द बीचारिय जां तू तां क्या होर रहाओ। जाए पुछो सुहागणी

रहाउ आप सुजान ना भुलै सच्चा वड किरसान पहला धरती साधकै सच नाम दे दान नौनिद उपजै नाम एक कर्म पवै निशान गुर कौ जान ना जाने क्या तिस चज अचार अंधलै नाम वसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान ना चुकई।

सच मिले गुरमत पल्ले पाए, सो नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए, नानक दर प्रधान सो।

फिर लागू पई कूरव जावै तूर बिन शब्द परमाई है दुबदा डोबे पूर मन रे शब्द करहो चित लाए जिन गुरमुख नाम ना बूझिया मर जन्मे आवे जाए रहाउ तन सूचा सो आखी है जिसमें साचा नाम पै सच राती देहोरी जेहवा सच सुआउ सच्ची नदर निहाली है

गुरमुख नाम सलाहिया हौ मैं निवरी पाही रहाऊ। सुन सुन गंडन गंडिया लिख पढ़ बुझह पार। तृष्णा अहनिस अगली हौ मैं रोग विकार। ओहो वे परवाहु अतोलवा गुरमुख कीमत सार। लख सियाणप जे करी लख सियों प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी गुरमुख चीनै आप। तन मन गुर पह वेचिया मन दिया सिर नाल। त्रे भवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल। सतगुर मेल मलाया नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला मरने की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस। तू सर्व जिया प्रित पालही लेखै सास ग्रास। अंतर गुरमुख तू वसह ज्यों भावै त्यों निरजास। जियरे राम जपत मन मा।

दिन सरात गुरमुख हर धन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचै पचान परमे पूला दुख कणु जम मार करै खुलहान मनमुख सुख ना पाई है गुरमुख सुख सुभान ऐथे धंध पटाई है सच लिखत परवान हर सज्जन गुर सेवदा गुर करनी पर

हर हीरा गुर माहे सत संगत सत गुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाई है गुर परगास ज्यों अग्न मरै जल पाए त्यों तृष्णा दासन दास जम जंदार न लगई इउं भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ न पावई सच रते सच पाए साकत सच न

गुर मिल पाओ जन लंगिया दरगाह पात परवान नानक ते मुख उजले धुनि उपजै शब्द निशान श्री राग महला पहला वणज करहो वणजारिहो वखर लेहो संभाल तैसी वस्त वसाही है जैसी निबह नाल अगे साहु सुजान है लैसी वस्त संभाल भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर लै चलो सहो देखै पति आए रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों किन्ना सुख होए खोटै वणज वणजै मन तन खोटा होए ठाही पाथे मिर्ग ज्यों दुख घणो नेतरोए खोटे पोतै ना पवै तिन हर गुर दर्स ना होए खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला राम नाम रंग रतिया पार ना भरम तिना हर जप लाहा अगला निरपव हर मन मा

आपे रसिया आप रस आपे रावण हार आपे होवै चोलड़ा आपे सेज पतार रंग रत्ता मेरा साहिब राव रहिया भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बिदरंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वै सुहागनी देख हमारा हाल।

उस किरखा करे हिन तज आत्मै हुए त्याई जप तप संयम होहे जब राखे कमल बिगसै मद आसरमाई बीस सप्ताह रो बासरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सार दस अठार में अपरंपरो चीनै कह नानक इव एक तार गिरिराग महला पहला कर तीजा अमल कर तरती बीज शब्दों कार सच।

रहें को रह ना पर यह पाई सोई काजी जिन आप तजिया एक नाम किया आधारू है पी होसी जाए न जासी सच्चा सिर जन हारू पांच वक्त निवा

मन अंतर हर रस राव रहिया, चूका मन अभमान हृदय कमल परगासिया, लागा सहज त्यान मन निर्मल हर राव रहिया, पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना, ते विरली संसार हौमै ममता मार कै, हर राखिया उरतार हौ तिनकै बलिहार न, जिन्ना नामे लगा प्यार से सुखिए चौ जुगी, जिन्ना नाम अखुट अपार, गुर मिले नाम पाइए चूकै मोह प्यास, हर सेती मन रव रहिया, घर ही माहे उदास, जिन्ना हर का साध आया, हों तिन बलिहार है।

बहु भीख कर परमाइए मन हृदय कपट कमाई हर का महल ना पावई मर विष्टा माही समाई मन रे ग्रह ही माही उदास सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए परगास रहाओ गुर कै शब्द मन जीतिया गत मुक्त करे मह पाए हर का नाम त्याई है सत संगत मेल मिलाए जे लख इस्तरियां भोग करह नव खंड राज कमाहे बिन सत गुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे हर हार कंठ जिन्नी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछे रिद सिद्ध फिरे ओना तिल ना तमाए जो प्रभु भावै सो थीए अवर ना करना जाए जन ना

ब्राह्मणी सच घट प्रगट होए अंतर जिसकै सच वसै सच्चे सच्ची सोए सच मिले से ना विछड़ है तिन निज घर वासा होए मेरे राम मैं हर बिन अवर ना कोए सतगुर सच प्रभ निर्मला

एक वर्तदा एक रहिया समाय जिसनो आप दयाल हुई सो गुरमुख नाम समाय। पढ़ पढ़ पंडित जोत की वाद करह विचार मत बुद्ध भवी ना बुझई अंतर लोभ विकार। लख चौरासी भरम दे भ्रम भ्रम हुए खुआर पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार सत।

पारस परसी है पारस हुई ज्योति ज्योत सुमाई जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आई मन भुखा भुखा मत करह मत तू करह पुकार लख चौरासी जिन सिरी सब सह दे आधार।

ते निर्मले हों सद बलिहार है जास हृदय जिनके हर वसै इत घट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिनको लिखिया ते गुरमुख रहे लिव लाए रहाओ हर संत हो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर गुरमत जिन्नी पछाणिया से देख है सदा हदूर जिन गुण तिन सद मन वसै औगणवंतिया दूर मनमुख गुण तै बाहरे बिन नावै मरदे झूर जिन शब्द गुरु सुन मन्या तिन मन प्याया हर सोए अन दिन भगती रत्या मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंभ का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम परगास है ओह सदा सदा थिर होए एहो जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम ना चेतै लिव लाए पग खिसै रहना नहीं आगे ठौर ना पाए ओह वेला हथ ना आवई अंत गया पछताए जिस नदर करे सो उभरै हर सीती लिव लाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ ना पाए जिन गुरमुख हिरदा सुध है सेव पई तिन थाए हर गुण गाव है हर नित पढ़ है हर गुण गाए समाए नानक तिनकी बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिव लाए श्री राग महला तीजा जिन्नी एक मन नाम ते आया गुरमती विचार तिनके मुख सद उजले

गुरमुख सदा पत होए हर हर सदा त्याई है मल हम कदै धोए रहाउ मनमुख नाम ना जाननी विन नावे पत जाए शब्द साधना आयु लागे दूजे पाए विस्टा के कीड़े पवह विच विस्टा से विस्टा माहे समाए तिनका जन्म सफल है जो चल है सतगुर पाए कुल उधार है अपना धन जनेंदी माए हर हर नाम ते आई है जिसनो कृपा करे रजाए जिन्नी गुरमुख नाम ते आया विचो हो आप गवाए वे अंदर हो बाहर हो निर्मले सच्चे सच समाए नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर त्याय श्री राग महला तीजा हर भगता हर तन रास है गुरपूछ कर है वापार हर नाम सलाहन सदा सदा वखर हर नाम आधार गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया हर भगता अतुट भंडार भाई रे इस मन को समझाए हे मन आलस क्या करे गुरमुख नाम त्याय रहाउ हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार पाखंड भगत ना होवे दुबदा बोल खुआर सो जन रलाया ना रले जिस अंतर विवेक विचार सो सेवक हर आखी है जो हर राख है उरतार मन तन सौंपे आगे धरे हम मैं विचो मार तन गुरमुख सो

आनंदिन नाम ते आई रहाऊ साची मैल ना लागई मन निर्मल हर ते आई गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाई गुर ज्ञान प्रचंड बुलाया अज्ञान अंधेरा जाई मनमुख मैले मल परी हऊ मैं।

नाम निधान सद मन वसै महली पावै थाउ रहाउ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर ना खाउ बहु जूनी पौंदा फिरै यूं सुन्ये घर काउ गुरमती घट चानना

आए, लाहा हर हर नाम मिले, सहजी नाम समाए, बिन गुर महल ना पाईए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड़ लहू, जिद्दू पाईए सच सोए, असुर संगारे सुख वसे, जो तिस पावे सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया, तेहो जेहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही, पाओ लाए जन कोए, नानक एक जोत दोए मूर्ति, शब्द मलावा होए, श्री राग महला तीजा, अमृत छोड़ बिख्या लोवाणी, सेवा करह विडाणी, अपना धर्म गवावह बूझह नाही, अन दिन दुख विहानी, मन मुख अंध ना चेत ही, डूब मोए बिन पानी, मन रे सदा भजहो हर सरनाई, गुर का शब्द

ताप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाय सदा आनंद रह दिन राती मिल प्रीतम सुख पाय जो सतगुर की शरणागति हौ तिनकै बल जाऊं दर सच्चै सच्ची वडियाई।

रे गुर बिन भगत ना होए बिन गुर भगत ना पाईए जे लोचै सब कोए रहाउ लख चौरासी फेर पया कामण दूजै पाए बिन गुर नींद ना आवे दुखी रहन विहाए।

कराए देख कुटंब मोहे लवाना चलदियां नाल ना जाई सतगुर सेव गुण निदान पाया तिस दी कीम ना पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई अपने मन चित कह कहाई बिन गुर आप ना जाई हर जीव दाता भगत वछल है कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई श्री राग महला तीजा धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल होए रहाउ कर कृपा घर आया आपे मिलिया आई गुर शब्दी सालाही है रंगे सहज सुभाई सच्चे सच समाया मिल रह ना विछुड़ जाई जो किछ करना सो

फिरे, गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावणे, जन्म पदार्थ खोए रहाओ जिन्नी चाखिया तिन्नी साध पाया, बिन चाखे भरम भुलाए अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए, पीवत हूं प्रमाण भया पूरा शब्द समाए, आपे दे ता पाई है

तुमाय जात सत संयम नाम है विण नाम है निर्मल ना होए पूरे भाग नाम मन वसै शब्द मिलावा होए नानक सहजे ही रंग वरतदा।

अगली मनवा रज्जा सहज सुपाई गुर का शब्द अमृत है जित पीते तिख जाय इहो मन साचा सच रत्ता सच्चे रहया समाय आखण वेखण बोलना शब्दे रहया समाय बाणी वजी चहु जुगी सचो सच सुनाय हम मैं मेरा रह गया सच्चै लया मलाय तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाय नदरी नाम ते आई है विन कर्मा पाया ना जाय पूरे भाग सत संगत लह सतगुर भेटै जिस आय अन दिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाय नानक शब्द मलावड़ा नामे नाम समाय श्री राग महला तीजा अपना भौ तिन पायुन जिन गुर का शब्द बीचार सत संगति सदा मिल रही सच्चे के गुण सार दुबधा मैल चुकाइयन हर राखिया उर तार।

शब्द सुवारण हार रहाव सत्य शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मलाय अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ न पाय जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेटिया तिन आय बिन नावै सब डुमणी दूजे पाए खवाय तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाय परम पुलाना अंदला फिर आवै जाय नदर करे।

तिना आनंद सदा सुख है जिन्ना सच नाम आधार गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार सदा सदा साचे गुण गावे है साचे नाही प्यार कृपा करके अपनी दितोन भगत भंडार मन रे सदा आनंद गुण गाए सच्ची बाणी हर पाई है हर सिउ रह समाए रहाउ सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सहज सुभाए गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु ना जाए जिहवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवै रस।

रहाउ जिन कर कारण धारिया सोई सार करे गुर कै शब्द पछाणी है जाय आपे नदर करे ते जन शब्दे सोहणे तित सच्चै दरबार गुरमुख सच्चै शब्द रत्ते आप मेले करतार गुरमती सच सलाहना जिस दा अंत ना पारावार घट घट।

साचा सुहुना पाईऐ गुर बीचार रहाउ मनमुख कंत ना पछाणे तिन क्यों रहण विहाय गर्भ अटिया तृष्णा जलह दुख पावह दूजै पाय शब्द रतियां सुहागणी

बिन फिर देखे भूख ना जाए। आवहो मिलहो सहेली हो मैं फिर देहो मलाए। पूरे भाग सतगुर मिले फिर पाया सच समाए। से सहिया सुहागणी जिनको नदर करे खसम पछाण है अपना। तन मन आगे दे घर वर पाया अपना। हम मैं दूर करे नानक सोभा वंतियां सुहागणी। अन दिन भगत करे श्री राग महला तीजा। एक पिर रावे आप।

सोए गुरमुख बाणी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए नानक नाम संभाल तू जित सेवे है सुख होए श्री राग महला तीजा जग होमे मैल दुख पाया मल लागी दूजे पाए मल होमे धोती किवै न उतरै जे सो तीरथ नहाए।

का निर्मल हुए, मन मुख हर हर कर थके, मैल ना सकी तो होए रहाओ, मन मैल है भगत ना होवे, नाम ना पाया जाए, मन मुख मैले मैले मोए, जासन पत गुआए, गुर प्रसादी मन वसै, मल हम मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरै दीपक बाली है, त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए, हम किया हम करहेंगे, हम मूर्ख गावार, करने वाला विसरिया, दूजे पाए प्यार, माया जेवड़ दुख नहीं, सब भव थके संसार, गुरमति सुख पाई है, सच नाम उरतार, जिसनो मिले सो मिले, हम तिस बलिहार जाऊं, ए मन भगती रत्या, सच बाणी निज थाऊ, मन रत्ते जिहवा रत्ती, हर गुण सच्चे गाऊ, नानक नाम ना विसरै, सच्चे माहि समाऊ, श्री राग महला चौथा घर पहला, मैं मन तन बिरहो अत अगला, क्यों प्रीतम मिलै घर आए, जा देखा प्रभ अपना, प्रभ देखिया दुख जाए, जाए पुछा तिन सजना, प्रभ कित बिद मिलै मलाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए, हम मूर्ख मुग्द शरणागति, कर कृपा मेले हर सोए रहाउ, सतगुरु दाता हर नाम का, प्रभ आप मलावे सोए, सतगुर हर प्रभ बुझिया, गुर जेवड अवर ना कोए, हम गुर सरनाई टह पवा, कर दया मेले प्रभ सोए, मन हठ किने ना पाया, कर अपाव थके सब कोए, सहस सियाणप कर रहे, मन कोरै रंग ना होए, कूड़ कपट किने ना पायो, जो बीजै खावै सोए, सबना तेरी आस प्रभ।

गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाय हीरा हीर मिल भेदया रंग चलूलै नाय मेरे गोविंदा गुण गावा तृप्त मन होए अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मलावै सोए रहाओ मन रंगो वडभागी हो गुर तुठा करे पसाओ गुर नाम दरडारे रंग स्यो हौ सतगुर कै बल जाओ बिन सतगुर हर नाम ना लभई लख कोटि कर्म कमाओ बिन भागा सतगुर ना मिलै कर बैठिया निकट नित पास अंतर अज्ञान दुख भरम है विच पड़दा दूर पई आस बिन सतगुर भेटे कंचन ना थीऐ मनमुख लोहो बूढ़ा बेड़ी पास सतगुर बोहत हर नाव है इत बिद चढ़िया जाय सतगुर कै पाणे जो चलै विच बोहित बैठा आए तन तन वड भागी नानका जिन्ना सतगुर लए मलाए श्री राग महला चौथा हौ पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाऊं जिन्नी मेरा प्यारा रावया

मलाए हो सतगुरु बिटो वारिया जिन हर प्रभ दी याद खाए रहाओ हुए नमाणी तै पवा पूरे सतगुर पास निमाणिया गुरमान है गुर सतगुर करे सबास हो गुर सालाहे न रजू मैं मेले हर प्रभ पास सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोई बिन भागा दर्शन ना थीए भाग हीन बहर होए जो हर प्रभ पाणा सो थिया तुर लिखिया ना मिटै कोई आपे सतगुरु आप हर आपे मेल मलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जल है समाए श्री राग महला चौथा रस अमृत नाम रस अत भला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो हो सोहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए ओए वे परवाह ना बोलनी हो मल मल तुआ तिन पाए पाई रे मिल सज्जन हर गुणसार सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डे हो मैं मार रहाओ गुरमुखियां सुहागनी तिन दया पई मन आई सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए से वड भागी वड जानी है जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वण तिन सबत है भाग हीन नहीं खाए बिन सतगुर पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिललाए ओए सतगुर आगै ना निमह ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वस्या मन सोए श्री राग महला चौथा दिनस चढ़ै फिर आथवै रैन सबाई जाए आव कटै नर ना बुझै नित मूसा लाज टुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मनमुख लग माखी पचै पचाए भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए उन्नी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दरगाह मनी है हर आप लए गल लाए गुरमुखा नु पंथ प्रगटा दर ठाक ना कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए अनहद धुनी दर वज दे दर सच्चै सोभा पाए जिन्नी गुरमुख नाम सलाहया तिन्ना सब को कह सबास तिनकी संगत देह प्रभ मैं जाचक की अरदास नानक भाग वड्डे तिन्ना गुरमुखा जिन अंतर नाम परगास श्री राग महला पंजवां कर पहला क्या तू रत्ता देख कै पुत्र कलत्र शिंगार रस भोग है खुशियां करह माण है रंग अपार बहुत करह परमाईसी वरत है हुए अपार करता चेतना आवई मन मुख अंध गुवार मेरे मन सुख दाता हर सोए गुर प्रसादी पाईए कर्म प्राप्त होए रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहु रंगे किए रथ अथाक किस ही चेतना पावहि बिसरिया सब साक सिरजनहार पुलाया विण नावै ना पाक लेंदा बद दुआए तू माया करह एकत जिसनो तू पतियां एंदा सो सन तुझै अनित अहंकार करह अहंकारिया व्यापिया मन की मत इन प्रभ आप पलाया
ना तिस जात ना पत, सतगुर पुरख मलाया, इको सज्जन सोए, हर जन का राखा एक है, क्या मानस हो मैं रोए, जो हर जन पावे सो करे, दर फेर ना पावे कोए, नानक रत्ता रंग हर, सब जग मह चानन होए, श्री राग महला पंजवा, मन बलास बहु रंग घना, दृष्ट भूल खुशियां, छत्र धार बादशाहियां, विच सहसे परियां, भाई रे सुख साध संग पाया, लिखिया लेख तिन पुरख बधातै, दुख सहसा मिट गया रहाउ, जेते थान थनंतरा, तेते भावे आया, तन पाती वड भूमिया, मेरी मेरी कर परिया, हुक्म चलाए निसंग होए, वरतै अफरिया, सब को वसगत कर लयोन, बिन नावै खाक रलिया, कोट ते तीस सेवका, सिद्ध साधक दर खरिया, ग्रंबारी वड साहबी, सब नानक सुपन थिया।

आए जिथे जाए तुद वर्तना किसकी चिंता नाही हाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाए कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल कै आए पया सरनाए नानक सच्चे पातशाह डुबदा लया कढाए श्री राग महला पंजवा कड़ी मोहत का पहुना काज सवारन हार माया काम व्यापिया समझे नाही गावार उठ चलिया पछताया परिया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे होवी पूर्व लिखिया तां गुर का बचन कमाहे रहाउ हरी नाही नह डडोरी पक्की वडन हार लै लै दात पहुंतिया लावे कर तैयार जां हुआ हुक्म किरसान दा तां लुण मिणिया खेतार पहला पैर तंदै गया दूजे भर सोया तीजे झाक चखाया चौथे भोर भया कद ही चेतना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिसते सो जी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हरे अंतर जामी जान श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरन इको विसर ना जाओ धंधा सब जलाए कै गुरु नाम दिया सच सुआओ आसा सबे लाए कै इक आस

एक हाथ जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द काथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया होए मथ मेरे मन एक स्यों चित लाए एक सबिन सब तंद है सब मिथ्या मोह माय रहाउ लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन सीतल होय जिस को पूर्व लिखिया तिन सतगुर चरण गहे सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार दुख संताप ना लगई जिस हर का नाम आधार बाहां पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार थान सुहावा पवित है जिथै संत सभा ढोई तिस ही नो मिलै जिन पूरा गुरु लब्बा नानक बद्दा घर तहां जिथै मिर्त ना जन्म जरा श्री राग महला पंजवां सोई त्याई जीअड़े सिर शाहां पातशाह तिस ही की कर आसमन जिसका सब सविसाह सब सियाणपां छड़ कै गुर की चरण

सुख सहज सेती जपनाओ, आठ पहर प्रभ त्याए तू, गुण गोविंद नित गाओ रहाओ, तिसकी सरनी परमना, जिस जेवड़ अवर ना कोई, जिस सिमरत सुख होए घना, दुख दर्द ना मूले होए, सदा सदा कर चाकरी, प्रभ साहिब सच्चा सोए, साध संगत होए निर्मला, टटिया जम की फास, सुखदाता पह पंजनो, तिस आगे कर अरदास, मेहर करे जिस मेहरवान, तां कारज आवे रास, बहुतो बहुत वखाणी है, ऊचो ऊचा थाव, वरना चिहना बाहरा, कीमत कह ना सकाओ, नानक को प्रभ मया कर, सच देव हो अपना नाव, श्री राग महला पंजवा, नाम त्याए सो सुखी, किस मुख उजल होए, पूरे गुरते पाईए, प्रगट सबनी लोए, साध संगत कै घर वसै, एको सच्चा सोए, मेरे मन हर हर नाम त्याए, नाम

माया का रंग सब फिक्का जातु बिनस निदान जा कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रदान साधु की हो रेणुका अपना आप त्याग अपार सियाणप सगल छड गुर की चरणी लाग तिसह प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होए भाग तिसह प्राप्त भाई हो जिस देवे प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिनसै हम मैं ताप नानक कौ गुर भेटिया बिनसे सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखन हार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार।

गुरपूरा आराध लेत एकस की लिव लाग रहाओ इको भाई मित एक इको मात पिता एकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनोहना विसरै जिन सब किस वस कीता कर इको बाहर इको थान तनंतर आप जी जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप एकस सेती रत्या ना हुवी सोग संताप पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोय जियो पिंड सब तिसका जो तिस भावै सो होए गुरपूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए श्री राग महला पंजवा जिन्ना सतगुर सिंह चित लाया से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल हुए तिन उपजै मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम मन मेरे एको नाम त्याए सर्व सुखा सुख उपजह दरगाह पैंदा जाए रहाऊ जन्म मरण का पाऊ गया पाऊ भगत गोपाल साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल जन्म मरण की मल कटी है गुरदर्शन देख निहाल थान थनंतर रव रहया

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान इनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान श्री राग महला पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख वसिया मन आय अंतर ज्योत परगासिया एक सस्यों निवलाय मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाय गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचे नाय मेरे मन गुर शब्दी सुख होय गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोई रहाओ मन कीआं इच्छा पूरियां पाया नाम निदान अंतर जामी सदा संग करने हार पछान गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभमान पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरवान सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार आठ पहर गुणसार दी रत्ती रंग अपार पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवा पूरा सतगुरु जी मिले पाईए शब्द निदान कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभ सरनाई पाए हर बिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगती सच्चा शब्द वसाह कर सेवा सुख सागर है सिर शाह पातशाह चरण कमल का आसरा दूजा नाही थाव मैं धर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाव ने माणिया प्रभ मान तू तेरे संग समाव हर जपिए आराधिय आठ पहर गोविंद जी प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच सियो मरे न आवे जाय ना वे छोड़िया विछड़ सब मह रहिया समाय दीन दर्द दुख भंजना सेवक कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुर मेलाया माय भाई रे मीत करहो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोई रहाव दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निश्चल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाईए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन होवे शांत एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत गुण निदान नवतन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधी है दिन विसरहो नहीं रात जिनको पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तन मन तन अर्पी सबो सगल वारी है एह जिंद देखे सुने हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद किरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवा मन तन धन जिन प्रभ दिया रखिया सहज सवार सर्ब कला कर थापिया अंतर ज्योत अपार सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रख उर तार
मेरे मन हर बिन अवर ना कोए, प्रभ सरनाई सदा रहो, दुख ना व्यापै कोए रहाओ। रतन पदार्थ मानका सोयना रूपा खाक, मात पिता सुत बंध पा, कूड़े सभ्य साक, जिन की तात सह न जानी, मन मुख पास न पाक, अंतर बाहर रव रहया, तिसनो जाने दूर, तृष्णा लागी रच रहया, अंतर हों मैं कूर, भगती नाम विहूनिया, आवह वंजह पूर, राख लिहो प्रभ करनहार, जी जंत कर दया, बिन प्रभ कोई न रखनहार, महा बिकट जम भया, नानक नाम न विसरऊ, कर अपनी हर मया, श्री राग महला पंजवा, मेरा तन अर धन, मेरा राज रूप मैं देस, सुत दारा बनता अनेक, बहुत रंग अरवेस, हर नाम हृदय न वसई, कार्य कितै न लेख, मेरे मन हर हर नाम त्याए, कर संगत नित साधकी, गुर चरणी चित लाए रहाउ। नाम निदान त्याई है, मस्तक होवै भाग, कार्य सब सुवारी है, गुर की चरणी लाग, हौ मैं रोग भ्रम कटी है, ना आवै ना जाग, कर संगत तू साधकी, अठ सठ तीर्थ नाओ, जियो प्राण मन तन हरे, साचा इहो सुआउ, एथै मिलह वडाइया, दरगह पावह थाउ, करे कराए आप प्रभ, सब किस तिस ही हाथ, मारिया पे जीवाल दा, अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ सरनागती, सर्व कटा के नाथ, श्री राग महला पंजवा, सरन पए प्रभ आपने, गुरु हुआ कृपाल, सतगुर के अपदेसे है, बिनसे सर्व जंजाल, अंदर लगा राम नाम, अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी, एक निमख ना मनो वसार रहाउ। गुण गोविंद नित गावी है, अवगुण कटन हार, बिन हर नाम ना सुख होए, कर डिठे बिस्थार, सहजे सिफती रत्या, भवजल उतरे पार, तीर्थ वर्त लख सं

दास बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते हुए बनास रहाउ साहिब मेरा निर्मला, तिस बिन रहन ना जाए, मेरे मन तन भुख अति अगली, कोई आन मलावे माई, चारी कुंडा भालिया सह बिन अवर ना जाए, तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुरु दाता नाम का पूरा जिस भंडार, सदा

सदा सदा आराधी है। एहा मत वसेख मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख। श्री राग महला पंजवां संत जनो।

सम्मत पुरख अपार हर जानु हर लिव उदरी नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां कर दूजा गोयल आया गोयली क्या तिस डंप पसार मोहलत पुन्नी चलना तू संभल घर बार हर गुण गाओ मना सतगुर सेव प्यार क्या थोड़ी बात गमान रहाओ जैसे रैन परौणी उठ चल सह प्रभात क्या तू रत्ता गिरस्त स्यों सब फुल्ला की बागात मेरी मेरी क्या करह।

जिचर वसया कंत घर जियो जियो सब कहात जा उठी चल से कंतड़ा ता कोई ना पुछे तेरी बात पे यड़े सहो सेव तू सहरड़े सुख वस गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख सबना सहरे वंजना सब मुकलामन हार नानक तन सुहागनी।

किसहत आगु मन मेरे सर्व को आधार। गुर के चरण मन मह त्याई छोड़ सगल सियाणपा साच शब्द लिव लाए रहाओ दुख कलेश ना पौ ब्या।

सदाधारे पाप सगली जाहि हौ तिनके बलिहार ने जे गुर की पैरी पाहि साध संगत मन वसे साच हर का नाऊ से वड भागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ श्री राग महला पंजवा संच हर धन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तो साज सवारिया हर सिमर होए उदार जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिनह दिया हृदय का आधार रहाओ काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार

जिस दे प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरे आपासार। कहो नानक गुर परम काटिया सगल

आईया पूर्व लिखे आपाए सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणिए सचो बुद्ध बबेक सर्ब निरंतर रव रहिया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवां गुर परमेश्वर पूजी मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार सतगुर बच

हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूरन होए काल रहाउ गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए गुरिया गोचर निर्मला गुर जीवड़ अवर ना कोई गुर करता गुर करनहार गुर

सास ग्रहास न विसर सफल मूरत गुर आप गुर जीवड़े अवर न दिसई आठ पहर किस जाप नदर करे ता पाई है।

कीतड़ा लिखना जाने कोई जे सौ सायर मेलिया तिल ना पुजावह रोई कीमत किने ना पाईया सब सुन सुन आखह सोई पीर पै कामर सालक साधक सुहदे और शहीद सेख मसायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तिन कहो अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना काही

सा धन रंड ना बैसई जे सतगुर माए समाय फिर री सालू नौ तनु साचो मरै ना जाय नित रवै सोहागणी

दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार सुबा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पेर पुरख ना जानी साचे गुर कहित प्यार निस अंधारी सुतिए क्यों पिर बिन रैन विहाए अंक जलो तन जालियो मन धन जल बल जाए जा धन कंत ना राविया ता बिरथा जो बन जाए सेजै कंत मेहलड़ी सूती बूझ ना पाए हों सुती पिर जागना किस को पूछो जाए सतगुर मेली पैवसी नानक प्रेम सखाए श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचो मान महत तू आपे देवन हार हर जियो तू करता करतार ज्यों पावै।

रहाउ। सब जग बांधु काल को बिन गुर काल अपार, सच रते से उबरी दुबदहा छोड़ विकार। हों किन कै बलिहार नै दर सचै सत्यार, सी चाने ज्यो पंखियां जाली बद कहात, गुर राखे।

नाथ सच्चो सच्चाया कीए सच्चे सच्चा थान जिन्नी सच्चा मन्या इन मन सच ध्यान मन मुख सूचे जानिए है गुरमुख जिन्ना ज्ञान सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए साजन मिले है सुख पाया जमदूत मोए बिख खाए ना मैं अंदर हौ वसा नाओ वसै मन आए बाज गुरु गोबार है बिन शब्द बूझ ना पाए गुरमति परगास हुई।

सोहनी पिर रावे गुण नाल कामन कामना आवई खोटी अवगणियार ना सुख पिए सोहरे झूठ जली बेकार आवन मंजन डाकड़ो छोड़ी कंत वसार फिर की नार सुहावनी मुत्ती सो कित साध फिर कै कामना आवई बोले फादिल बाद दर कर ढोई ना लह छूटी दूजे साद पंडित वाच है पोथियां ना बूझ है विचार अन को मत्ती दे चल है माया का व्यापार कथनी झूठी जग पवे रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की वेदां करहें विचार वाद विरोध।

हर वर नार सुहावनी मैं भावै प्रभ सोई नानक शब्द मलावड़ा ना वे छोड़ा होई श्री राग महला पहला जप तप संयम साधी है तीरथ कीचै वास पुन दान चंगियाईया बिन साचे क्या तास जेहा राधे तेहा लुणे बिन गुण जन्म मनास मुंदे गुण दासी सुख होए अवगुण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोई रहाओ बिन रासी वापारिया तके कुंडा चार मूल ना बुझै अपना वस्त रही घर बार बिन वखर दुख अगला कूड़ मुठी कुड़ियार लाहा एहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लह कर अपने चले कारज सार बणजारिया स्यो बणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संतां संगत पाई है।

निर्मल जल नहाए निर्मल साचा एक तू होर मैल भरी सब जाए रहाओ हर का मंदर सोना किया करन है हार राव सस दीप अनूप जोत त्रिभवन जोत अपार हाट पटन गढ़।

प्रगत सब जानिए जे मन राखे ठाई ऐसा सतगुर जे मिले ता सहजे लय मलाई कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठहर ना पाईनी खरे खजाने पाए आस अंधे साधु।

दुख अगला मन मुख बूझ ना होए, सुख दुख सम कर जानिए है, शब्द भेद सुख होए, वेद पकारे वाचिए, बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधिका, नाम रते गुणतास, सच रते से जिन गए, हौ सद बलिहारे जास, चहु जुग मैले मल भरे, जिन मुख नाम ना होए, भगती पाए विहूणिया, मुँह काला पत खोए, जिन्नी नाम वसारिया, अवगण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया, डर कर मिले मिलाए, आप पछाणे घर वसे, हौ मैं तृष्णा जाए, नानक निर्मल उजले, जो राते हर नाए, श्री राग महला पहला, सुन मन भूले बावरे, गुर की चरनी लाग, हर जप नाम त्याए तू, जम डर पै दुख भाग, दुख घणो दुहागनी, क्यों फिर रह सुहाग, भाई रे अवर नाही मैं थाऊं, मैं तन नाम निदान है, गुर दिया बल जाऊं रहाव, गुरमत पत साबास तिस, तिस कै संग मलाऊं, तिस बिन घड़ी ना जीवन।

ज्यो कलर की पीत तब लग महल ना पाई है जब लग साच ना चीत शब्द रपै घर पाई है।

ऐसे निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राख है उधार सो क्यों मनहु विसारी है सब जिया का आधार।

जाने सुख से जड़ी बिन पिर बाद सिंगार दुख घणो दुहागणी ना कर सेज पतार मन रे राम जपो सुख होए बिन गुर प्रेम ना पाईए शब्द मिले रंग होई रहाओ गुर सेवा सुख पाईए हर वर सहज सिंगार सच माने पिर से जड़ी गूढ़ा हित प्यार गुरमुख जान सियाणी है गुर मेली गुण चार सच मिनहु वर कामणी पिर मोही रंग लाए मन तन साच विगसिया कीमत कहण ना जाए हर वार घर सुहागणी निर्मल साच नाए मन मह मनुआ जी मरै ता पिर रावै नार इकत तागै रल मिलै गल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजै गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजै खिन खपै

तोलिए कथन ना पाया जाए। व्यापारी बन जा रिया आए वजून खाए, कार कमाव है सच की लाहा मिले र जाए। पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तमाए, गुरमुख तोल तोलाए सी सच तराजी तोल। आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल, आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल। कथन कहण ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच ना पाई है बिन हर भगत प्यार। नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार, श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले। पाईए रतन विचार मन दी जय गुरे अपने, पाईए सर्ब प्यार मुक्त पदार्थ पाईए अवगण मेटन हार। पाई रे गुण बिन ज्ञान ना होए, पूछो हो ब्रह्मे नारद वेद व्यास कोई रहाओ। ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोई, सफलो बिरख हरियावला शाम कनेरी होए। लाल जवे हरमान की गुर भंडार सोए, गुर भंडार पाईए निर्मल नाम प्यार। साचो वखर संची है पूरे कर्म अपार, सुख दाता दुख मेटण सतगुर असुर संगार। पवजल बिखम डरावण ना कंधी ना पार, ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार। सतगुर पै काबू हिथा नदरी पार उतार, एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए। जिहवा जलो जलावणी नाम ना जपै रसाए, घट बिरसै दुख अगलो जम पकड़ै पछताए। मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ, बिन नावै धन बाद है भूलो मार गयाथ। साचो साहिब सेवी है गुरमुख अकथो काथ, आवै जाए पवाई है पै किरत कमाए। पूर्व लिखिया क्यों।

ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी है पाइये गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल कमले।

अवे दुध कौ खपण ना दे आपे मेल वशुन्या सच वडे आई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मन मुख सो जी ना पवे गुरमुख सदा हजूर मन

गुरमत हुए ता पाईए, सच मिले सुख होए, सच्चा नेहो ना टुटई, जे सतगुर भेटै सोई, ज्ञान पदार्थ पाईए, त्रि भवन सोजी।

माया परम भुलाई परम भुली दोहागणी ना फिर अंक समाय रहाउ भूली फिरै दसंतरी भूली ग्रह तज जाय भूली डूंगर थल चढ़े पर मैं मन डोलाय तुरह विछुनी क्यों मिले गर्भ मुठी बिल लाय बिछड़िया गुरमेल सी हर रस नाम प्यार साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यों पावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुली है भेखी बहुत अभमान तीरथ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान गुर बिन किन समझाई है मन राजा सुनतान प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत विचार सा तन आप गवाया।

सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया हूं मैं विचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म मिले ता पाई है आपने।

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पावह सुख होए रहाउ। नाम सलाही रंग सिउ, गुर कै शब्द संतोख, जो दिसै सो चलसी,

तड़ी गुरबिन बूझ न होए नाम वडाई जे मिले सच रपे पत होए जो तुद पावे से पले खोटा खरा ना कोई गुर सरनाई छुट्टी है मन मुख खोटी रास अष्ट धात पातशाह की करिए शब्द विगास आपे परखे पारखू पवे खजाने रास तेरी कीमत ना पवे सब डिटी ठोक बजाए कहने हाथ ना लबई सच टिके पत पाए गुरमत तू सलाहना होर कीमत कहण ना जाए जित तन नाम ना पावई तित तन हो मैं वाद गुरबिन ज्ञान ना पाई है।

साजी है, एक चानन तेहो लोए, कर्म मिलै सच पाई है, तुर बख्शना मेटै कोई, साध मिलै साधु जने, संतोख वसै गुर पाई, अकथ कथा विचारी है, जे सतगुर माहि समाए, पी अमृत संतोखिया, दरगह पैंदा जाए, कट कट वाजै किंगरी, अन दिन शब्द सुपाई, बिरले को सोजी पई, गुरमुख मन समझाए, नानक नाम ना विसरे, छूटै शब्द कमाए, श्री राग महला पहला, चित्ते दिसह धौल हर, बग्गे बंक द्वार, कर मन खुशी उसारिया, दूजै हित प्यार, अंदर खाली प्रेम बिन, तै ढेरी तन शार, पाई रे तन तन साथ ना होए, राम नाम तन निर्मलो, गुरदात करे प्रभ सोए, रहाओ, राम नाम तन निर्मलो।

आया सो चल सी अमर सो गुर करतार पी सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार डर कर महला सोहनी पक्के कोट हजार हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लख अपार किस ही नाल ना चलिया खप खप मुए असार सोयना रूपा संतिया माल जाल जंजाल सब जग मह दोही फेरी है बिन नामे सिरकाल पिंड पड़े जियो खेल सी बद फैली क्या हाल पुत्ता देख विगसी है नारी सेज पतार चोआ चंदन लाई है कापड़ रूप शिंगार खेहू खेर लाई है छोड़ चले घर बार महर मलूक कहाई है राजा राव के खान चौधरी राव सदाई है जल बलिये अभमान मन मुख नाम वसारिया ज्यों डब ददा कान हौ मैं कर कर जाए सी जो आया जग माही सब जग काजल कोठड़ी तन मन दे सवाही गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक तरिये सच नाम सिर शाह पातशाह मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन विसाह मन मुख भोजन पच मोए गुरमुख तरे अथाह श्री राग महला पहला कर दूजा मकाम कर कर बैसना

अष्टपदियां श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुर भगत ना होए आपे आप मलाए बूझे ता निर्मल होवे।

आई। बिन सतगुरु को मग ना जाने अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। पेई अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया। अन दिन भगत करह दिन राती हमै मोच काया। जिस स्यों राता तै सो हुए सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाहु लाई गुर शब्दी बीचार। सतगुर सेवे सहज उपजे हमै तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उरतार। प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाई। नाम निधान हर मन वसै हमै दुख सब जाई। सतगुर शब्द सुनाया हम सद बलिहारै जाऊं। अपने मन चित कह कहाई बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत वशल सुख दाता कर कृपा मन वसाई। नानक

रहाउ। बिन सतगुर प्रतीत न आवई, नाम न लागू पाउ, सुपनह सुख न पावी, दुख मह सवै समाय। जे हर हर कीचै बहुत लोची है, किरत न मेटिया जाय। हर का पाणा भगती मन्या, से भगत पए दर थाय। गुर शब्द दड़ावै रंग स्यों, बिन कृपा लया ना जाय। जे सौ अमृत नीरी है, पी बिख फल लागै ताय। से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुर नाल प्यार। सतगुर का पाणा कमावंदे, बिख होमै तज बेकार। मन हठ कितै उपाय ना छूटी है, सिमरत शास्त्र सुध हो जाय। मिल संगत साधु उबरे, गुर का शब्द कमाए। हर का नाम

गुर कै पाणे जे चलहै ता अन दिन राचहै हर नाय रहाउ। पंखी बिरख सुहावड़े उडहै चहो दिस जाहे, जेता उडहै दुख घणे नित दाजहै तै बिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुपाहे। साखा तीन नवारिया एक शब्द लिव लाए, अमृत फल हर एक है आपे देख आए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना छाओ, तिन्ना पास ना बैसिए ओना घर ना ग्राओ। कटिय है तै नित जालिय है ओना शब्द ना नाओ, हुक्मे कर्म कमावणे पय किरत फराओ। हुक्मे दर्शन देखना जह भी जह तह जाऊ, हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाऊ। हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार मन।

सोहणी गुर कै हित प्यार। सच्ची भगती सच रती दर सच्चै सच्यार। आए से परवान है सब कुल का करह उदार। सब नदरी कर्म कमावंदे नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखै सच्चा कैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम त्याई है। मनमुख बूझ ना पाए गुरमुख सदा मुख उजले। हर वस्या मन आए सहजे ही सुख पाईए। सहजे रह समाए भाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भगत है बिरला पाए कोई। रहाओ सदा सुहाग सुहागणी जे चलह सतगुर पाए। सदा फिर निह चल पाईए ना ओ मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछुड़े फिर कै अंक समाए। हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई भेखी भरम पलाए। गुरमती हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चकाया गुरमती सहज सुपाए। बिन शब्द जग दुखिया फिरै मन मुखा नु गई खाए। शब्दे नाम त्याई है शब्दे सच समाए। माया भूले सिद्ध फिर है समाध न लगे सुपाए। तीने लो व्यापत है अधिक रही लपटाए। बिन गुर मुक्त ना पाईए ना दुगदा माया जाए। माया किसनो आखिए क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है हमने कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हमे जाए। बिन प्रीति भगत ना हो गई बिन शब्द थाए ना पाए। शब्दे हमे मारिए माया का भ्रम जाए। नाम पदार्थ पाईए गुरमुख सहज सुपाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वश्चल हर मन वस्या सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर सालाही है कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा माया मोह मेरे प्रभ कीना आपे परम पलाए। मनमुख कर्म करह नहीं बूझह बिरथा जन्म गवाए। गुरबाणी इस जग मह चानन कर्म वसह मन आए। मन रे नाम जपो सुख होए गुर पूरा सालाही है सहज मिले प्रभ सोई। रहाओ परम गया पहु भागिया हर चरणी चित लाई। गुरमुख शब्द कमाई है

कह पाई दैत पुत कर्म धर्म किस संयम ना पड़े दूजा भाव ना जाने सतगुरु भेटे निर्मल हुआ अन दिन नाम बखाने एको पढ़े एको ना बूझे दूजा अवर ना जाने खट दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम पलाई

बिन गुर पाया न जाय, पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाय, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज ना होए, शब्द ही ते सहज उपजे, हर पाया सच सोए रहाओ, सहजे गावया थाई पवे, बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाद लगाई, सहजे ही गुण उचरै।

त्रै गुण भरम भलाय, पढ़िया गुणिया क्या कथिय, जा मुंडोहों कुत्था जाय। चौथे पद में सहज है गुरु।

बिन सहजे सब अंध है माया मोह गुबार। सहजे ही सूझी पई सच्चा शब्द अपार। आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार। सहजे अधिष्ट पछाणिय निरपौ जो

मन निर्मला पये पवित्र शरीर मन आनंद सदा सुख पाया पेटिया गहर गंभीर सच्ची संगत बैसना।

इहो जग जल ता देख कै भज पए सतगुर सरना सतगुर सच दड़ाया सदा सच संयम रहना सतगुर सच्चा है बोहिथा शब्दे पव जल तरना लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पथ खोई सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई जो सच्चे लाए से सच लगे नित सच्ची कार करन तिन्ना निज कर वासा पाया सच्चे महल रहन नानक भगत सुखिये सदा सच्चे नाम रचन श्री राग महला पंजवां जा को मुश्किल अत बने टोई कोई न दे लागू होए दुश्मना साख पे भज खले सबो भजै आसरा चुकै सब असराओ केत आवै उस पार ब्रह्म लगै न तत्ती वाओ साहिब नितानिया का तान आए न जाई तिर सदा गुर शब्दी सच जान रहाओ जे को होवै दुबला नांग

करे ना किस होवै काज कित आवै उस पार ब्रह्म ता निश्चल होवै राज जां को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रिस्त कटम पलिटिया कदे

ब्रह्म तन मन शीतल होए काम क्रोध मोह वस किया किरपन लोभ प्यार चारे किल विख उन अग किए हुआ असुर संघार।

मुख सिमरत तरिया शास्त्र सिमरत वेद चार मोखागर बिचरी तपे तपी सर जोगिया तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगणे पूजा करता नाए रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलख सिकदारियां रस भोगण बिसथार बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अफार रंग तमाशे बहु विधि चाए लग रहिया चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाड अचारवंत सोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़ रसातल दीत काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग मृतना आवी चित तिस अहनस भोगै भोग सब किश कीतो ने अपना जिये ना संक धरिया चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस भरिया कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग ज्यों ज्यों ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यों रंग दोहां सिरियां का खसम आप।

घर पंजवा जानो नहीं पावै कवन बाता मन खोज मार्ग रहाओ ध्यानी ध्यान लाव है ज्ञानी ज्ञान कमाव है प्रभ की नहीं जाता भगवती रहत जुगता जोगी कहत मुक्ता तपसी तपहराता मोनी मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी उदास राता भगत नवे प्रकारा पंडित वेद पुकारा गृहस्थी गृहस्थ तरमाता एक शब्दी बहुरूप अवतूता कापड़ी कौते जागूता एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती अपरसा एक लूक ना देवह दरसा एक मन ही ज्ञाता काटना कि नहीं कहाया सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भगता सगल उकत उपावा त्यागी सरन पावा नानक गुर चरण पराता एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला कर तीजा जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया तेरा अंत ना पाया सुरग मच पाया।

आया सिरे सिर तंदे लाया वेखह की ताया अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहार है जापदा सब नावै नो प्रतापदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कहो बल जाई है जित मिले परम गत पाई है सुर नार मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत परम पलाया आप हूं तुद खवाया प्रताप लगा दोहागणी भाग जिन्ना के नाए जियो दोहागणी क्या निशानियां खसम हो खुथियां फिर है निमानिया मैले वेस तिन्ना कामणी दुखी रहन विहाए जियो सुहागणी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कै अपनी आपे लए मलाए जियो हुक्म जिन्ना नू मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सहिया से सुहागणी जिन सह नाल प्यार जियो जिन्ना पाणे का रासे आया तिन विचों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सब सह लए मलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचों अहंकरण चुकाया दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय समाणिया सुख सेवा अंदर रखे है अपनी नदर करह निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम बखानी है सतगुर बाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए जियो हौ सतगुर बिटो कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लए रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो सब संयम रहे सियाणपा मेरा

बन जा रहा मित्रा, हर पाया उधर मंजार, हर त्यावे हर उचरे बन जा रहा मित्रा, हर हर नाम समार, हर हर नाम जपे आराधी, विच अग्नि हर जप जीवया, बाहर जन्म भया मुख लागा, सरसे पिता मात थीवया, जिसकी वस्त तिस चेतो प्राणी, कर हृदय गुरमुख बीचार, कहो नानक प्राणी पहले पहरे, हर जपिए कृपा तार, दूजे पहरे रहण कै बन जा रिया मित्रा, मन लागा दूजे पाए, मेरा मेरा कर पालिए बन जा रिया मित्रा, लै मात पिता गल लाए, लावे मात पिता सदा गल सेती, मन जाने खट खवाए, जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा, दित्ते नो लपटाए, कोई गुरमुख हो ऐसो करे विचार, हर त्यावे मन लिव लाए, कहो नानक दूजे पहरे प्राणी, तिस काल न कबहू खाए, तीजे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, मन लगा आल जंजाल, धन चितवे धन संचवे बन जा रिया मित्रा, हर नामा हर ना संभाल, हर नामा हर हर कदे ना संभाल, जे होवे अंत सखाई, एहो धन संपै माया झूठी, अंत छोड़ चलिया पछताई, जिसनो कृपा करे गुरमेले, सो हर हर नाम संभाल, कहो नानक तीजे पहरे प्राणी, ते जाए मिले हर नाल, चौथे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, हर चलन वेला आंदी, कर सेवहु पूरा सतगुरु बन जा रिया मित्रा, सब चली रहन विहांदी, हर सेवहु खिन खिन ढिल मूल ना करे हो, जित अस्थिर जुग जुग होवो, हर सीती सदमान हुरलिया, जन्म मरण दुख खोवो, गुर सतगुरु स्वामी भेद ना जानो, जित मिल हर भगत सुखांदी, कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, सफलियो रहन भगतां दी, श्री राग महला पंजवा, पहले पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, धर पाए ता उदरे माहे, दसी मासी मानस किया बन जा रिया मित्रा, कर मोहलत कर्म कमाहे, मोहलत कर दीनी कर्म कमाणे, जैसा लिखत तुर पाया, मात पिता पाई सुत बनता, तिन भीतर प्रभु संजोया, कर्म सकर्म कराए आपे, इस जनते वास किछ नाही, कहो नानक प्राणी पहले पहरे, धर पाए ता उदरे माहे, दूजे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, पर जवानी लहरी दे, बुरा भला ना पछाणी बन जा रिया मित्रा, मन मत्ता अहमेव, बुरा भला ना पछाणे प्राणी, आगे पंथ करारा, पूरा सतगुर कबहू ना सेवया, सिर ठाडी जम जंदारा, कर्म राय जब पकरस बबरे, तब क्या जवाब करे, कहो नानक दूजे पहरे प्राणी, पर जोबन लहरी दे, तीजे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, एक संचय अंध अज्ञान, पुत्र कलत्र मोहे लपटिया बन जा रिया मित्रा, अंतर लहर लुभान, अंतर लहर लुभान प्राणी, सो प्रभ चित न आवे, साध संगत स्यो संग न किया, बहु जोनी दुख पावे, सिरजनहार वसारिया स्वामी, एक निमख न लगो ध्यान, कहो नानक प्राणी तीजे पहरे, बिक संचे अंध अज्ञान, चौथे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, दिन नेड़े आया सोई, गुरमुख नाम संभाल तू बन जा रिया मित्रा, तेरा दरगाह बेली होए, गुरमुख नाम संभाल प्राणी, अंते हुए सखाई, एहो मोह माया तेरे संग ना चाले, झूठी प्रीत लगाई, सगली रहन गुदरी अंधियारी, सेव सतगुर चानन होए,
कहो नानक प्राणी चौथे पहरे दिन नेड़े आया सोए। लिखिया आया गोविंद का बन जा रिया मित्रा उठ चले कमाणा साथ।

स्वामी तार अनग्रहो मन तन अंक समावे दखना सोहंदड़ो हबठाए कोय न दिसै दूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेट ते संत तेरे बचन अनूप अपार संतन आधार वाणी विचारी है जियो सिमरत सास ग्रास पूर्ण विश्वास क्यों मनो बेसारी है जियो क्यों मनो बेसारी है निमक नहीं टारी है गुणवंत प्राण हमारे मन वांछत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारी नाथ के नाते सब कै साथे जप जुए जन्म ना हारी है नानक की बेनंती प्रभ पह कृपा कर पव जल तारी है दखना धूड़ी मजन साधखे साई थिए कृपाल लद्दे हब्बे थोकड़े नानक हर तन माल संत सुंदर स्वामी धाम भगत है विश्राम आसा लग जीव ते जियो मन तने गलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिकै बन फीका जानिया भये कृपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निदमानिया सर्व सो सुख आनंद कन प्यारी हर रतन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा।

आप मोहियो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए रिजाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दोख सब जोया भगत लखियन कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ न माया होया कर गहलीने नानक प्रभ प्यारी संसार सागर नहीं पोहया दखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना भाग मथाए से नानक

मग दिखाया, हम मैं मार एक लिव लागी, अंतर नाम वसाया, गुरमती जम जोहे ना साके, साचे नाम समाया, सब आपे आप वरते करता, जो पावे सो ना हिलाया, जन नानक नाम लहे ता जीवे, बिन नामे खिन मर जाया पौड़ी, जो मिलया हर दी बाण सिओ, सो सबनी दी बाणी मिलया, जिते ओह जाए तिते ओह सुरखरु, उसके मुहे डिठे सब पापी तरिया, उस अंतर नाम निदान है, नामो परवरिया, नाउ पूजी है नाउ मन्नी है, नाए किलविख सब हिरिया, जिन्नी नाम ते आया एक मन एक चेत, से अस्थिर जग रहिया, श्लोक महला तीजा, आत्मा देव पूजी है, गुर कै सहज सुभाए, आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत होए, ता घर ही परचा पाए, आत्मा अडोल ना डोले, गुर कै पाए सुभाए, गुर विन सहज ना आवई, लोभ मैल ना विचों जाए, खिन पल हर नाम मन वसै, सब अकसठ तीरथ नहाए, सच्चे मैल ना लगई, मल लागै दूजै पाए, धोती मूल ना उतरै, जे अकसठ तीरथ नहाए, मनमुख कर्म करे अहंकारी, सब दुखो दुख कमाए, नानक मैला उजल तां थी है, जा सतगुर माहि समाए महला तीजा, मनमुख लोक समझाई है, कदहु समझाया जाए, मनमुख रलाया नार लै, पै किरत फराए, लिव धात दुए रहा है, हुक्मी कार कमाए, गुरमुख अपना मन मारिया, शब्द कसवट्टी लाए, मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सत, मन ही मन समाए, मन जो इच्छे सो लहै, सच्चै शब्द सुभाए, अमृत नाम सद पुंची है, गुरमुख कार कमाए, विन मने जे होरी नाल लुजना, जासी जन्म गवाए, मन मुखी मन हठ हारिया, कूड़ पसत कमाए, गुर प्रसादी मन जिन हर सेती लिवलाए, नानक गुरमुख सच कमावे, मन मुख आवे जाए पौड़ी, हर के संत सुनो जन पाई, हर सतगुर की एक साखी, जिस तुर भाग हुए मुख मस्तक, इन जन लै हृदय राखी, हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम, गुर बचनी सहजे चाखी, तह भया प्रगास मिटिया अंधियारा, ज्यो सूरज रैन कराखी, अदिष्ट अगोचर अलख निरंजन, सो देखिया गुरमुख आखी, सलोक महला तीजा, सतगुर सेवे अपना, सो सिर लिख लाए, विचों आप गवाई कै, रहन सच लिवलाए, सतगुर जिन्नी ना सेवियो, तिन्ना बिरथा जन्म गवाए, नानक जो तिस पावै सो करे, कहना किशु ना जाए महला तीजा, मन वेकारी वेड़िया, वेकारा कर्म कमाए, दूजै पाए अज्ञानी पूज दे, दरगाह मिले सजाए, आत्म देव पूजिए, बिन सतगुर बूझ ना पाए, जप तप संयम पाणा सतगुरु का, कर्मी पल्लै पाए, नानक सेवा सुरत कमावनी, जो हर पावै सो थाए पाए पौड़ी, हर हर नाम जपुह मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती, हर हर नाम जपुह मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती, हर हर नाम जपुह मन मेरे, जित दाल दे दुख भुख सब लह जाती, हर हर नाम जपुह मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती, जित मुख भाग लिखिया तुर साचै, हर तित मुख नाम जपाती।

मन है कर्म प्राप्त हुए सत्य रत्ते गुर शब्द स्यों तिन सच्ची सदा लिव हुए नानक जिसनो मेले ना विछड़े सहज समावे सोई महला तीजा सो भगवती जो भगवंत जान है गुर प्रसादी आप पछाण धावत राखे इकत घर आण जीवत मरे हर नाम बखाण ऐसा भगवती उत्तम होए नानक सच समावे सोए महला तीजा अंतर कपट भगवती कहाए पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए पर निंदा करे अंतर मल लाए बाहर मल धोवे मन की झूठ ना जाए सत संगत सिंह बाद रचाए हर दिन दुखिया दूजे भाए रचाए हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से कर ना सुवाही सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही जिनको हुआ कृपाल हर से सत

जरा मरण भव विसर गया, कटंब देख बिकसह कमला ज्यो, पर कर जो है कपट नरा, दूड़ा आयो हे जमह तना, तिन आग लड़ै मैं रहन ना जाए, कोई कोई साजन आई कह, मिल मेरे बीठला ले बाहड़ी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाओ। अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पै अमर पया, माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया, विखम घोर पंथ चालना प्राणी, राव सस तह ना प्रवेशं, माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं, आज मेरा मन प्रगट भया है, देखियले धर्म राओ, तह कर दल करन महाबली,

बदत त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जियो का। अचर्ज एक सुनोरे पंडिया अब किस कहन न जाई, सुर नार गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन में खुली लाई। राजा राम अनहद किंगुरी बाजे जा की दिष्ट नाद लिव लागे रहाओ। पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलस एक पाया, तिसमह तार चोय अत निर्मल रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन।

ज्ञान प्रगटिया परखोत्तम, कहो कबीर रंग राता, और दुनी सब परम पलानी, मन राम रसायन माता, श्री राग

रे नार गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना एहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनहु बिसारिया फिर पछतावेगा मूड़िया तू कमल कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचर अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापे रस मिस मेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अरादिया उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसम ते तौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल नाठी ता काम पव समाधानी ता ते बिख है भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुट्टी देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कशु ना सूझे थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक

तुम जो नायक आचो हो अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी शरीर आराध्य मो को विचार देहु रविदास समदल समझावे को राग माज चौपदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया वड भागी हर नाम ते आया गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चले जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले गुरपूरे हर नाम दड़ाया हर निश्चल हर तन पल्ले जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मलावे मेरे प्राण जीवाया।

करहो प्रित पाला, मेरा मात पिता गुर सत गुर पूरा, गुर जल मेल कमल विगसै जियो, मैं बिन गुर देखे नींद ना आवै, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावै, हर हर दया करहु गुर मेलो, जन नानक गुर मिल रहस्य जियो, माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए, मिल सत संगत हर गुण गाए, जग भौजल।

मित्र सखा सुप्रीतम पाई, मैं दसे हर नर हरिय जियो, मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने, हो रह ना सका बिन नाम वखाणी, मैं औखद मंत्र दीजै गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरिय जियो, हम चातरक दीन सतगुर सरनाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिय जियो, माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजै जियो, मिल सतसंग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पाणी, हर हर अमृत हर मन भावै, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो, वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटा खावै, बिन भागा सतसंग ना लभै, बिन संगत मैल परिजै जियो, मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पीजै जियो, माज महला चौथा हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौंदा जियो, आवहु संत मैं गल में लाई है, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाई है, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो, वड भागी हर संत मलाया, गुरपुरे हर रस मुख पाया, भागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो, आप दयाल दया प्रभ तारी, मल हम मैं बिखिया सब नेवारी, नानक हट पटन विच काया, हर लैंदे गुरमुख सौदा जियो, माज महला चौथा हौ गुण गोविंद हर नाम त्याई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो, तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पाम मलुआ मल मल धुआ, मिल हर जन हर रस पीचै जियो, सतगुर दातै नाम दिड़ाया, वड भागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली, गुरपूरै अमृत लीचै जियो, हर सत संगत सत पुरख मिलाइयै, मिल सत संगत हर नाम त्याइयै, नानक हर कथा सुनी मुख बोली।

प्रीतम दसे तिसकै हौ वारिया मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हौ सतगुर विटो कुमाइया जियो जह जह देखा तह तह स्वामी तू घट घट रविया अंतर जामी गुर पूरै हर नाल देखा लिया हौ सतगुर विटो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब एका जोत वरतै भिन भिन ना रली किसै धीर लाइया गुर प्रसादी एक नदनी आया हौ सतगुर विटो बताया जियो जन नानक बोलै अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पाणी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महल्ले चौथे के माज महल्ला पंजवां चौपदे घर पहला मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चातरक की न्याई त्रिखा न उतरै शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हौ भोली जियो कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सहावा जियो सहज धुन बाणी चिर होवा देखे सारिंग पाणी तन सो देश जहां तू

कीता, आत्मगर बिखम तिना ही जीता। तुम दाते तुम पुरख बधाते, तुद जेवड अवर ना सूरा जियो। रेन संतन की मेरा मुख लागी, दुर्मत बिनसी कुबुद अपागी। सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिनसे पूरा जियो। माज महला।

तह परापत जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त आगाना जिन हर साद पाया सो नाही डुलाना जिसह परापत हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जियो हर एक सहाथ आया वरसाने बहुतेरे किस लग मुक्त भय कनेरे नाम निदाना गुरमुख पाई है कहो नानक विरली दीठा जियो माज महला पंजवा निद सिद रिद हर हर हर मेरा जन्म पदार्थ गहर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावे जो गुर लागा पाई जियो दर्शन पेखत पए पनीता सगल उदारे पाई मीता अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो जाको खोज है सर्ब उपाय वडभागी दर्शन को विरला पाए ऊच अपार अगोचर थाना ओह महल गुरु देखाई जियो गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पया जिस हृदय बसेरा गुरबंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जियो माज महला पंजवा प्रभु कृपा ते हर हर त्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो उठत बैठत सोवत जागत हर त्याई सगल अवरदा जियो नाम औखद मोको साधु दिया किल बिक काटे निर्मल थिया आनंद भया निकसी सब पीरा सगल बनासी।

संग राता प्रभ प्रत पाले सेवक सुख दाता पाणी पक्का पीसो सेवक कै ठाकुर ही का आहार जियो काट सिलक प्रभ सेवा लाया हुक्म साहिब का सेवक मन पाया सोई कमावै जो साहिब पावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो तू दाना ठाकुर सब बिद जान है ठाकुर के सेवक हर रंग मान है जो किस ठाकुर का सो सेवक का सेवक ठाकुर ही।

सो गहर गंभीरा गौहर जीओ माज महला पंजवा सब किश घर में है बाहर नाही बाहर टोले सो परम फलाही गुर प्रसादी जिन्नी अंतर पाया सो अंतर बार सुहिला जीओ चिम चिम वरसै अमृत तारा मन पीवै सुन शब्द बीचारा आनंद बनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जीओ जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते।

आपे तुद संभालिए दियो, तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे, नानक दास सदा गुण गावे, एक पोरी नदर निहार।